नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जन्मभूमि केवल हमारी धरती नहीं बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति और गौरव का आधार है। इसकी मिट्टी में हमारे सपने और संस्कार बसते हैं। अपनी जन्मभूमि के विकास, स्वच्छता और सम्मान के लिए योगदान देना हम सभी का कर्तव्य है।

भक्त के हृदय में जब श्री हरि की दिव्य मूर्ति बस जाती है तब उसका जीवन प्रेम और भक्ति से भर उठता है। वो प्रतिदिन श्रद्धा से गिरधर की आरती उतारता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु सदैव उसके मन मंदिर में विराजमान रहें।

हमारी अगली भक्ति रचना समर्पित है माँ पगलामुखी को। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की उपासना से साहस, आत्मबल और विजय की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र, पीले पुष्प और श्रद्धा से की गई आराधना माँ को अत्यंत प्रिय है।

भैरवाष्ट कम भगवान काल भैरव की महिमा का दिव्य स्त्रोत है, जिसकी रचना स्वयं श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने की है। मान्यता है इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करने से भय, संकट और नकारात्मकता दूर होती है।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख एवं संकलन कुबेर मेहरा का, स्वर अभिलाषा तिवारी के। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज का चिंतन। आलेख शालिनी शुक्ला का, वाचन श्वेता झवर।
1: जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये विचार जीवन को देखने का एक शांत और संतुलित और गहरा नजरिया देता है। आज के दौर में जहां हर व्यक्ति कुछ और पाने की चाह में आगे बढ़ रहा है, वहीं ये सोचकर हमें रुककर अपने वर्तमान को समझने और महसूस करने की प्रेरणा देती है। अक्सर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के बोझ में इतने उलझ जाते हैं कि हमारे आसपास जो पहले से मौजूद है उसकी अहमियत समझ ही नहीं पाते। जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ देता है, कभी अनुभव, कभी सीख तो कभी अवसर। ये सब मिलकर हमारे जीवन को आकार देते हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान केवल उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है, तब हम उन सभी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें भीतर से समृद्ध बना रही होती है। ये सोच हमें सिखाती है कि कमी की बजाय पूर्णता पर ध्यान देना चाहिए। जब मन ये स्वीकार करता है कि जो मिला है वही हमारे लिए इस समय सबसे सही है, तब भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता ही शांति का आधार बनती है। ऐसे में व्यक्ति अपने हर काम को बिना किसी दबाव के पूरे मन से कर पाता है। वो परिणाम की चिंता में उलझने के बजाय प्रयास की सुंदरता को समझने लगता है। इस विचार को अपनाने से जीवन में सरलता आती है। हम अनावश्यक चीज़ों की दौड़ से बाहर निकलकर उन बातों पर ध्यान देने लगते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, जैसे अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपने विचार और अपने कर्म। धीरे धीरे जीवन में एक संतुलन बनने लगता है जहां न तो अधिक पाने की बेचैनी रहती है और न ही खोने का डर। सुबह का समय इस सोच को अपनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है जब दिन की शुरुआत एक शांत और सकारात्मक विचार से होती है, तो उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। जो है वही काफी है, ये भावना मन को हल्का बनाती है और हर छोटी चीज में भी खुशी ढूंढने की आदत विकसित करती है। तब साधारण पल भी खास लगने लगता है। ये सोच हमें कृतज्ञ बनाती है। कृतज्ञता का भाव जीवन में गहराई लाता है, क्योंकि जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं, तब हमें हर चीज में एक सुंदरता दिखाई देने लगती है। जीवन में फिर केवल लक्ष्य पाने का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि हर दिन एक अनुभव बन जाता है जिसे महसूस किया जा सकता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि हम आगे बढ़ना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी यात्रा का आनंद लेना सीखें, हम अपने प्रयास करते रहें, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन इस बात का दबाव न रखें कि खुशी केवल मंजिल पाने पर ही मिलेगी। असल खुशी तो रास्ते में ही छुपी होती है। जो व्यक्ति इस विचार को अपने जीवन में उतार लेता है, वो बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है। उसके भीतर एक ऐसी मजबूती होती है जो हर स्थिति में उसे संभाले रखती है। वह कम में भी खुश रहना जानता है और ज्यादा मिलने पर भी विनम्र बना रहता है। जीवन की असली समृद्धि बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर के संतोष में होती है। जब ये संतोष जागता है, तब जीवन अपने आप सुंदर, सरल और सुकून भरा बन जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है, बल्कि अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाता है, और यही एक सच्चे और सार्थक जीवन की पहचान है। इसलिए हर सुबह जब आप अपनी

0: आंखें खोलें तो ये सोचकर दिन की शुरुआत करें कि मेरे पास जो है वह पर्याप्त है और मैं उसी में खुश रह सकता हूँ। यही विचार धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और आपको उस सुकून तक ले जा सकता है जिसकी तलाश में आज का इंसान भटक रहा है।
1: श्रोताओं, ये था आज का चिंतन, आलेख शालिनी शुक्ला का, वाचन श्वेता झवर। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र पर अब वक्त है खेती की बातें का। आज इस कार्यक्रम में समय पर करें बुवाई, इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। स्वर भारती उपाध्याय के हैं।
2: किसान भाइयों के राम राम। खेती की बात में किसान भाइयों आज अपन बात करांगा कि कदी टेम रहते अपना किसान भाइयों बुवाई को जो समय है उन्हीं बखत ही अगर बुवाई करे तो अच्छी फसल भी ले पाएगा और साथ ही साथ वो जो तरीको है वो भी उनकी बुवाई के लिए घणो अच्छो रहेगो। एका सारू जरूरी है कि अपना किसान भाइयों जल्दबाजी नहीं करे, जल्दबाजी करेगा तो नुकसान उनका खेत में नुकसान, उनकी फसल के नुकसान हो सके हैं। बहुत सा किसान भाई उनका ही करे कि पहली जो बरसात हो जावे ओ में बुवाई शुरू करें, पर यो गलत है क्योंकि अगर पहली हल्की बरसात हुई है और अपन देखा कि अपनी जो मिट्टी है वह भी पर्याप्त ओ में नमी नहीं हुई पाए तो जो बीज को सही तरीको है नहीं उगने को वो नहीं उगे। एका सारू बुवाई का पहला अगर पहली बरसात हुई है तो ओमे अपना किसान भाइयों बुवाई नहीं करें। बुवाई का लिए विशेषज्ञ का अनुसार अच्छी बारिश का बाद ही बुवाई करना सबसे अच्छो मान्यो जावे है। मौसम की जानकारी अपना किसान भाइयों लेता रहे, मौसम विभाग की सलाह पर नज़र रखे, घनी गीली मिट्टी में बुवाई नहीं करे, खेत में नमी संतुलित होनी चाहिए इन बात को ध्यान रखे, सही वक्त पर बोई गई फसल में रोग भी कम लागे है और उत्पादन भी अच्छो मिले है। साथ ही साथ खरपतवार और कीटों की शुरुआत हो रही है तो ओखे भी रोकनो है। फसल खरपतवार फसल का पोषण चुराई लेवे है। सोयाबीन की खेती में खरपतवार सबसे बड़ी समस्या मानी जावे है। ये पौधाना का पोषण और पानी दोई खे अपनी तरफ खींची लेवे है। अगर टेम पर नियंत्रण नहीं कियो जावे तो पैदावार जो होवे वह काफ़ी घटी सके है। फसल के सुरक्षित रखने सारू आसान उपाय किसान भाई उनका यही है कि टेम टेम पर निंदाई गुड़ाई करता रहे, खेत की निगरानी करता रहे, फेरोमोन ट्रैप लगाए, नीम आधारित जैविक स्प्रे को उपयोग करें, इससे फसल स्वस्थ रहेगी और दवाइयों पे खर्च भी कम आवेगो। तो अपना किसान भाई उनके अगर अपन किसान भाई उन अच्छी बरसात हुई गई है और ओका बाद अगर अपन ने फसल की बुवाई करी दी है तो बुवाई का बाद अपने किसान भाई उनके चाहिए कि खरपतवार और कीट उनको जो शुरुआत में अगर दिखी रहा है तो ओको पहला निवारण करें। पोषण प्रबंधन भी अपना किसान भाई उन देखो अच्छी पैदावार सारू जरूरी होवे है तो सोयाबीन की अच्छी बढ़तवार सारू संतुलित पोषण घणो जरूरी होवे है। केवल अपन चाहवा कि यूरिया पे ही अपना किसान भाइयों के निर्भर नहीं रहना है, ओके बजाय जैविक खाद को भी अपना किसान भाइयों के उपयोग करना चाहिए, जैसे गोबर की खाद हुई, जीवामृत हुओ, नीम की खली जैसी चीज़ों मिट्टी के ताकत के बढ़ाने में मदद करे है और एका से खेत लंबा बखत तक उपजाऊ बनिया रहे है। इस कारण किसान भाइयों के पोषण प्रबंधन भी करीने रखना चाहिए और साथ ही साथ अच्छी पैदावार सारू अपना किसान भाइयों के चाहिए कि वे प्रमाणित बीज ही खरीदे, बुवाई का पहला बीज उपचार जरूर करी लेवे, खेत में पानी जमानी होने देवे, मतलब खेत में पानी का भराव नहीं होवे और पानी की निकासी की सुविधा अपने किसान भाई उनके रखनी चाहिए, खास करीने इना बरसात का मौसम में। खरपतवार नियंत्रण बखत बखत पर करता रहे, फसल की नियमित निगरानी करें और जैविक खाद को इस्तेमाल करें। जैविक खाद का उपयोग से अपना किसान भाइयों अच्छी फसल दे सके। सोयाबीन की खेती में ज़्यादा उत्पादन अगर अपना किसान भाइयों लेना चाहे तो उनमें मेहनत नहीं बल्कि सही तरीकों भी छिपे हुए हैं। किसान भाइयों मेहनत तो कर ही है यो तो मानियो, पर ओका साथे साथ अगर वे सही तरीका से सही तैयारी अगर अपनी बुवाई का पहला करी लेवेगा तो उनके अच्छी फसल भी मिलेगी और साथे साथ उनकी जो उपज है वह भी अच्छी रहेगी। जैसे बुवाई का पहला खेत बीज और पोषण को सही तरीका से ध्यान देवे और फसल अगर ये चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखे तो फसल मजबूत भी बनेगी और उनको मुनाफा भी बढ़ेगा। और साथ ही आज का समय की आज के वक्त की समझदारी भी यही है कि अपना किसान भाई हो अच्छी फसल चाहे तो इन्हीं बात उनको ध्यान रखे। तो आज अपना किसान भाई उनसे इतना ही कहना तो राम राम।
1: समय पर करें बुआई, इस विषय पर आप सुन रहे थे जानकारी खेती की बातें में, स्वर भारती उपाध्याय की थी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

भगवान शिव के अद्भुत रूप के समान ही उनकी बारात सजी थी। अपने होने वाले जामाता का विचित्र और भयानक रूप देखकर स्वयं माता मैना और अन्य स्त्रियों के मन में भय उत्पन्न हो गया। मैना ने अत्यंत दुखी मन तथा नील कमल के समान अपनी आंखों में आंसू भरे पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया। बोली, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसी ने तुम्हारे वर को ऐसा बावला क्यों कर बनाया?

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 पर आप गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में विश्व नशा निरोध दिवस जो कि 26 जून को था और विश्व डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाएगा, इस पर जानकारियों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी प्रीति जोशी। 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत का। 9:00 से आप मराठी कार्यक्रम सुनेंगे। आज के कार्यक्रम में सानंद गोष्ठ सांघा प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर आने वाली योगिनी श्रृंगारपुरी से भेंटवार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण है। शास्त्रीय संगीत में पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी सुनिएगा 9:30 पर। सजीव फॉर इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में आप फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं 10:05 से 11:00 के मध्य। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। और दोपहर की सभा की बात करें तो 11:00 से होगा फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लिया जा सकता है। दोपहर 12:00, 2:00 और 2:30 पर। 12:30 का समय होगा संग्रहालय से कार्यक्रम का। दोपहर 1:00 स्वास्थ्य पत्रिका स्वास्थ्य दर्पण सुनवाई जाएगी। 1:30 का समय होगा लोक संगीत का और 1:45 से आप सुगम संगीत सुनेंगे। और आइए श्रोताओं, अब आपको सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बता दें। सांध्यकालीन सभा की शुरुआत 5:00 युवाणी कार्यक्रम के साथ होगी। युवा श्रोताओं के लिए होने वाले इस कार्यक्रम में आज कुछ बातें कुछ गीत क्रम होगा। सांध्यकालीन सभा में फिल्म संगीत के विशेष कार्यक्रम है 5:45 और चित्र गीत 9:15 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:00 से। सुगम संगीत में कुमार सानू के गाए गैर फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा 6:30 से। 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा 7:20 पर। आज के कार्यक्रम में बात होगी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पर, साथ ही कद्दूवर्गीय सब्जियों में रोग व कीट प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी द्वारा दी गई जानकारी आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम में घरेलू टिप्स और घरेलू व्यंजन क्रम भी होगा। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होगा। 8:15 पर आप सुनेंगे दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से। शास्त्रीय संगीत में रात्रि 10:30 उस्ताद राशिद खां का गाया राग सोहनी सुनवाया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती समारोहे मुख्य अतिथि रूपेण भागं गृहीतवान्। भारतीय सैनिक बलस्य अथ नौसेना बलस्य दलानि अपि अस्मिन् पथ संचरण कार्यक्रमे भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी सेशल्स देशस्य नागरिकेभ्यः भारत परं वर्धापनं प्रकटितवान्। विक्टोरिया इत्यत्र राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं श्रीमोदी उक्तवान् यत् भारतं तादृशीं हिन्द महासागरस्य कल्पनां करोति यत्र समुद्रीय सुरक्षया सह आर्थिक समृद्धिरपि सुनिश्चिता स्यात्।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: पर्यावरण संरक्षणस्य सतत विकासस्य च नेतृत्वाय सेशल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे श्री नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः। सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन प्रदत्तः अयं पुरस्कारः स्थायि अभिवृद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्रिणः दीर्घकालीन सम्बलस्य तस्य हरितदृष्टेः च प्रतीकः वर्तते। श्रीमोदी जलवायु परिवर्तनस्य समाह्वानानां विरुद्धं संघर्षं कुर्वतां राष्ट्राणां कृते एदं पुरस्कारं समर्पितवान्। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी सेशल्स देशे ह्यः मारिशस् देशस्य समकक्षेन डॉ नवीन चन्द्र रामगुलामेन सह मिलितवान्। द्वावपि नेतारौ भारतस्य मारिशस्य च वर्तमान सहकार्यस्य विषये चर्चां कृतवन्तौ। भारतेन प्रदत्त विशेष आर्थिक अनुदानस्य कार्यान्वयनस्य प्रगतेः अपि तौ समीक्षां कृतवन्तौ। द्वावपि नेतारौ भारतस्य विजन महासागर इत्यस्य तथा नेबरहुड फर्स्ट इति नीतेः अन्तर्गतं भारत मारिशस् वर्धित रणनीतिक सहयोगस्य महत्वस्य विषये वैश्विक दक्षिणस्य प्रति तेषां प्रतिबद्धतायाः विषये च सहमतिं प्रकटितवन्तौ। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक प्रकरणे भिवांडी नगरस्य सत्र न्यायालयेन त्रयाणां आरोपिणां कृते 6 जुलाई पर्यन्तं बन्धनं विहितम्। आरक्षि अन्वेषकाः अन्ताराज्य परीक्षा तस्कराणां संलग्नतायाः शंकां कृतवन्तः। भिवांडी आरक्षिणः न्यायालयं निवेदयन् यत् आरोपी दिल्लीतः भिवांडीनगरं गत्वा उक्त टीईटी प्रश्नपत्रं 1,50,00,000 रूप्यकेषु विक्रीतवान्। आरक्षि अन्वेषकाः लीक कृतस्य कागदस्य स्रोतः अन्वेष्टुं वित्तीय व्यवहारस्य परीक्षणं कर्तुं महाराष्ट्रे अन्यत्र कागदं विक्रीतम् अस्ति वा इति ज्ञातुं तस्कर समूहस्य अन्येषां सदस्यानां परिचयं कर्तुं च 10 दिनानां आरक्षि अभिरक्षणं याचितवन्तः आसन्। अधिकारिणः अवदन् यत् अन्वेषणेन अन्तर्राज्यस्य राष्ट्रियस्तरस्य च जालस्य संलग्नता ज्ञाता वर्तते। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा अद्य नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण परिषदः 16 सम्मेलने समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमस्य विमोचनं करिष्यति। श्री नड्डा अस्मिन् एव सम्मेलने अनीमिया मुक्त भारत अभियानस्य परिचालन मार्गदर्शिकाः अपि विमोचयिष्यति। एनीमिया मुक्त भारत अभियानम् इत्ययं कार्यक्रमः भारतस्य एनीमिया विरुद्ध युद्धे महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः संयुक्तराज्यस्य भ्रमणस्य समाप्तेः अनन्तरं ग्रीस देशस्य एथेन्स नगरे व्यापारं निवेशं सामरिकं आर्थिक सहकार्यं च सुदृढीकर्तुं भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य उच्चस्तरीय सम्मेलनस्य नेतृत्वं कुर्वन् वर्तते।

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स को करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इच्छक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
1: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इन्क्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किये। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ये हॉकी विश्व कप से पहले एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय टीम का आखिरी मैच था। इस जीत के बाद विश्व कप से पहले टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। लॉर्ड्स में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
2: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
3: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में, मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स ने दिया सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन। सेशल्स यात्रा के दौरान भारत ने की 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच और शाजापुर में करेंगे सौर ऊर्जा पार्कों का उद्घाटन। और भारतीय महिला क्रिकेट T20 टीम विश्व कप से बाहर, और पुरुष टीम आयरलैंड से T20 सीरीज हारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी ने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की सरकार और जनता का धन्यवाद देते हुए यह सम्मान जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे सभी देशों को समर्पित किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री श्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार और सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अक्षय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मनी के बीच विक्टोरिया में हुई वार्ता में भारत ने सेशल्स को 1250 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा, जो प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। मुख्यमंत्री डॉ यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करीब 1593 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू को बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की लागत से कुकरू, चिखलदरा, मुक्तागिरी और मेलघाट को जोड़ते हुए एकीकृत टूरिज्म सर्किट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कुकरू में योगाभ्यास किया और पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ भी किया।
2: पानी को लेकर मैंने कुछ निर्णय किए हैं। ग्राम पंचायत कुकरू में राशि 4,14,00,000 की लागत से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कसई में तालाब निर्माण का सर्वे उपरांत जो खर्चा लगेगा हम देंगे। ग्राम जामूखेड़ा में रोड निर्माण के लिए 70,00,000, ग्राम लोकल दरी में पुलिया निर्माण 40,00,000, ग्राम कसई भेड़िया कुंड में 85,00,000, ग्राम खामला में बालिका छात्रावास निर्माण 1,20,00,000, मतलब 120,00,000 की ये छात्रावास की मंजूरी दी है।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांवों की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
3: इस साल बजट में प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के। मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही, इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगेगा, और इसका उपयोग अगर ढंग से हो गया तो गांव की जरूरत के बुनियादी जरूरतों के सारे काम हम इससे पूरा कर दें। योजना अधिसूचित हो गई, रूल्स बनाने में सहयोग मिला है, और लगभग एक आध राज्य शायद अपवाद हो तो हो नहीं तो सब राज्यों ने बजट में प्रावधान कर दिया है अपने हिस्से का।

0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कल खरगोन के झिरनिया में आयोजित सिकल सेल शिविर में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और प्रधानमंत्री जनमन योजना जनजाति क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया और दो एम्बुलेंस तथा एक शव वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रुख करते हैं एक अच्छी खबर का। स्वच्छ भारत अभियान को नई दिशा देते हुए खरगोन नगर पालिका ने धार्मिक आस्था, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। नगर पालिका शहर के मंदिरों से प्रतिदिन फूल एकत्रित करके फूलों की अगरबत्ती बना रही है। इस खास अभियान की और जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: शहर के मंदिरों से निकलने वाले फूल अब कचरा नहीं बन रहे, बल्कि उन्हीं फूलों से सुगंधित अगरबत्तियां तैयार की जा रही। नगरपालिका ने शहर के 50 से अधिक मंदिरों से प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल फूल एकत्रित करने की व्यवस्था की है। इसके लिए विशेष वाहन लगाए गए जो फूलों को संग्रहित कर अगरबत्ती निर्माण केंद्र तक पहुँचाते हैं। तैयार की गई अगरबत्तियों को कुंदा नाम दिया गया है और उन्हें मंदिरों में निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। नगरपालिका का यह नवाचार स्वच्छ भारत अभियान की भावना को मजबूत करते हुए कचरे के पुनः चक्रण और पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। अनुकूलनीय पहल को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते।
3: शहर में लगभग 50 से 60 मंदिर हैं, जिनमें कम से कम दिन भर में 5 क्विंटल से अधिक फूल संग्रहण होता है। उनको हम कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करके हम टेंशन ग्राउंड पे हमारा जो मशीनें रखी हुई है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके उसकी सफाई करके पाउडर बनाया जाता है, सुगंधित अगरबत्ती तैयार की जा रही है।
2: खरगोन नगर पालिका की यह पहल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल गुना में दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने प्रेजेंटेशन के जरिए कूनो नदी पुनर्जीवन परियोजना, समृद्धि केंद्र और कार्डियक एम्बुलेंस सेवा जैसी योजनाओं की जानकारी दी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिला चिकित्सालय से बच्चों को पोलियो रोधक दवा की दो बूंद पिलाकर अभियान की शुरुआत की। झाबुआ जिले में 2,13,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के लिए 1,100 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। इसके साथ ही इंदौर, सागर, नीमच, देवास, जबलपुर, खंडवा और मंदसौर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भी इस अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रदेश की 4 पारंपरिक कृषि उपजों सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैंगनी अरहर और छत्री धान को GI टैग मिल गया है। कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि इससे उन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों में नई पहचान, कानूनी संरक्षण और बेहतर कीमत मिलेगी। ये चारों उपज मुख्य रूप से डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर, बालाघाट और शहडोल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र महाकौशल के क्षेत्र में उगाई जाती हैं। प्रदेश में 19 मार्च से शुरू हुए जलगंगा संवर्धन अभियान का कल समापन होगा। समापन के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति रहेगी। अभियान के दौरान जल संरक्षण, भूजल संवर्धन और नदी पुनर्जीवन से जुड़े 3.5 लाख से ज्यादा कार्य पूरे किए गए हैं। कल हर ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा जाएगा और उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों तथा संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में आज भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 24 घंटे में 4 इंच या उससे ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब रुख करते हैं खेल का। ICC महिला 20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स में ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर 172 रन बना लिए। वहीं आयरलैंड ने इतिहास रचते हुए पहली बार मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारत को कल T20 सीरीज में हरा दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की 7 शासकीय ITI संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 30 जून है। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पिपलिया मंडी में 1,77,00,000 की लागत से 32 कैश काउंटर दुकानों और ग्राम गुड़बेली छोटी में सड़क का भूमि पूजन किया। डिंडौरी जिले को HPV टीकाकरण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। इंदौर में 45 दिवसीय शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का कल समापन किया गया और धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। कार्यक्रम आपके बीच लेकर आ रही हैं प्रीति जोशी।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं हमारे डॉक्टर। भगवान जीवन देते हैं, लेकिन उस जीवन की रक्षा करने का काम करते हैं हमारे डॉक्टर। सफेद कोट में नजर आने वाले ये लोग सिर्फ चिकित्सक नहीं, बल्कि उम्मीद, विश्वास और जीवन के रक्षक हैं। इसीलिए इनके समर्पण, त्याग और सेवा को सम्मान देने के लिए ही हम हर वर्ष विश्व डॉक्टर डे मनाते हैं, जो न केवल हमारी बीमारियों का इलाज करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भरोसा और शक्ति का स्रोत भी बनते हैं। इसीलिए हम उनके धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए हमारे डॉक्टर जीवन को सार्थक बना देते हैं।

मेरी इन बातों से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज गुड मॉर्निंग इंदौर में बातें होंगी सेवा भाव की, क्योंकि आने वाली 1 जुलाई को हम मना रहे हैं वर्ल्ड डॉक्टर डे। साथ ही श्रोताओं, एक और खास विषय पर बातचीत होगी। जी हाँ, विश्व नशा निरोध दिवस हमने अभी मनाया और उस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही रहता है श्रोताओं, कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जिंदगी अनमोल है, इसे नशे की लत में बर्बाद मत कीजिए। हर सांस में एक नई संभावना है, हर पल में एक नया मौका है। एक मजबूत संकल्प लें और एक स्वच्छ खुशहाल जीवन की तरफ बढ़ें।

0: तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नशा निरोध दिवस और विश्व डॉक्टर दिवस की, क्योंकि दोनों ही हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी है। एक हमें स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करता है तो दूसरा हमें उस स्वास्थ्य को बनाए रखने वाले डॉक्टर के समर्पण को याद दिलाता है। तो आइए गुड मॉर्निंग इंदौर में सबसे पहले बात करते हैं इंदौर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अभय जैन से।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
2: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: नमस्कार सर,
2: मैं डॉक्टर अभय जैन साइकेट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ।
1: जी सर, डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि आप एक मनोचिकित्सक हैं, तो आप कब से इस फील्ड में हैं और किस तरह से नशे की लत छुड़वाने में मदद करते हैं?
2: मैं इस फील्ड में लास्ट 40 वर्षों से काम कर रहा हूं और नशे के लिए विशेषकर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपने देश में जिस हिसाब से नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवा व्यक्ति जिस हिसाब से इस नशे की वजह से देश और खुद का और समाज का नुकसान कर रहे हैं, इस वजह से इनके शिक्षा के लिए, इनके एजुकेशन के लिए और इनके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि ये नशे के बारे में जानकारी रखें और उनके क्या दुष्परिणाम हैं उनके बारे में भी वो जानकारी रखें और इसके लिए क्या इलाज उपलब्ध है वो भी उन्हें जानकारी होना चाहिए।
1: जी, आपने एकदम सही कहा। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं?
2: हमारे पास जैसे बहुत कॉमन है जैसे अल्कोहल, टोबेको और स्मोकिंग, इस प्रकार के नशे के आदि आते हैं जो बहुत तड़पते हैं कि उनको किसी तरीके से इससे निजात मिले, पर उनको कुछ समझता नहीं है कि कहाँ जाएं, अब कैसे बाहर निकलें। तो हमारा ये है कि किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलें, पूरा गारंटीड इलाज रहता है। अगर वो उनकी मोटिवेशन अच्छी है तो वो पूर्ण रूप से बाहर आ सकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि अगर हमारी खुद की इच्छा शक्ति प्रबल है तो हम किसी भी नशे को छोड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल
1: जी। तो नशे को छुड़वाने के लिए क्या प्रक्रिया की जाती है?
2: सबसे पहले तो हम उनको डिटॉक्स करते हैं, जिससे उनकी जो एक विड्रावल स्टेज रहती है, जो कई दिनों से जैसे अल्कोहल ले रहे हैं, जैसे ही वो छोड़ते हैं तो तुरंत उनको उसके विड्रावल आते हैं, मतलब वो जब तक न मिले तो मछली जैसे तड़पते हैं। तो प्रारंभिक तौर के लिए सप्ताह दो सप्ताह के लिए उनको एक ऐसी दवाई दी जाती है जिससे उनकी वो तड़प खत्म हो जाए और फिर उनकी अंदरूनी जो मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से वो नशे के आदि हो गए हैं उसकी ऐसी गोली देते हैं कि उनसे उनको फिर नशा सामने भी रखा हो तो वो लेने की प्रवृत्ति नहीं रहती है। तो कुल मिला के उनकी आंतरिक मानसिक बीमारी का अगर इलाज कर दिया जाए तो वो नशे की तरफ अग्रसर नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम योगा की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, तो वो कहाँ तक लाभदायक है?
2: बहुत लाभदायक है। ये सभी लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं जिनको की अगर योगा, कसरत, जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, सब करने से पूरा फायदा होता है। उनको अंतर को, खुद को समझने में भी मदद मिलती है, शरीर को भी फायदा होता है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। डॉक्टर साहब, अभी हमने 26 जून को विश्व नशा निरोध दिवस मनाया, तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्या कहेंगे आप?
2: उद्देश्य यही है कि हमारे युवाओं को मालूम रहे कि ये नशा एक भयानक कैंसर जैसी बीमारी है, उनके नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए और इनसे उपलब्ध जो इलाज है उनके जानकारी के लिए कि उन लोगों को ये चीजें उपलब्ध है आसानी से, सभी जगह उपलब्ध है, ये उनको ज्ञात रहे और वो इनका लाभ ले सके, इस उद्देश्य से किया जाता है कि वो इनसे सभी पहलुओं को अच्छे से समझें और उनका उपयोग करें।
1: जी, क्या सरकार भी इस तरह की कुछ मदद कर रही है?
2: सरकार भी बहुत जोर शोर से प्रयास कर रही है, सरकारी अस्पतालों में भी सब सुविधाएं हैं, सरकार अपने लेवल के इन लोगों के लिए कई बार वो विज्ञापन भी देती है और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट सभी इस प्रकार की आयोजन करते हैं कि लोगों में, युवाओं में इस प्रकार के जो दुष्परिणाम है और उनसे बाहर निकलने की क्या प्रक्रिया है उसके लिए करते रहते हैं प्रयास।
1: जी बिल्कुल, लोग नशे से दूर रहें, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी को चुने, नशे को न चुने। नशा एक वक्त पे आकर के उनको ऐसे एक दरवाजे पे आ जाता है जहाँ बाहर नहीं जा सकते वापस, उसी पिंजरे में रहेंगे कैद। तो हम ये कहेंगे कि अभी समय रहते अपन उस चीज को पहचान लें और इलाज करा लें।
1: बहुत अच्छी बात कही है। जो कि डॉक्टर साहब, विश्व डॉक्टर दिवस भी बहुत नजदीक है, तो आपके लिए ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है?
2: महत्वपूर्ण इसके लिए कि हम समाज, देश, खुद को सेवा का मौका दें कि भाई ये किस तरीके से समाज और देश अगर नशा मुक्त रहेगा तो देश भी सशक्त रहेगा, यही एक संदेश है।
1: और विश्व डॉक्टर दिवस पर आप क्या अपने मरीजों से, आपके सुनने वालों से कहना चाहेंगे?
2: हम यही कहना चाहेंगे कि ये शिक्षित रहें, सुदृढ़ रहें और देश के लिए जो करना चाहिए वो करें। अपने अपने लेवल पे जो जो नागरिक हैं, जो काम जिनको दिया है वो ईमानदारी से करें। जैसे प्रधानमंत्री भी बोलते

0: की जो मेरे को सेवा करने का मौका मिला, मैं श्रमिक हो तो वो अपनी श्रमिक की जो क्षमता है वो ईमानदारी से करे, जो व्यक्ति जिस फील्ड में है सब ईमानदारी से करे, बस यही एक सरकारी अधिकारी हैं जो उनके भी जो एक काम है बस ईमानदारी से वो कर ले तो देश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश है आपका कि सभी लोग अपना ईमानदारी से काम करें तो हम हर चीज से मुक्त हो सकते हैं और नशे से भी निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो युवा है वो देश का कर्णधार है हमारे और उनके कंधों पर भविष्य है, तो उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप?
0: बिल्कुल सही बोला, युवा हमारे इस देश के कर्णधार हैं और उन्हीं के ऊपर हमारी देश की भविष्य टिका है।
1: जी, तो उन्हें हर तरीके से दूर रहना चाहिए नशे से।
0: बिल्कुल, हमारे युवाओं को देशभक्ति का नशा करना चाहिए, देशभक्ति का नशा करेंगे तो देश के अंदर एक अलग फ्लेवर बढ़ेगा।
1: जी, और देश भी सुदृढ़ होगा, हमारा युवा भी सशक्त होगा।
0: बिल्कुल, और वर्ल्ड में हमारी एक शान बनेगी। जिंदगी एक ऐसी पहेली है जिसे नशे में न गंवाएं और उसे अच्छे कार्यों में अपने समाज, परिवार, खुद के लिए करें और इसमें नशों के अंदर अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। जिंदगी एक ऐसी क्षणिक है, इसको सही वक्त और सही समाज के लिए यूज करने।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर रवि जी आपने, बहुत ही अच्छी बातचीत हमसे की है। अब हम आपकी पसंद का एक गीत जानना चाहेंगे जो श्रोताओं के साथ हम आपको सुनवाएं।
0: आनंद फिल्म का जिंदगी कैसी है पहली ये सुना।
1: क्या बात है, बहुत ही

0: कभी तो हंसाए।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
2: गुड मॉर्निंग इंदौर, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनिल दुबे हूँ और पिछले कई साल से मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं आज आपसे मुखातिब हूँ।
1: नमस्ते डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, विश्व डॉक्टर दिवस आने वाला है, तो ये दिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: हमारे लिए और हमारे रोगियों के लिए, दोनों के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हमें यह हर साल स्मरण करता है कि रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर्स का

0: ज्ञान, अनुभव और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है और उन्हें इसका उपयोग आम जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के करना चाहिए।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है। आप किस चीज के डॉक्टर हैं ये जरूर हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: मैं मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, MD मेडिसिन किया हुआ है
1: जी। डॉक्टर साहब, इस प्रोफेशन में आप कैसे आए, आपको क्यों लगा, आपने कैसे निर्णय लिया कि आपको इस फील्ड में आना है?
0: इस फील्ड में आने के पहले मेरे माता पिता का ये अरमान था कि मेरा एक बेटा डॉक्टर बने और इसके लिए मेरी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया गया और मैंने भी एक मन में निश्चय कर लिया था कि मैं कैसे भी मेहनत करके डॉक्टर बनूंगा। और PMT फर्स्ट जो हुई थी 1970 में, उसे पास करके मैं यहाँ आया और उद्देश्य मेरा यही था कि मैं इस प्रोफेशन को व्यवसाय के रूप में न लेते हुए सेवा के रूप में लूँ और मैंने इसे पूरे जीवन भर यही ऑब्जर्व किया है। मैंने
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब। आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, खास करके दिल की बीमारियां बहुत हो गई हैं।
0: ये जो चीजें हैं जिनसे हार्ट अटैक होता है उनको अपने जीवन से अलग करना है, जैसे आराम तलब जिंदगी से तौबा करनी है, नियमित व्यायाम और नियमित दिनचर्या रखनी है, फास्ट फूड का उपयोग कम से कम, नमक का उपयोग कम, भरपूर नींद, संतुलित आहार और हरी सब्जी और फलों का प्रचुर उपयोग करना चाहिए।
1: आपने ये सही कहा कि हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो हमारी जीवन शैली है उसमें तनाव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या इसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ता है। किसी भी प्रकार के तनाव का हृदय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
1: जी।
0: धड़कन असामान्य हो जाती है, रक्त नलिकाओं का एकदम से सिकुड़ना जिसे हम वासोस्पाज्म बोलते हैं वो हो जाता है, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और ये सभी कारण जो तनाव से पैदा हुए हैं हृदय की स्थिति को और बिगाड़ते हैं
1: जी। आपने सही कहा। तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए लोगों को कौन सी आदतें अपनाना चाहिए?
0: मैंने आपको पहले भी बताया कि नियमित दिनचर्या, धूम्रपान से दूरी, शराब कम से कम, नियमित व्यायाम, फास्ट फूड का उपयोग कम, तेल व मसाले ये भी कम होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन को जितना हो सके उतना उस डाइट को कम करें, अवॉइड करें।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत ही सही चीजें हैं। आजकल हमें अपने खान पान के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, क्या नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से हार्ट अटैक के जो खतरे हैं वो कम किए जा सकते हैं?
0: हाँ जी, ये मुख्य चीज है हार्ट अटैक से बचने के लिए कि आप नियमित व्यायाम करें अपने आयु अनुसार और आपका हृदय स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि साल में कितनी बार हमें नियमित जांचें करवाना चाहिए?
0: हाँ, पहले तो मैं बता दूं जांचें कौन सी होना चाहिए
1: जी।
0: एक तो वजन, दूसरा ब्लड प्रेशर और लिपिड प्रोफाइल, ये जो मुख्य जांचें हैं वो यही हैं। और कम से कम उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए जिनके अनुवांशिकता जिनके अंदर है, जिनके यहाँ परिवार में मधुमेह और हार्ट अटैक के बहुत हुए हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए इसका। और युवावस्था में आजकल तो बहुत से केसेस युवावस्था में भी बहुत हो रहे हैं हार्ट अटैक के, तो कम से कम साल में एक बार वो जांच करा लें। प्रौढ़ावस्था में 50 साल के ऊपर वो साल में दो बार जांच करा लें। वृद्धावस्था में साल में 3 बार भी जांच करा सकते हैं और जिनमें जो कि हार्ट अटैक की तरफ ज्यादा प्रोन है उनको थोड़ी और जल्दी भी जांच कराना संभव है। इससे हम अपने आप को सही रख सकेंगे। IBP, हार्ट अटैक और डायबिटीज में जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको थोड़ी ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा।
1: जो वर्ल्ड डॉक्टर डे आने वाला है वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
0: इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने रोगियों के लिए निष्ठापूर्वक हम उनकी सेवा कर सकते हैं। अपने प्रोफेशन को व्यवसाय न बनाते हुए सेवा की भावना मन में रखते हुए अगर हम किसी का इलाज करेंगे, अपने ज्ञान का, अनुभव का ईमानदारी से उपयोग करेंगे, ये सोच के मुझे ये दिन बहुत महत्वपूर्ण लगता है।
1: बहुत अच्छी बात कही है। कोई ऐसा यादगार अनुभव है आपका जो आपको याद आ रहा है इस समय?
0: डॉक्टर्स के जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव होते हैं जब वो करुणा, दया और ममता से भर जाता है और रोगियों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहता है, चाहे वो समय हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मस्तिष्क हो, हर तरह से जो है वो रोगियों की सेवा में लगा देता है। और ऐसे न जाने कितने अनुभव हैं जो कि इतने छोटे से समय में अपन समेट नहीं सकते।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बहुत सारे अनुभव होते हैं एक डॉक्टर के जीवन में। आजकल का जो युवा है वो इस फील्ड में आना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने अपना जीवन जिया, मेरा जीवन ही उनके लिए एक संदेश है कि मैंने अपने जीवन भर में यह ध्यान रखा कि मेरा जो एक प्रोफेशन है ये व्यवसाय न बने, सेवा की भावना उसके साथ सम्मिलित रहे। इसके साथ में अगर हमारी इनकम होती है तो उसको जो है लॉजिकली हम उसका आनंद लें। सेवा की भावना सर्वोपरि, जितना भी ईमानदारी हो सके उतनी ईमानदारी से अपना काम करें और अपना ये ध्यान रखें कि हम रोगी के हिसाब से अपने आप को पेश करें। गरीब रोगी भी होते हैं जिनके पास में पैसा नहीं होता, तो उसका भी हम ध्यान रखें। बस हर जगह ईमानदारी, निष्ठा और सेवा की भावना, ये तीनों सर्वोपरि होना चाहिए
1: जी। यानी

0: किसी को डॉक्टर बनना है तो इन सभी चीजों का ध्यान उसे रखना चाहिए।
1: जी
0: कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपने किसी का इलाज किया है और वो ठीक हो जाता है तब आपको कैसा अनुभव होता है?
1: बस ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ।
0: जी,
1: कि हमारा जीवन जो है सफल हो गया।
0: डॉक्टर साहब, विश्व डॉक्टर दिवस आने वाला है, इसके अवसर पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से जिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ, अपना नियमित चेकअप कराते रहें, नियमित दिनचर्या रखें, तनाव से दूरी बना के रखें, अपने हेल्दी शौक जैसे नृत्य है, संगीत है, खेल है, इसके साथ स्वास्थ्यप्रद वातावरण में सामान्य पारिवारिक जीवन जिए, खुशी से जिए और नियमित चिकित्सक का परामर्श भी लेते रहें।
0: बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर साहब। एक और प्रश्न यहाँ मेरे मन में आ रहा था कि अभी हमने 26 तारीख को विश्व नशा निरोध दिवस मनाया है, तो नशे को दूर करने में डॉक्टर कितनी सहायता कर सकते हैं किसी मरीज की?
1: यहाँ पर फिर वही बात आती है कि अगर डॉक्टर अपना काम निष्ठापूर्वक करेगा और अपने रोगी को नशे के बारे में जो नुकसान है और जो समस्याएं हैं उनसे वो भली प्रकार अवगत कराएगा तो वो एक बहुत बड़ा लाइट हाउस बन सकता है अपने रोगियों के लिए। और चूंकि रोगी उनसे लाभ ले चुका होता है स्वास्थ्य का, तो वो जो रोगी होते हैं वो डॉक्टर्स की बात आसानी से मान जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर को खुद को भी जो है नशे से दूर रहना चाहिए तो वो एक मिसाल कायम कर सकता है। तो जब वो अपने मरीज को बोलेगा तो मरीज उसकी बात ईमानदारी से स्वीकार करेगा, वो मानेगा।
0: तो डॉक्टर बहुत ज्यादा सहायक होते हैं किसी भी नशे को दूर करने के लिए।
1: निश्चित रूप से
0: जी,
1: आकाशवाणी का धन्यवाद देना है कि उन्होंने मुझे अवसर दिया और मैंने अपने मन की भावनाओं को खुल के आपके सामने रखा, और आपको भी धन्यवाद।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अब इस खास मौके पर एक गीत की फरमाइश आप जरूर करें। ऐसा कौन सा गीत है जो आपको प्रेरणादायी लगता है जो इस खास अवसर पर आप सुनना चाहते हैं?
1: जी हाँ, मुझे फिल्म हमराज का एक गीत बहुत प्रेरणादायी लगता है
0: जी,
1: और समय समय पर मैंने इसको गाया भी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब आप गीत गाने के भी शौकीन हैं।
1: तो मैं आपको दो लाइन गुनगुना के
0: जी बिल्कुल
1: सुनाता हूँ। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न

0: और न सर झुका के जियो।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गीत को गाया। लीजिए आपके रेडियो सेट पर सुनिए आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

0: गुड मॉर्निंग इंदौर।
1: गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: नमस्कार, आप अपना नाम बताएं।
1: मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेश्वरी, इंदौर से हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजर हूँ।
0: जी ज्ञानेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। ये बताइए कि आपके जीवन में डॉक्टरों की क्या भूमिका रही है, क्योंकि वर्ल्ड डॉक्टर डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: डॉक्टर हमारे जीवन में भगवान के दूसरे रूप जैसे हैं। वे बीमारी के समय सही उपचार देकर हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। मेरे जीवन में भी डॉक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है, और वाकई में हमारे जीवन में डॉक्टरों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं डॉक्टर का सहारा लेते हैं। क्या किसी डॉक्टर ने आपकी या आपके परिवार की विशेष मदद की है, कुछ बताएं हमें।
1: जी हाँ की है। जब भी मेरे परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई, डॉक्टरों ने ही सही मार्गदर्शन और उपचार देकर बहुत मदद की। उनके प्रयासों से हमें राहत और विश्वास मिला, बहुत विश्वास मिला।
0: जी, आप डॉक्टरों को समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण मानती हैं?
1: देखिए, डॉक्टर समाज की एक तरफ से रीढ़ है। वे दिन रात लोगों की सेवा ही करते रहते हैं और अनगिनत लोगों का जीवन बचाते हैं, क्योंकि ये मेरा अनुभव। मैंने जिस भी डॉक्टर को रात को भी बात की है तो वो रात को भी फोन उठा लेते हैं। उनके बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना करना बहुत कठिन।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर भगवान के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो डॉक्टर ही है। जी। क्योंकि डॉक्टर हर मर्ज की दवा वो दे देते हैं और व्यक्ति को स्वस्थ कर देते हैं। और जब भी कोई बीमारी या संकट आता है तो हम सिर्फ डॉक्टर की तरफ देखते हैं कि वो हमें सही सूचना देंगे और वो इलाज कर देंगे और हमारा जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी। हम डॉक्टर्स डे मना रहे हैं तो आप किस तरह से उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगी?
1: डॉक्टर अपने ज्ञान, मेहनत और समर्पण से लोगों का जीवन बचाते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।
0: जी,
1: मैं सभी डॉक्टरों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आपकी सेवा, त्याग और समर्पण समाज के लिए बहुत ही अमूल्य है। आप इसी तरह मानवता की सेवा करते रहें। ईश्वर आपको स्वस्थ, सुखी और सफल रखें। सभी समाज

0: पड़ता है। मैं मेडिटेशन की क्लासेस देती हूँ। मेडिटेशन में मैं ये समझाती हूँ कि इतना आज का समय बहुत कठिन है जीना, मन इतना वेग से, हवा के वेग से भी ज्यादा चलता है, उसको समझना पहले बहुत जरूरी है कि हमें क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कितनी नींद करना है, कितना बैठना है। तो ये दिनचर्या अगर हमारी सही रहती है तो हम स्वस्थ जरूर हैं।
1: आपने सही कहा कि अगर हमारी दैनिक दिनचर्या व्यवस्थित है और हम योग और व्यायाम को अपने जीवन में शामिल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहते हैं।
0: एटमॉस्फेयर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। मेरी प्रकृति बदलती है तो मुझे थोड़ा सा अप डाउन स्थिति स्वास्थ्य में रहती है, तो उसके लिए हमें डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है कि हमें क्या करना चाहिए, गर्म खाना चाहिए, पीना चाहिए, वो हमको खुद भी समझना है और डॉक्टर की भी जानकारी लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसलिए हमारे जीवन में डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण है,
0: बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भगवान ही है, एक तरफ से भगवान के बाद डॉक्टरों का ही नंबर आता है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है।
0: 1 जुलाई को डॉक्टर डे है, इसके लिए मैं सारे डॉक्टरों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आपके समर्पण और सेवा भावना को मेरा सादर नमन है। आप इसी तरह मानवता की सेवा करते रहें।
1: बहुत अच्छी बात कही है ज्ञानेश्वरी जी आपने। अब आपकी पसंद का गीत बताएं जो श्रोताओं के साथ हम आपको सुनवाएं।

नशा छोड़ो, सपनों से नाता जोड़ो। जी हां श्रोताओं, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज का आधार है नशा मुक्त जीवन। आइए जागरूकता फैलाएं और नशा मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, और साथ ही जीवन को नई आशा और प्रेरणा देने वाले हमारे डॉक्टरों का सम्मान करें।

आज के गुड मॉर्निंग इंदौर में बस इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ करेंगे आपसे फिर मुलाकात। अब अनुमति दें प्रीति जोशी को। नमस्कार।

श्रोताओं, ये था आज का गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी प्रीति जोशी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन

0: में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉ वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता करने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच बाहरी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा

0: चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 01123104817 01123417106 और 01123344444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा। बहरीन कुवैत पर फिर हमला, राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgulam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital, Doha, tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish AFIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation of the President of Seychelles, Patrick Hermini, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, and Prime Minister of Mauritius Naveen Chandra Ramgulam were also present at the event. According to the Ministry of External Affairs, India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's vision Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, and a commitment to the Global South. The MEA said Mr. Modi's visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Modi was conferred the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The award, which was presented by President of Seychelles, Patrick Hermini, acknowledges PM Modi's long-standing push for sustainable growth and his green vision. PM Modi thanked the people and the government of Seychelles after being conferred the Guardian of the Blue Horizon. In a statement, Foreign Secretary Vikram Misri said the honour has been conferred upon Prime Minister for his green leadership and efforts towards advancing the interests of the developing countries and his long-standing commitment towards promoting blue economy, climate action and sustainable management of ocean resources.
4: At the State House, in a special gesture, President Dr. Patrick Hermini conferred upon Prime Minister the distinction, the Guardian of the Blue Horizon. This is the first time that this distinguished honor has been bestowed, and it was conferred on Prime Minister for his distinguished leadership and steadfast commitment towards sustainable development, climate resilience, blue economy, and advancing the aspirations of small island developing states, or as the Prime Minister calls them, large ocean countries.
2: Prime Minister Narendra Modi met his Mauritius counterpart Dr. Naveen Chandra Ramgulam in Seychelles yesterday. The two leaders discussed the ongoing cooperation between India and Mauritius. They further reviewed the progress made in the implementation of the special economic package extended by India. The two prime ministers agreed on the significance of the India-Mauritius Enhanced Strategic Partnership under India's Vision Mahasagar and Neighbourhood First policy and their shared commitment to the Global South. The United States and Iran have agreed to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. The move is aimed at resolving their dispute over the Strait of Hormuz after days of military escalation threatened to derail the fragile ceasefire. The announcement came after multiple rounds of strikes around the Strait of Hormuz. More in this report.
0: The US carried out strikes on Iranian military targets after accusing Tehran of violating the ceasefire by attacking commercial vessels. Iran responded by launching ballistic missiles and drones at US military bases in Bahrain and Kuwait, while both sides exchanged fresh warnings over further escalation. A second US official said both sides would stand down for now and that vessels can move freely while discussions continue. The renewed fighting stemmed from differing interpretations of the Memorandum of Understanding.

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: श्रोताओं विज्ञापन के पहले जो गीत आपने सुना लैला की उंगलियां बेचूं मजनू की पसलियां बेचूं, क्या आपको नहीं लगता कि कोई इस तरह ककड़ियां बेचे तो कोई भी अपने आप को उस दुकान या ठेले पर जाने से रोक नहीं पाएगा। हमने अक्सर देखा है कि बाजार में दो वस्तुएं लगभग एक जैसी और उनकी गुणवत्ता समान कीमत में भी बहुत अंतर नहीं, फिर भी एक ज़्यादा बिकती है और दूसरी कम। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है प्रेजेंटेशन। किसी ने सही कहा है कि पहली मुलाकात का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही बात व्यापार पर भी लागू होती है। ग्राहक को सबसे पहले उत्पाद की पैकिंग, उसकी सजावट, दुकान की व्यवस्था और उसे प्रस्तुत करने का तरीका लुभाता है।

0: आज से कुछ दशक पहले व्यापार अपेक्षाकृत सरल था। दुकानदार और ग्राहक के बीच विश्वास का रिश्ता होता था। दुकानदार का इतना कहना काफ़ी होता था कि भाई साहब माल बढ़िया है, आंख बंद करके ले जाइए। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि ग्राहक का ध्यान खींचने के लिए आकर्षक प्रस्तुतीकरण ज़रूरी हो गया है। आप जब बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ उत्पादों को इस तरह सजाया जाता है कि ग्राहक की नज़र तुरंत उन पर पड़े। तेज़ रोशनी, रंगीन सजावट और डिस्प्ले, सब कुछ सोच समझकर तैयार किया जाता है। बस आप एक नज़र देखें और लट्टू हो जाएं।
1: तेल माले, कैंपेलिया।

का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण।

सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन, अरे राजा सुन, इस चम्पी में बड़े बड़े गुण। नाक दुखों की एक दवा है, क्यों ना

0: अब देखिए ना, चाय तो छोटी छोटी टपरियों पर भी अच्छी मिलती है, लेकिन उसी चाय को कुल्हड़ में डालकर ऊपर से दो तुलसी की पत्तियों से सजाकर सलीके से पेश किया जाए तो आप उस चाय के मुंह मांगे दाम दे देते हैं। यहाँ आपने सिर्फ चाय नहीं, उसका प्रेजेंटेशन खरीदा है। श्रोताओ, यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उत्पाद की पैकिंग और ब्रांडिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। उन्हें पता है कि ग्राहक का पहला निर्णय अक्सर आंखों से होता है, इसलिए वे चाहते हैं कि ग्राहक जब भी उनका उत्पाद देखे तो उसके मन में सकारात्मक भावना पैदा हो।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल।

आजकल रेस्टोरेंट में भी यही चलन देखने को मिलता है। भोजन केवल स्वादिष्ट होना ही काफी नहीं है, उसे सुंदर ढंग से परोसा जाता है। प्लेट की सजावट, भोजन का रंग संयोजन, होटल या रेस्टोरेंट का माहौल, वहाँ बजने वाला म्यूजिक और प्रस्तुति ग्राहक के अनुभव को बेहतर बनाते हैं। यानी चमचमाती पैकिंग, जगमगाती दुकान और मुस्कुराता दुकानदार हो तो ग्राहक आधा सामान वैसे ही खरीद लेता है।

साल के दिन है 365 दुनिया बहती धारा। हर साल के दिन है 365 दुनिया बहती धारा, लेकिन ये दिन ऐसा मौका ना आए दोबारा। अरे प्यार की बाजी वाकई का सतवा, प्यार की बाजी एक दफा की जो हारा सो हारा। आज मोल तोल में दिन बीते तो आ जाओगे बच्चा।

आसमान पे छिटका था ये बनके मंगल तारा, अरे आसमान पे छिटका था ये बनके मंगल तारा। मेरी नजर पड़ी और मैंने फौरन रॉकेट मारा। आज लाया हूँ मैं अमुनिया, लाया हूँ मैं खास आपके लिए ये तोहफा प्यारा। आज प्यार में जान भी दे सकता है हिंदुस्तानी बच्चा। अरे लै लो है ये दिल का हीरा सच्चा, न पक्का है न कच्चा, है माल सबसे अच्छा, मैं असली फेरी वाला मुझको जाने बच्चा।

आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन व्यापार के युग में प्रेजेंटेशन का महत्व और बढ़ गया है। जब ग्राहक किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर कोई वस्तु देखता है तो वह उसे छू नहीं सकता, उसकी गुणवत्ता नहीं परख सकता। ऐसे में उत्पाद की तस्वीरें, उसका विवरण और उसकी प्रस्तुति ही ग्राहक का विश्वास जीतती है। यानी सोशल मीडिया पर किसी उत्पाद को आकर्षक तस्वीर, रचनात्मक वीडियो, दिलचस्प विज्ञापन, लाखों लोगों तक इस तरह आप अपनी पहुंच बना सकते हैं और उन्हें उत्पाद खरीदने पर मजबूर कर सकते हैं।

0: जाए और कोई गरीब खाए, घर बैठे दौलत आए, बदले ये किस्मत
1: ओ दो पैसे कीमत,
0: ओ बदले ये किस्मत।

यहाँ ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि दिखावा लंबे समय तक सफलता नहीं दिला सकता। यदि पैकिंग सुंदर हो लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो तो ग्राहक एक बार तो खरीद सकता है लेकिन दोबारा नहीं लौटेगा। व्यापार की स्थायी सफलता के लिए दोनों चीज़ों का संतुलन जरूरी है, बेहतरीन प्रस्तुति और उत्कृष्ट गुणवत्ता। प्रेजेंटेशन ग्राहक को आकर्षित करता है जबकि गुणवत्ता ग्राहक का विश्वास जीतती है, और व्यापार में विश्वास से बड़ा कोई निवेश नहीं है। तो याद रखिए, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन जो अच्छा होता है वही टिकता है।

श्रोताओं, अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मराठी कार्यक्रम।

अभी आप मराठी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में लीजिए अब सुनिए पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाया राग तोड़ी, विलंबित गत झुमरा ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित निखिल घोष।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने पंडित पन्नालाल घोष का बांसुरी पर बजाए राग तोड़ी सुना। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित निखिल घोष। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी, आलेख नीरज कुमार शुक्ल का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। अशोकनगर जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात प्रशासन और सहकारिता की। जिले में बीते दिनों राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल के नवनियुक्त प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने मुंगावली तहसील का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, ऊर्जा संरक्षण, सदस्यता महाअभियान और हरित सहकार अभियान की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और तय समय पर लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को बेहतर बिजली सेवाएं देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने विभिन्न स्थानों पर बिजली समाधान शिविर लगाए। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन को लेकर भी जिले में लगातार गतिविधियां चल रही हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कलेक्टर साकेत मालवीय ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तुलसी सरोवर तालाब में श्रमदान कर साफ सफाई की। वहीं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से बावड़ी उत्सव का आयोजन किया। अब बात करते हैं जिले की ऐतिहासिक धरोहरों की। अशोकनगर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत को पर्यटन से जोड़ने के लिए जिला पुरातत्व और पर्यटन तथा संस्कृति परिषद की ओर से पर्यटन मित्र तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन मित्रों के लिए 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

बीते दिनों किया गया। विश्वख्यात चंदेरी साड़ी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अब प्रत्येक चंदेरी साड़ी पर GI टैग लगाया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि चंदेरी साड़ियों के संरक्षण और बेहतर विपणन के लिए हैंडलूम पार्क के नाम से एक समर्पित वेबसाइट तैयार की जाएगी और MPIDC को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब बात करते हैं खेती किसानी की। जिले में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। कृषि उपसंचालक अमित भदौरिया ने बताया कि इस वर्ष 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबसे अधिक 1,78,000 हेक्टेयर में मक्का, 65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन और 9,000 हेक्टेयर में मूंग तथा 2,500 हेक्टेयर में उड़द की बुआई की जाएगी। समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में भी जिले में विशेष अभियान चलाया गया। बीते दिनों नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी उत्साह के साथ मनाया गया। अशोकनगर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिले में संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो इस योजना के तहत जिले के हजारों हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के हितग्राहियों के खातों में कुल 1,49,22,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी खबर की। श्रद्धेय जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के संबंध में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक टिप्पणी प्रसारित किए जाने के मामले में जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा था। समाज की सूचना पर थाना कोतवाली अशोकनगर में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से जिले में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। ये कोच एथलेटिक्स में रुचि रखने वाले युवाओं के साथ साथ आर्मी और एमपी पुलिस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी करने वाले युवक युवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। सुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों की जमीन के सीमांकन और बंटवारे के लंबित मामलों का समय पर निराकरण करने, CM हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान देने और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। अशोकनगर जिले से होकर गुजरने वाली बीना गुना रुठियाई पैसेंजर ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बीते दिनों क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीना के लिए रवाना किया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 6 बच्चों का उपचार कराया जाएगा। इन बच्चों को सर्जरी के लिए मुंबई के प्रसिद्ध नारायणा हॉस्पिटल के हेल्थ SRCC भेजा गया है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में इन बच्चों का इलाज किया जाएगा। और अंत में बात जागरूकता अभियान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने न्याय सबके लिए अभियान के तहत ग्राम सीहोर में बीते दिनों आदिवासी समुदाय के बीच विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में वन अधिकार अधिनियम 2006, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोकनगर जिले की चिट्ठी, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए MH हॉटलाइन कार्यक्रम।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: आईएमएच हॉटलाइन कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को शालिनी का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में आप अब से लेकर 11 बजे तक फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो चलिए लेते हैं आज का पहला फोन कॉल। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग,
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी रानू जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मूवी का नाम है मुझसे दोस्ती करोगे और इसी का टाइटल ट्रैक सुनना है।
0: जी जी,
1: और डेडिकेशन आपको रहेगा और मेरी सिस्टर नंदनी और सभी कॉलर्स को। और आपके के क्या हाल चाल है? मतलब
0: बस हम लोग अच्छे हैं, बढ़िया।

0: और
1: जी, थैंक यू,
0: चलिए धन्यवाद
1: किया
0: जी जी,
1: बस कुछ नहीं और क्या
0: है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका पहला ही फोन लगा और जी, आप जी। अपनी पसंद का गीत सुन रही हैं, तो आपको शुभकामनाएं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: ओके,
0: धन्यवाद फोन का, नमस्कार।

0: हेलो, MH हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं अमीना जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालडा नाका इंदौर से।
0: जी अमीना जी, बताएं कौन सा गीत
1: कैसे हैं
0: सुने?
1: मैडम आप?
0: बस हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं मैडम, आपकी दुआएं।
0: जी जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगी?
1: अल्लाह रखा फिल्म का सुना दीजिए, गाने के बोले परवर दिगारे आलम
0: जी
1: मोहताज
0: जी
1: हैं तेरे हम।
0: जी जी जी बहुत अच्छा गीत है। चलिए
1: जी मैडम,
0: आपको और आपके साथ हम सभी सुनते हैं ये गीत।
1: जी मैडम,
0: धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: जी नमस्ते मैम, शालिनी जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी मैं अरविंद अग्रवाल, तीनंगा जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से।
0: जी अरविंद जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम रहेगा भ्रष्टाचार,
0: जी
1: तेरे नैना मेरे नैना से।
0: भ्रष्टाचार मूवी, ये कब आई थी, कुछ याद है? आपने देखी है ये मूवी?
1: जी 90-2000 के बीच में होगी मैम।
0: अच्छा, और आपकी देखी हुई फिल्म है या ये गीत
1: जी
0: पसंद करते हैं?
1: लंबी देखी हुई है, गाना भी अच्छा है। जी
0: जी, चलिए अरविंद जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद फोन लेने के लिए आपको।
2: सा रे गा मा,
3: तुम भी गाओ।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम उलझाम जिला सीओ से गेंदालाल परिहार बोल रहा हूँ मैम।
0: जी गेंदालाल जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम राम से गंगा मेले सुने टाइटो सॉन्ग।
0: जी जी, क्या करते हैं गेंदालाल जी आप?
1: जी मैम मेरा सिलाई काम है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: तो आप अपने गांव में रहकर ही सिलाई का काम करते हैं या कहीं बाहर सीहोर में या कहीं और आपकी दुकान है?
1: नहीं गांव पे है, अच्छा बड़ा गांव है, आस पास गांव भी लगे हुए हैं तो अच्छा काम चलता है अपना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी और काम के
1: साथ में
0: साथ
1: लड़के,
0: साथ?
1: हाँ लड़के करते हैं साथ में।
0: अच्छा, रेडियो सुनते हुए आप लोग काम करते हैं?
1: जी मैम मैं बहुत पुराना सोता हूँ रेडियो का।
0: जी, चलिए गेंदालाल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं, आपकी पसंद।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप अभी और आधा घंटा मतलब 11 बजे तक फोन कर अपने पसंद के फिल्मी गीत सुन सकते हैं। भाग लेने के लिए टेलीफोन नंबर नोट कर लें 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड 0731। तो चलिए लेते हैं आज का अगला फोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोक नगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: जी सूर्य प्रताप जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: वो गाना सुनना है आजमाइश का, कांटा लगे निकल जाए मगर ना निकले नजर का तीर।
0: क्या बात है, बहुत कम सुना हुआ ये गीत है। तो चलिए आपके साथ साथ हम भी सुनते हैं फिल्म आजमाइश का ये गीत। धन्यवाद सूर्य प्रताप जी।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन। जय माता दी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी।
1: और मैं आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी जी जी
1: राजस्थान गांव का नाम अंजुमेला।
0: जी गांव का नाम एक बार फिर से बताएं।
1: गांव का नाम अंजुमेल बुगला।
0: आपका रेडियो सेट दूर रखकर आप बात कीजिए। बताएं गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी मैडम फिल्म का नाम रहेगा घरवाली और बारवाली और उसमें गाना है सारा रहेगा।
0: जी जी चलिए पूरन जी आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते
1: मैं कश्मीर से लतीफ अहमद रैना।
0: जी। लतीफ जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे,
1: कुली नंबर वन का सुनाइए, तुझे
0: कौन सा गीत।
1: मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
0: जी, किसी समय बहुत चला था ये गीत।
1: हाँ जी,
0: आप फिल्में देखने का शौक रखते हैं,
1: हाँ,
0: फिल्में देखते हैं जी।
1: मैं बहुत शौकीन हूँ उसका।
0: अच्छा, फेवरेट हीरो कौन है आपका।
1: ये अक्षय कुमार,
0: अच्छा, और हीरोइन।
1: हाँ अक्षय कुमार, सलमा खान,
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ, और हीरोइन में कौन पसंद है आपको।
1: काजल, कृष्णा
0: जी,
1: कपूर,
0: अच्छा,
1: हाँ जी।
0: चलिए आपको सुनवा रहे हैं लतीफ़ अहमद जी आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद आपका।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी जीनत जी, बताएं कौन सा गीत सुनेगी?
1: जी मुझे सुनना है मेरा गांव मेरा देश का।
0: जी गाने के बोल बताएं।
1: जी कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये वाला
0: गाना सुनना चाहती हूँ। सावन का रंग चढ़ने लगा है, बारिश की बूंदे
1: जी।
0: आते से ही
1: जी
0: बारिश के गीत याद आने लगे।
1: जी मैं मम्मी के वहाँ आई हुई थी मंदसौर में, तो
0: जी
1: रात को
0: जी
1: ही बारिश हुई यहाँ बहुत।
0: अच्छा, आपको बारिश पसंद है? जी जीना जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: हेलो
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार। मैं
0: जी।
1: अनिल भंडार सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी अनिल जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: आज हम पुरानी दास फिल्म का गाना है, लता ने गाया है। इस गीत को चलन बहु भी गाया है, लेकिन
0: जी
1: लता के आवाज में बहुत कम सुनने को मिलता है।
0: जी
1: शंकर जयकर से मुझे के चलेंद्र का गीत लिखा हुआ है।
0: गाने की बोल।
1: गाने ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल उभर गया,
0: जी
1: ढूंढ ले अब कोई घर नया। ए मेरे दिल के और चल, चलता है गाना लगता है।
0: जी, बहुत अच्छा गीत है अनिल जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: आपको भी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप MH हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: सभी सुनने वालों को शिवम का नमस्कार। उम्मीद। जी हाँ मित्रों, हमारी ज़िंदगी की समूची बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी हुई है, उम्मीद। जैसे रिश्तों की डोर हो, संबंधों की गहराई हो, प्रकृति का संतुलन हो, सब कुछ किसी न किसी रूप में इसी पर निर्भर है। और ऐसा ही एक शब्द है इंतज़ार। उम्मीद और इंतज़ार का दामन थामे हम एक बार फिर मनोहार लगा रहे हैं बादलों से कि वो भी बरसें। क्यों हमें इतना तरसा रहे हैं? हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में अभी बारिश ने दस्तक नहीं दी है। इस इंतज़ार को और कितने दिन, इस इंतज़ार की घड़ियां और कितनी लंबी होगी? हम उम्मीद का दामन थाम कर ये तो सोच ही सकते हैं कि ये इंतज़ार जल्द से जल्द ख़त्म होगा और हम बहुत जल्द उस बारिश में भीगते नज़र आएंगे जिसका हम सभी को बड़ी उम्मीदों के साथ बेसब्री से इंतज़ार है। फ़िलहाल हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आज के पहले श्रोता के कॉल का।
4: हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार।
4: नमस्कार
3: जी।
4: ये सर, मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह बात कर रहा।
3: अशोक जी।
4: जी
3: जबलपुर से बोल रहे हैं
4: सर आप।
3: हम तो बहुत बढ़िया हैं और आपसे बातें करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
4: मैं भी अच्छा हो गया सर, आपसे बात हो रही, पहली बार आपसे बात हो रही, अच्छा लग रहा।
3: जी हाँ जी हाँ। बताइए अशोक जी, आपके शहर का मौसम कैसा है अभी?
4: मौसम तो धूप ही है सर, बहोरा अड़ती चल रहा है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं आते, बादल बस।
3: अच्छा, सिर्फ बादल आ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है?
4: ऐसे कहीं कहीं जो बस जाता है छोटा मोटा।
3: अपने देश का लगभग अधिकांश हिस्सों में लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
4: जी सर, आए जमाजम बारिश तो उसका इंतजार है।
3: हम सभी को उस खूबसूरत बारिश का इंतज़ार है जिसके ज़रिए हम अपनी इस गर्मी से निजात पाएंगे। जी बताइए, कौन सा गीत आज आपके लिए हम निकालें?
4: अब आ जाए तो पर्वत से काली घटा टकराई चांदनी मूवी का है।
3: अच्छा जी।
4: आशा भोसले की आवाज़।

0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी हाँ, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।
1: जी, मैं रमेश नायक ग्राम खेरोकला जनपद महोबा उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: रमेश नायक जी,
1: जी, हाँ
0: कैसे हैं नायक साहब?
1: मैं बढ़िया हूँ जी। सर आप कौन बोल रहे हैं?
0: आज इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुआ हूँ मैं, शिवम
1: शिवम। अच्छा, जी
0: जी।
1: अच्छा, और सुनाए, और क्या है समाचार?
0: हम तो बढ़िया हैं, आप बताएं आपके यहाँ क्या है, इन दिनों हालात कैसे हैं, मौसम?
1: सर आप तो गर्मियों के ही चल रहे सर, जो है
0: अच्छा
1: अभी तो
0: अच्छा
1: यहाँ
0: अच्छा
1: बारिश नहीं हुई है, जो है बहुत गर्मी पड़ रही।
0: तो अभी वहाँ पर बारिश की दस्तक नहीं हुई है?
1: नहीं अभी यहाँ एमपी में तो सुन रहे कि वहाँ हो चुकी है इंदौर भोपाल तरफ कहीं।
0: नहीं, बारिश तो हमारे यहाँ पे भी आई है, मौसम में ठंडक आ चुकी है, उतनी गर्मी तो नहीं है,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: यहाँ यूपी में नहीं बारिश हुई अभी उत्तर प्रदेश में।
0: अच्छा जी। चलिए,
1: और
0: हम
1: सुना सिमम भाई, क्या है समाचार? भाई आप दोस्त यार।
0: बहुत बढ़िया हैं। हम चाहते हैं कि हम ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द आपके यहाँ पे भी उम्मीदों की बरसात
1: बहुत
0: हो।
1: शुक्रिया दोस्त यार।
0: जी।
1: और फार्मेसी प्रोग्राम चल रहा ना?
0: हाँ जी, आज हम आपके फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ़ोन करें गीत सुने कार्यक्रम के लिए।
1: वेरी गुड वेरी गुड यार। तो एक
0: जी
1: गाना सुना देना दोस्त यार शिवम भाई।
0: हाँ जी, बताइए।
1: एक यार, एक अनमोल मोती फिल्म है जो है,
0: हाँ
1: आपको याद
0: हाँ
1: पिक्चर चाहिए? हाँ,
0: जी
1: उसमें ऐसा भोसले ने एक गीत गाया कि मोतियों की सेज बिछाई हुई है, सेज
0: ये मोतियों की सेज बिछाई हुई।
1: बिछाई हुई है,
0: अच्छा जी।
1: दिल की दुनिया सजाई हुई है, आजा आजा लेके बारात आजा। अभी शादियों का दौर चल रहा है, ग्यारह बारह जुलाई तक शादियां हैं अभी। बिल्कुल
0: हाँ, इस फरमाइशी गीत को हम जरूर पेश करेंगे।
1: बिल्कुल दोस्त यार, बड़ा अच्छा लगा से हम भाई यार तुमसे बात करके।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते,
0: जी।
1: सिवनी से बात कर रहा हूँ, राहुल ध्रुवे,
0: कौन सी वाली सिवनी?
1: जिला सिवनी है मध्य प्रदेश।
0: अच्छा जी, ये छिंदवाड़ा के नज़दीक जो पड़ता है वो।
1: हाँ, छिंदवाड़ा के
0: अच्छा
1: नजदीक
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव यहाँ से, जहाँ पे रहता हूँ
0: अच्छा क्या करते हैं आप?
1: सर। मैं वीडियोकॉन DTH के ऊपर जॉब करता हूँ।
0: अच्छा जी। और घर परिवार में कौन कौन है?
1: हाँ, सभी है, मम्मी पापा।
0: तो रेडियो का शौक आपको कहाँ से लगा, ये बता सकते
1: सर
0: हैं?
1: मैं अभी लगभग भोपाल को 1 साल से सुन रहा हूँ सर। मैं तो ज्यादा, मैं बालाघाट से जुड़ा हुआ हूँ।
0: हाँ
1: अभी भोपाल में मुझे सबसे ज्यादा जो प्रिय है मेरा, जो प्रेम
0: जी
1: करेगी इसके लिए, ये मुझे लगता है सबसे फेवरेट है। और जो आप पूरे 7ों दिन चलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये मेरे को
0: हाँ
1: सबसे, जितने आकाशवाणी में लगभग मैं सुनता हूँ,
0: जी
1: तो ये जो भोपाल है इसमें 7ों दिन जो चलाते हैं, ये बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। जो कॉलर्स हमारे जुड़ते हैं अलग अलग गाँव से, शहर से, ये बहुत अच्छा लगता है।
0: जी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अलग अलग शहरों के, अलग अलग हिस्सों के, देश के हिस्सों से जब फ़ोन आते हैं तो हमारे नए नए श्रोता या पुराने श्रोता तरह तरह की बातें करते हैं। गीत तो आप किसी भी कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इस
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: सर,
0: की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हमारे श्रोताओं की जो बातें हैं वो इस कार्यक्रम में चार चांद लगाती है।
1: हाँ ये जबरदस्त।
0: बताइए कोई गीत जो आज आप सुनना चाहते हो वो हम आपको ज़रूर सुनवाएं।
1: दीवाना, दीवाना मूवी का रहेगा सर, तेरी
0: अच्छा जी, दीवाना फिल्म का कौन सा गीत?
1: अदा पे।
0: बहुत बढ़िया गीत आपने सुनना चाहा है। और इस गीत को
1: सर आप किससे बात हो रही है आज?
0: आज आप बात कर रहे हैं शिवम से।
1: हाँ शिवम, हाँ सर,
0: चलिए
1: धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते
1: जी नमस्कार।
0: जी, किनसे हमारी बात हो रही है ये सबसे पहले जान लें।
1: जी शिवम जी, मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ सर।
0: जी विपिन भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और आज लगभग 2-2.5 महीने के बाद याद आई भोपाल की, तो हमने कहा चलो आज कॉल करते हैं और
0: बहुत
1: देखते
0: बढ़िया,
1: हैं
0: आपने
1: किससे बात होती है।
0: हमारे अनुरोध को स्वीकार किया कि हमारे वो श्रोता जो फ़ोन कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं वजहों से उनका फ़ोन नहीं लग पाता है, उनके लिए आपने थोड़ा सा इंतज़ार किया
1: हाँ जी
0: उनके लिए।
1: बिल्कुल। और मई में तो कॉल नहीं किया मैंने, अप्रैल में बात हुई थी मेरी।
0: जी जी जी

0: जी, तो जून भी खत्म होने वाला है, बताइए क्या हाल चाल है आपके।
1: हम बढ़िया हैं। हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के सभी श्रोता बहुत अच्छे से होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं।
0: जी बिल्कुल, ठीक ठाक ही हैं और बढ़िया रहेंगे भी।
1: हाँ,
0: और आपसे बात हो जाएगी, हमने सोचा ही नहीं था, लेकिन आप आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है।
1: कहते हैं ना कि जो मन में दबी हुई इच्छाएं रहती हैं
0: जी
1: वो कभी कभी अगर बहुत शिद्दत से चाहो ना तो वो उम्मीद, वो इच्छा पूरी होती
0: जी बिल्कुल, और आपने
1: है।
0: जैसे ही हेलो बोला तो हम समझ गए कि आज तो
1: जी
0: शिवम जी
1: जी
0: आए हैं।
1: जी जी बताइए क्या हाल है इन दिनों आपके शहर।
0: हाल चाल बिल्कुल ठीक ठाक ही हैं, और अभी तो बहुत धूप हो रही है, गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बारिश तो पहले हो चुकी है एक दो बार, 3 4 दिन पहले, लेकिन
1: जी
0: अभी वैसी बारिश तो नहीं हुई है, तो धूप बहुत ज्यादा है। और फिर ग्रामीण क्षेत्र है तो उस हिसाब से खेती किसानी की तैयारियां चल रही हैं अभी तो, खरीफ की और यही बुआई की लोग तैयारियों में हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। जी
1: वैसे देखा
0: बिल्कुल
1: गया है कि मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो लगभग 25-30 तारीख के आसपास, जून की जो तारीख है उसके आसपास ही सक्रिय होता है।
0: हाँ जी बिल्कुल, और कल ही प्रादेशिक समाचार में सुन रहे थे कि 30 तारीख तक मानसून आ जाएगा, मतलब ऐसा बताया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हाँ अगले 2 से 3 दिन में बारिश जरूर होनी चाहिए।
1: चलिए, तो उम्मीदों की बारिश बहुत जल्द आपके यहाँ बरसे, हम ऐसी कामना करते हैं।
0: बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी बताइए आज कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम।
0: मोहम्मद रफी और लता जी ने गाया है तुम तो प्यार हो सजना,
1: अच्छा जी।
0: शायद दिल एक मंदिर फिल्म का गीत है।
1: बहुत
0: मुझे
1: खूबसूरत
0: तुम
1: गीत
0: से प्यारा
1: आपने
0: हो,
1: सुनना
0: जी
1: चाहा है,
0: कैसा।
1: बहुत खूबसूरत गीत है ये।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत खूबसूरत गीत है और अच्छा लगता है मुझे, और अच्छा सदाबहार गाना है, मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, तुम तो प्यार हो सजना।
1: वाह कितने कितने
0: जी
1: खूबसूरत बोल हैं और उतनी खूबसूरत उसकी धुन है, और उससे भी बढ़कर फिर क्या कहें, आवाज़ें जिसमें रफ़ी साहब और लता मंगेशकर की हो, गीत सोने पे सुहागा होना ही होना है।
0: बिल्कुल, और इस गाने के अंतरे भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि पहले उस अंतरे को बोल के बताते हैं वो लोग सिंगर जो गा रहे हैं रफी जी और लता जी, और फिर पहले बोल के बताएंगे फिर उसी को गा के बताते हैं।
1: बताइए, चलिए तो कुछ
0: जी
1: आप भी गुनगुना सकते हैं क्या।
0: मुझे तो मुखड़ा ही याद है, अंतरा तो मुझे याद नहीं आ रहा
1: चलिए
0: है।
1: मुखड़ा ही।
0: जी मुखड़ा की गाने की मैं कोशिश करता हूँ। तुम्हें तो प्यारे हो सजना, तुम्हें तो प्यारे हो मुझे तुम से, हाँ मुझे तुम से प्यारा और ना कोई, तुम्हें तो

0: नमस्कार
1: सर,
0: जी।
1: मैं ग्राम बापू तीतरा खलीलपुर तहसील पहुंच जिला जालौन से अंजलि जाटा बोल रही हूँ। जी सर,
0: जी कैसे हैं जी?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।
1: फिर बॉर्डर हिंदुस्तान का सुनवा देना, याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: बॉर्डर हिंदुस्तान
1: हाँ, इसी में याद आती है कलेजा चीर जाती है।
0: याद आती है, कलेजा चीर जाती है।
1: शिवम सर बोल रहे हैं ना
0: जी
1: आप?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: पहचान लिया, आपको सुनते रहते हैं, आपकी प्रस्तुति अच्छी लगती है सर।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हम आप जैसे श्रोताओं के लिए ही हम अपनी मेहनत करते हैं, और इस मेहनत को अगर आप सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
1: जी सर, रोज कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, आपके सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। बजता रहता और लखनऊ भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो से ऐसी कौन सी चीज़ आपने सीखी है, जान सकते हैं?
1: रेडियो से तो सर बहुत कुछ सीखा है हमने, तो 2000 से सुनते आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है, बात करना
0: हाँ
1: और सभी गायक कलाकारों को पहचानना, आप लोगों की आवाज़ पहचानना, बहुत कुछ सीखा है।
0: चलिए, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि रेडियो से बोलने की कला आ जाती है।
1: जी
0: रेडियो जो है वो सुनने का माध्यम है, लेकिन उससे बोलने की कला आ जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है।
1: जी
0: चलिए, तो ये गीत हम आपकी नज़र करते हैं, आपने फ़ोन किया इसके लिए देते हैं आपको धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार
1: हेलो। हाँ जी नमस्कार। गण आकाशवाणी भोपाल फोन करेगी सुने।
0: जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं और आपका परिचय एक बार फिर से जान लें।
1: जी सर, मैं ग्राम बिजोरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता गोलू कुमार अहिरवार।
0: गोलू भाई कैसे हैं?
1: बस सर, मैं तो बढ़िया हूँ। और आप बताइए, शिवम सर जी कैसे हैं आप?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं।

0: जी
1: और क्या चल रहा है इन दिनों?
0: बस सर जी, अभी तो मतलब बोनी की बुआई चल रही है, मतलब बोनी स्टार्ट होगी सर जी हमारा होना।
1: अच्छा, तो आपने क्या किस फसल की बोनी कर रहे हैं इस बार?
0: सर हमारे यहाँ तो सागर जिले में सर जी मक्का की बुआई ज्यादा होती है, मक्का और उड़दा की।
1: अच्छा, तो मतलब ये बारिश के दौरान आप मक्के की खेती करते हैं?
0: हाँ, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले बारिश हमारे यहाँ हो चुकी है, तो थोड़ा सा बतर आ चुका था सर जी खेत में, तो बोनी मतलब स्टार्ट होने लगे हमारे यहाँ पे। सर
1: इतना समय निकाल लेते हैं बोनी के बीच में कि रेडियो के लिए वक्त निकल जाए?
0: समय तो निकाल लेते, क्योंकि रेडियो से सर जी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातें बताते हैं विशेषज्ञ लोग, तो उनके लिए सुनना पाता है सर जी जरूरी।
1: चलिए, तो वो उन जो बातों पे आप अमल भी करते होंगे, उनसे कुछ आपको सुविधाएं भी मिल जाती होगी, लाभ भी मिलता होगा।
0: जी सर सुनते हैं, और बाकी उनकी बात को अनसुनी नहीं करते, अमल में भी लाते हैं सर जी। जो बातें जितनी बताते हैं वो सुन के हम लोग ट्राई करते हैं उन बातों के लिए, और जैसा जैसा वो बताते हैं वैसे ही करते हैं हम लोग।
1: बताइए गोलू
0: सर
1: भैया, कौन सा गीत आपके लिए निकालें?
0: सर वो एक गाना ही है, बरस हो रे मेघा मेघा, बरस हो रे मेघा
1: अच्छा,
0: मेघा, किस फिल्म का गाना है
1: ये
0: आपके दिमाग में
1: मनुहार
0: आया?
1: है, गुरु फिल्म की।
0: अच्छा, गुरु फिल्म का है।

0: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार
0: जी, नमस्कार सर।
1: जी बताइए।
0: खुदा ने खुश होकर के पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र। अंदर से फिर आवाज आई कि किसके लिए, तो मैंने कहा कि इस वक्त जिनसे मेरी बात हो रही है उनके लिए।
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया, आपका ये तारुफ का जो अंदाज़ है हमें बहुत पसंद आया। अब हम ये भी जान लें कि किन से हमारी बात हो रही है।
0: मैं आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ, पालदा नाका इंदौर से, मोहम्मद रफी मंसूरी
1: मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।
0: जी। कैसे हैं सर आप?
1: हम भी बहुत बढ़िया हैं जी।
0: बहुत बढ़िया हाल चाल सर, और मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। थोड़ी बरसात शाम के टाइम होने लग गई शुरू यहाँ पर।
1: अच्छा जी, बताइए कौन सा गीत हम आपके लिए निकालें।
0: फिल्म का नाम है दो खिलाड़ी, और गायक कलाकार है मोहम्मद रफी, और गाने को बोले झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया।

0: देखो परखा ने प्यार।
1: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर जी, मैं ग्राम अलजान बोल रहा हूँ, गेंदालाल परिहार। हाँ सीहोर के पास गांव है उलझावन।
2: कितनी दूर पड़ता है सीहोर से?
1: जी वो जो अपने नीलबड़ आतीपुर से भदभद रोड गया नहीं, उसी पड़ता है जी।
2: अच्छा
1: सर जी, वो तो अपनी पसंद के पर रहता है, जो जो नए भी सुनते हैं पुराने सुनते हैं सभी।
2: कहते हैं ना कि जो अच्छा होता है वो नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता, वो सदाबहार होता है
1: जी। वो तो परिवर्तन क्या परिवर्तन होता रहता, अच्छा लगता परिवर्तन भी।
2: एक रास्ता से उब जाता है इंसान तो परिवर्तन एक नई ताजगी के साथ में हमारे सामने आता है।
1: जी हाँ सर
2: जी, बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं हम?
1: पुराने फिल्म है आँखें, तो गाना मिलती है जिंदगी में कभी कभी।

0: कभी कभी।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुति शिवम कश्यप की थी। प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11:58 हुए हैं। अब सुनिए इस खंड की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान के परिचालन और दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया जाएगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम घर घर पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजाति चित्र प्रदर्शनी के तहत गोंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यह प्रदर्शनी 30 जून तक संचालित की जाएगी। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है और दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अपना 356वां विकेट लेकर दिग्गज झूलन गोस्वामी के 355 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम श्रोताओं की फरमाइश पत्रों के द्वारा जो हमें मिलती है उन्हें हम सुनवाते हैं, उनकी पसंद के गीत हम सुनवाते हैं। कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं पुकार फिल्म के इस गीत से, जिसकी धुन बनाई है A.R. रहमान ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की है। इस गीत को सुनना चाहा है कागज पुनर्ज से महेश हजारे, मिंताशु हजारे, आदित्य हजारे, इचलकरंजी महाराष्ट्र से वसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे इसी गीत को पसंद किया है। बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरथ रेखवार, हल्ले लल्लू ऋषि रेखवार और खंडा। और साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल तथा चेतन मनवर का। और इसी पत्र में दो नाम और हमें दिखाई दे रहे हैं और वो है रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। इन सभी की पसंद पर सुनते हैं पुकार फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजाब फिल्म से। अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। इस गीत को सुनना चाहा है सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने। राजावत कॉम्प्लेक्स शाजापुर से ये पत्र है मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और पूरा राजावत परिवार। और साथ ही साथ ये पत्र छत्रपति संभाजीनगर से मिला है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाकाड़, राही सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि गवाड़कर परी ने साथ ही साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है।

अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेवघाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर ने, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ये पत्र हमें मिला है। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का जयराज प्लॉट राजकोट से इस गीत को पसंद किया है। मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, आरती पूजा जास्मिन और प्रयागराज भट्ट ने। खलनायक फिल्म का गीत हमारे इन श्रोताओं ने पसंद किया है। आवाज़ मनहर उदास और अलका याग्निक की है। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत धुन पर अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा ये गीत अलका याग्निक और मनोहर उदास की आवाज़ों में खलनायक फिल्म से। इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी।

पिछली कड़ियों में आपने जाना कि इंद्रप्रस्थ नरेश आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से करना चाहते थे। विजय श्रवा चंद्रहासिनी के प्रति आकर्षित तो था, परंतु प्रेम भुवन मोहिनी से ही करता था। इसी बीच संपूर्ण खंड राज्यों के सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा के दरबार में विजय श्रवा ने हूण सेनापति के अपमानजनक पत्र को पढ़ा और आमात्य ऋषभदेव ने युद्ध के स्थान पर अपमानजनक संधि करने की वकालत की। भुवन मोहिनी ये न सुन सकी और उसने आमात्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। हूणों के खिलाफ युद्ध में भुवन मोहिनी विजय श्रवा के साथ छाया की तरह रही और विजय श्रवा को जीत हासिल हुई। विजय श्रवा ने भुवन मोहिनी और राजमाता को दिए गए वचन के अनुसार चंद्रहासिनी से विवाह किया, सम्राट बना। भुवन मोहिनी उन दोनों के सुखमय जीवन के लिए समाज सेवा में जुट गई। जब वो वापस लौटी तो चंद्रहासिनी ने भुवन मोहिनी का अपमान किया। इससे दुखी होकर विजय श्रवा भुवन मोहिनी को अपने पास बुलाकर अलग रहने लगा। चंद्रहासिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सम्राट विजय श्रवा ने उसको निष्कासित करने का आदेश दे दिया। भुवन मोहिनी के मनाने पर सम्राट विजय श्रवा ने अपना आदेश वापस तो ले लिया, परंतु स्वयं मुख्य महल से अलग रहने लगा। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 11वीं कड़ी में।

0: अरे मैं पूछता हूँ, इस तरह अंधेरे में कौन खड़ी है वहां?
1: अरे भुवन मोहिनी, आप कब आई देव?
2: मेरे आगमन को गोपनीय रखिएगा अरण्यक।
1: तो क्या सम्राट को भी ना बताऊं?
2: नहीं अरण्यक, सम्राट कुशल तो है ना?
1: उनकी कुशलता के कहने ही क्या। राजप्रासाद से दूर निर्जन क्षेत्र में पर्णकुटी बनवाकर रह रहे हैं। राजकीय अधिकारी और मंत्रीगण शासन संबंधी आदेशों को प्राप्त करने वहीं पर्णकुटी पहुंचते हैं। और हां, राज परिवार के लोगों का प्रवेश निषिद्ध है।
2: क्या?
1: कभी कभी सम्राट राजमहल जाकर राजमाता से मिल लेते हैं, और वो भी वाह्य कक्ष में। राजकुमार को लेकर संरक्षक अवश्य पर्णकुटी में आ सकता है।
2: और साम्राज्ञी?
1: अरे उनका तो प्रवेश एकदम से निषिद्ध है। कई बार साम्राज्ञी ने पत्रों द्वारा उनसे मिलने की प्रार्थना की, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। ऊपर से सम्राट ने पत्रवाहक को कड़े निर्देश दे दिए कि भविष्य में वो कभी भी उनके पत्र लेकर ना आए। और इतना ही नहीं देवी, द्वारपाल को निर्देश हैं कि साम्राज्ञी कभी बलपूर्वक प्रवेश करने का प्रयत्न करें तो उन्हें भी रोक दे।
2: ये कैसा दुर्दैव!
1: देव, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध होगा यदि मैंने आपके आगमन की सूचना सम्राट को अविलंब न दी तो।
2: परंतु अरण्यक,
1: ये सम्राट के हित में होगा।
3: अरण्यक,
1: हाँ,
3: राजप्रसाद की राजनीति में बड़ी शांति सी दिखती है।
1: क्यों सारथी, तुम्हें शांति से कोई कष्ट है क्या?
3: भला मुझे क्यों कष्ट होगा, मुझे तो प्रसन्नता है।
1: नियति को देखो सारथी, जिस देवी भुवन मोहिनी को साम्राज्ञी चंद्रहासिनी क्षण भर को भी सहन नहीं कर पाती थी, वही भुवन मोहिनी अब आराम से सम्राट द्वारा प्रदत्त एक महल में निवास करने लगी, सम्राट की आज्ञा से।
3: यही नहीं, सम्राट को जब इच्छा होती है भुवन मोहिनी को बुलवा लेते हैं और वो दिन दिन भर पर्णकुटी में रहती है, संगीत से सम्राट का मनोरंजन करती है, उनके साथ ही भोजन करती है। अरण्यक, क्या इसका पता साम्राज्ञी और राजमाता को नहीं होगा?
1: क्यों नहीं होगा सारथी, अवश्य होगा, पर वो कर ही क्या सकते हैं। हमें तो बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मित्र प्रसन्न है। सच पूछो तो सारथी, देवी भुवन मोहिनी का सम्राट के प्रति प्रेम बहुत ही पवित्र है और बहुत ही उदार।
3: तुम ठीक कहते हो अरण्यक,
1: मुझे तो अनुभव हो रहा है कि उनके इस पवित्र प्रेम की सुगंध पूरे वातावरण को और भी सुगंधित बना रही है।
3: परंतु अरण्यक, बहुत दिनों से देवी भुवन मोहिनी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।
1: मुझे ज्ञात है सारथी, कई वैद्य चिकित्सक भुवन मोहिनी को देख चुके हैं, परंतु वो समझ नहीं पाए कि उन्हें रोग कौन सा है। और वर्तमान में मित्र की एकमात्र चिंता का विषय भी यही है। चलता हूं सारथी, मित्र के पास पहुंचने का समय हो गया है।
3: अवश्य अरण्यक।
1: कक्ष के अंदर आ सकता हूं मित्र?
4: अरण्यक, क्या तुम भुवन मोहिनी के आवास गए थे?
1: अब आपके आदेश को ना मानूं ऐसा कभी हुआ है?
4: कैसी है वो
1: मित्र? उनकी स्थिति

0: बहुत ही बुरी है। वो लगातार औषधियों की अवहेलना कर रही है। वैद्य के बहुत बाध्य करने पर ही वो कोई औषधि लेती है। परंतु वास्तविक समस्या ये है कि
1: क्या समस्या है?
0: भुवन मोहिनी किसी से कुछ बोलती ही नहीं, ना तो किसी से बातें करती हैं, ना यही बताती हैं कि उन्होंने औषधि ली या नहीं। मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु शैया में पड़ी भुवन मोहिनी मानो मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर रही हो।
1: नहीं अरण्यक, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे जीवन में उसके ना रहने का क्या अर्थ होगा? माना कि भुवन मोहिनी के बिना मैंने दिन महीने और वर्ष बिताए हैं, परंतु इस आशा में कि एक दिन वो आएगी। परंतु यदि वो
0: मित्र, देवी भुवन मोहिनी की अस्वस्थता सर्वसाधारण की चर्चा का विषय बन चुकी है। नर्तकी के गृह में जन्म लेने के बाद भी वो अपनी सेवाओं के लिए इतनी राष्ट्रव्यापी ख्याति अर्जित कर चुकी हैं कि अधिकांश जनता उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना कर रही है। जनता की शुभकामनाएं अपना प्रभाव अवश्य दिखलाएंगी। मित्र,
1: हम भी उसे मरने नहीं देंगे। अरण्यक, मैंने आदेश दिया था कि कोई ना कोई सुयोग्य चिकित्सक सदैव उसके पास रहे। आदेश का पालन हो रहा है ना?
0: अक्षरशः पालन हो रहा है मित्र। चिकित्सक सदैव उनके पास रहते हैं। मित्र, एक रहस्यमयी नारी भी उनके आसपास दिखाई देती है।
1: रहस्यमयी नारी? कौन है वो? क्या कोई चिकित्सक है, या परिचारिका, या वो दासी है?
0: इनमें से कोई नहीं है मित्र।
1: कोई नहीं है? तो ये बात हमें आज तक बताई क्यों नहीं गई? ना ही किसी चिकित्सक ने, और ना ही किसी गुप्तचर ने, और ना ही दास दासी ने।
0: क्योंकि साम्राज्ञी का ऐसा ही आदेश था।
1: साम्राज्ञी का आदेश? क्या सरोकार था साम्राज्ञी को भुवन मोहिनी की अस्वस्थता से?
0: मित्र, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि साम्राज्ञी भुवन मोहिनी के प्रति कृतज्ञता को प्रकट कर आपको प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने इंद्रप्रस्थ से एक कुशल महिला चिकित्सक को बुलाया है।
1: तो राज्य कार्यालय से पता करो कि क्या इंद्रप्रस्थ से किसी महिला चिकित्सक को बुलाया गया है।
0: मैंने पता लगा लिया है, ऐसी किसी महिला चिकित्सक को इंद्रप्रस्थ से नहीं बुलाया गया है।
1: तो वो कौन है?
0: साम्राज्ञी के शैशव काल की सखी और संबंध में ममेरी बहन।
1: प्रमुख चिकित्सक को अविलंब उपस्थित कराओ।
0: जो आज्ञा मित्र।
2: भुवन मोहिनी की सेवा में लगे प्रमुख चिकित्सक आप हैं?
3: जी हाँ सम्राट।
2: प्रमुख चिकित्सक का क्या दायित्व होता है?
3: रोगी की चिकित्सा और पूरी देखरेख। स्वामी,
2: क्या मैं जान सकता हूं कि भुवन मोहिनी ठीक क्यों नहीं हो रही?
3: यही तो समझ में नहीं आ रहा सम्राट। एक से बढ़कर एक औषधियां हम उन्हें दे रहे हैं, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
2: आप अपने सामने उन्हें औषधियां खिलाते हैं?
3: जी नहीं।
2: क्यों?
3: इसलिए कि रोगिणी औषधियां लेने में अनिच्छुक दिखती हैं, तो इंद्रप्रस्थ से आई चिकित्सक को, जो सदैव उसके पास ही रहती है, आवश्यक निर्देश दे दिया करता हूं।
2: उसका क्या नाम है?
3: नाम तो उसका नहीं मालूम देव।
2: नाम नहीं मालूम? उसे आपने नियुक्त किया है?
3: नहीं देव।
2: तो फिर किसने नियुक्त किया है उसे? उत्तर दो मुझे।
3: साम्राज्ञी ने।
2: साम्राज्ञी ने? उसके चिकित्सक होने का प्रमाण पत्र देखा आपने?
3: नहीं देव।
2: तो फिर वो चिकित्सक नहीं है?
3: नहीं है।
2: उसकी चिकित्सा नहीं, उसे विष दिया जा रहा है।
3: विष?
2: हाँ विष। एक बात ध्यान रखो चिकित्सक, यदि भुवन मोहिनी के जीवन के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो तुम भी जीवित नहीं बचोगे। अब तुम्हें क्या करना होगा तुम निर्णय करो। जाओ यहां से।
1: अरण्यक।
0: बोलिए मित्र।
1: ध्यान से सुनो, अपरिचित महिला

0: से कहा, भुवन मोहिनी के पास रहना भय से रिक्त नहीं, तुम स्त्री वेश में भुवन मोहिनी के समीप रहो, प्रत्येक क्षण देखते रहो कि वो रहस्यमय स्त्री क्या क्या करती है। यदि वो अपनी ओर से कुछ।
1: मैं सब समझ गया मित्र, आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे आज्ञा दे।

0: मैं स्त्री वेश धारण करके देवी भुवन मोहिनी के आवास में आ गया हूँ। कहाँ है भुवन मोहिनी? ओ, वो वहां एक पलंग पर लेटी हूँ। उनके पास लगता है वही अपरिचित महिला चिकित्सक है। क्या करूं, चलता हूं वहीं, देखता हूं क्या होता है।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तुम कौन हो?
1: कमला।
2: कमला, तुम नई आई हो क्या?
1: लो और सुनो, स्वयं नई हो तुम, हमें नई कहती हो? हम तो जब इतने छोटे थे तब से हैं इस महल में। तुम अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम? मेरा नाम कुमारी विमला है।
1: तुम भी कुमारी? मैं भी कुमारा। मतलब ये कि मैं भी कुमारी। मेरा नाम कमला, तुम्हारा नाम विमला। अच्छा है ना, लगता है जैसे जुड़वा बहने हो।
2: अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो कमला, मैं कई दिनों से साम्राज्ञी से नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम यहीं रहना और कोई भी वैद्य चिकित्सक आए
1: जो दवाएं कहेंगे मैं दे दूंगी।
2: वो नहीं देनी है।
1: वो नहीं देनी है?
2: अरे तुम कहाँ से आ गई? देखो, यहाँ के सभी दासियों को अच्छी तरह ज्ञात है कि जो दवा मैं चाहूंगी वही भुवन मोहिनी को दी जाएगी, यहाँ के वैद्य चिकित्सकों की नहीं।
1: अच्छा, तो क्या तुम भी चिकित्सक हो?
2: हाँ, इसीलिए तो।
1: तो फिर ठीक है, जो तुम कहोगी वही दवा देंगे। लेकिन ये
3: ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: हाँ,
1: लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी दवा से?
2: असाध्य रोग है, फिर भी ठीक हो जाएगी, समय लगेगा। अच्छा सुनो, संध्या को आऊंगी और रात में भी रहूंगी, तब तुम चली जाना।
1: ठीक है।
2: तो समझ गई ना?
3: हाँ।
2: ये यहाँ मेरी दवाई रखी है, हर घंटे तुम्हें खिलाना है, पर ध्यान रहे किसी वैद्य के सामने मत खिलाना और उसे ये बताना भी नहीं, वरना समझती हो ना क्या होगा?
1: क्या होगा?
2: तेरी खाल उतर जाएगी।
1: उतर जाएगी? कौन उतारेगा?
2: साम्राज्ञी।
1: क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे खाल नहीं उतरवानी, मैं मात्र तुम्हारी ही औषधियाँ उनको दूंगी, वैद्य चिकित्सकों की नहीं, तुम निश्चिंत रहो।
2: मैं जाती हूँ।
3: जाओ कहीं।

0: अब मैं भुवन मोहिनी को बता दूं कि वास्तव में मैं हूं कौन। कितनी सूख गई देवी। देवी आंखें खोलिए। देवी भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी देवी।
1: कौन?
0: मैं अरण्यक हूं। मैं
1: अरण्यक?
0: हाँ अरण्यक, अरण्यक ही हूं मैं। आपको षड्यंत्र से बचाने के लिए आया हूं। सम्राट ने भेजा है, आप निश्चिंत रहिएगा। और सुनिए, इस वेश में मेरा नाम कमला है, कमला। जब आप पुकारें कमला कहकर ही पुकारें।
1: ठीक है अरण्यक,

0: सम्राट कैसे हैं?
1: बहुत चिंतित हैं देवी, परंतु अब उनकी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। मैं आ गया हूं ना, लीजिए वैद्यों की दी गई दवा खा लीजिए।
0: दो
1: वास्तविक औषधियों के सेवन से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। और हाँ, वो चुड़ैल कोई भी दवा दे तो बिल्कुल मत खाइएगा।
0: उसका नाम विमला है अरण्यक।
1: आप जानती हैं उसको?
0: हाँ, राजकुमारी की ममेरी बहन है। परंतु यहाँ क्यों बुलाया गया उसे नहीं जानती।
1: आपको मारने के लिए, इससे अधिक मत पूछिएगा, ठीक है ना?
0: हाँ ठीक है। अरण्यक, देव से कहिएगा हमारी चिंता ना करें।
1: अरे अब किस बात की चिंता, अब सब ठीक हो जाएगा। तनिक ठहरिएगा देवी, मैं बाहर बैठी मोटी मोटी दासियों को रवाना तो कराऊं।
0: अरण्यक, किस षड्यंत्र की बात कर रहे थे? कौन मारना चाहता है मुझे? मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? हे प्रभु, यदि अनजाने ही किसी का कुछ बुरा हुआ हो मेरे हाथों तो क्षमा करना प्रभु।
1: सब कहने लगी कि तुम कौन हो, कहां से आई? मैंने कहा कि साम्राज्ञी की ननिहाल से, साहब की सब भाग गई।
0: अरण्यक, इस विमला के हाथों मैंने मात्र एक बार औषधि ग्रहण की थी।
1: अच्छा?
0: और परिणाम ये हुआ कि 3 दिनों तक अचेत रही। इसीलिए मैं कोई भी औषधि ले ही नहीं रही थी अरण्यक। इन दासियों को बड़े बड़े उपहार देकर उसने सबको अपने वश में कर लिया था। अरण्यक, आप ना आते तो जीवन का अंत ही दिख रहा था मुझे। अरण्यक, एक काम करेंगे?
1: बोलिए देवी।
0: वो दवाएं जो विमला मुझे देती थी उस संदूक में रखी हैं। आप उन दवाओं को आज ही सम्राट के पास भिजवाकर उनकी जांच करवाइए।
1: ये आदेश तो पहले ही सम्राट मुझे दे चुके हैं, मैं अभी लेके जाता हूं।
2: सम्राट की जय हो।
3: आइए चिकित्सक महोदय, आपने उस रहस्यमयी महिला द्वारा दी गई औषधियों की जांच पूरी की?
2: हाँ सम्राट, और ये प्रमाणित हो चुका है कि वो औषधियां नहीं वरन बहुत ही तीक्ष्ण विष थे सम्राट।
3: वो चिकित्सिका इस समय कहाँ होगी?
1: साम्राज्ञी से भेंट करने उनके महल गई हैं।
3: हमें तुरंत महल जाना है, रथ तैयार करूंगा।

0: अरण्य के इस महल में हमारे प्रवेश को गुप्त रखा जाए।
1: जो आज्ञा मित्र।
2: प्रणाम सम्राट।
1: चुप रहो, कोई अभिवादन नहीं।
0: ये कौन थी?
1: ये संरक्षिका थी इस महल की।
0: अरे सुनो, तुम सभी दासियां यहाँ क्या कर रही हो?
2: साम्राज्ञी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं सम्राट।
0: और साम्राज्ञी कहाँ है?
2: विश्राम निकेतन में।
0: उनके साथ और कौन है?
2: उनकी ममेरी बहन कुमारी विमला।
0: ओह, वो दोनों वहाँ क्या कर रही होंगी?
2: हम लोगों को ज्ञात नहीं है देव। हाँ, सुनने में आया है कि सुयोग्य चिकित्सिका होने के कारण साम्राज्ञी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ से बुलाया है भुवन मोहिनी की चिकित्सा के लिए।
0: आवर्ण्यक।
1: जी।
2: आज साम्राज्ञी के अपशकुनों की भयानक घड़ी उपस्थित है।
3: ठहरो आवर्ण्यक, कुछ ध्वनियां सुनाई दे रही हैं।
1: हाँ हाँ।
4: मैं केवल एक बार ही अपनी दवा दे सकी,

0: तो ये लो।
1: ये क्या है?
0: जिस पात्र में वो दवाओं का सेवन करती हो उसमें इस औषधि को मात्र स्पर्श करा देना।
1: अच्छा,
0: ध्यान रहे, मात्र स्पर्श हो, इतना ही पर्याप्त होगा उसके मरने के लिए।
1: इतना शक्तिशाली विष? लाओ, इसे मैं अपने वक्षस्थल में छिपा लेती हूँ।
0: विमला बहन, जब भुवन मोहिनी हमारे पितृग्रह में रहती थी तब वो मुझसे अधिक तुमको चाहती थी और तुम पर पूर्ण विश्वास करती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें बुलाया था।
1: यहाँ भी उसी विश्वास के साथ मिली थी, किंतु पहली दवाई के बाद संभवतः या तो वो मुझ पर संदेह करने लगी या सचमुच दवा सेवन नहीं करना चाहती, या हो सकता है सचमुच ही उसमें जीने की लालसा न बची हो। हाँ, ये जो कमला नाम की नई सेविका आई है इसे भुवन मोहिनी की दास दासियां तक नहीं जानती, परंतु भुवन मोहिनी का उस पर विश्वास कुछ अधिक ही है।
0: अच्छा, लो ये मूल्यवान हार उसे पहना देना, वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगी।
1: ये तो बड़ा मूल्यवान लगता है, पहनकर दर्पण में देखूं तो। आहा, इसे मैं ही क्यों ना धारण करूं बहन।
0: छी, लोभिनी, अरे तुझे मैं ऐसे न जाने कितने हार दूंगी, पहले काम करके तो दिखा। ये हार उसी कमला को देना, संभवतः सम्राट ने उसे विशेष रूप से बुलवाया हो भुवन मोहिनी की देखरेख के लिए।
1: अच्छा ठीक है,
0: ये दूसरा ले, इसे तो अपने लिए रख।
1: ओ मेरी प्यारी बहन,
0: ये उससे अधिक हीरे माणिक वाला है।
1: अच्छा अब मैं जाती हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, न जाने पल में क्या हो जाए।
0: ठहर तनिक, मैं किसी दासी के साथ तुझे भिजवाती हूँ। कोई है यहाँ? कहाँ गई सबकी सब?
2: सबकी सब एक स्थान पर इकट्ठी कर दी गई है। साम्राज्ञी
0: सम्राट,

0: साम्राज्ञी को अधिक कष्ट न उठाना पड़ेगा। मैं स्वयं कुमारी विमला को पहुंचाने के लिए उपस्थित हूँ। नीच स्त्री, कहाँ गई वो चिकित्सिका?
1: वो उधर छुप रही है स्वामी।

0: ठहर चांडालनी, निकाल वो विष की शीशी, कहाँ छुपा रखी है? निकाल कुल्टा।
1: निकालती हूँ, ये रही सम्राट।
0: अरे नक, इससे दोनों हार भी छीन लो।
2: चल निकाल, दोनों हार कहाँ है?
1: ये है सम्राट।
0: अब इन दोनों की गत मैं बनाता हूँ, चलो दोनों।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के 50वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक में एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन के दिशा निर्देश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना जिले के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रवास के अंतिम दिन आज केंद्रीय मंत्री विभिन्न जनकल्याणकारी और लोकहित कार्यक्रमों में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज नीमच में 500 मेगावाट और शासापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंचेगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान है।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, मौसम, उम्र और जगह के हिसाब से हम सबकी अपनी प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात जो हम सबके लिए हमेशा एक जैसी रहती है वो है हमारा और हमारे परिवार का स्वस्थ रहना, और इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन बीमारी कभी भी दरवाजे पर दस्तक देकर नहीं आती है। श्रोता, अचानक जब कोई बीमारी आ जाती है तब इलाज का खर्च कई परिवारों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। ऐसे में जरूरत होती है एक ऐसे सहारे की जो स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक सुरक्षा भी दे। श्रोताओं, इसी सोच के साथ भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार आर्थिक कठिनाई के कारण इलाज से वंचित ना रहे। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के उपचार की सुविधा मिलती है। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित पात्र परिवारों को मिलता है, साथ ही 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिलता है। श्रोताओ, आपका नाम पात्रता सूची में है या नहीं, ये आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, कॉमन सर्विस सेंटर या सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान मित्र से जान सकते हैं। श्रोताओ, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, इसीलिए सही जानकारी रखें, अपनी पात्रता की जांच करें और पात्र बनकर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि स्वस्थ रहकर ही हम खुश रह सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं लव यू जिंदगी।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण और अब कार्यक्रम में वक्त है आज की भेंट वार्ता का। योग और मोटापा इस विषय पर हम आपको सुनवा रहे हैं आज की भेंट वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ हैं डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु और इनसे बातचीत कर रही हैं अर्चना सक्सेना।
1: श्रोताओं, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, फिर चाहे वो शिक्षा हो, संस्कार हो या सेहत ही क्यों ना हो। उनका हमेशा यही स्वप्न होता है कि उनके बच्चे हर हाल में स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज के दौर में बच्चों को मोटापे जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है डाइटिशियन और योगाचार्य ममता गुरु को। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो क्या कारण है या ये कहें कि ये किन किन कारणों से हो सकता है?
2: देखिए, कारण तो बहुत सारे होते हैं और सबसे पहले तो हमारे घर से ही शुरू होते हैं वो कारण, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, और इसमें सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, क्योंकि जैसे हम हैबिट डाल देते हैं घर में जिस तरीके से लाइफ स्टाइल की, तो वैसा ही वो परिवार में परिवेश बनता जाता है और कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉबैक हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करना और सारी चीजें, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक रीजन बन जाता है। फिर मेडिकल पॉइंट्स भी रहते हैं मोटापे के।
1: अगर हम कंपेयर करें हमारे बचपन के समय की, या ये कहें कि आज के बच्चों से हम पुराने समय के बच्चों की कंपैरिजन करें, तो आज हमें चाहे वो टीनेज वाले बच्चे हों या बढ़ती उम्र के बच्चे हों या फिर छोटे बच्चे हों, सभी में ओबेसिटी का रेशियो कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बच्चों में ये ओबेसिटी का क्या कारण है?
2: देखिए, रीजन बेसिक ये है कि न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमको रेगुलर रूटीन में चाहिए बॉडी के डेवलपमेंट्स के लिए, वो हमको नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है कि टेस्ट पर बच्चे ज्यादा जाते हैं, फास्ट फूड्स ले लिए,

0: एक तो कैलोरीज तो मिल गई, भूख भी दब गई, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए एक्चुअली वो चीजें नहीं मिली। तो जब क्या होता है विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होने लगती है तो भी कहीं ना कहीं मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा रीजन क्या है कि फिजिकल उतना नहीं, क्योंकि आप देखिए एक छोटा सा बच्चा भी मोबाइल लेकर के बैठ जाता है वो घंटों बैठा रहेगा, आवाज तक मुंह से नहीं करेगा। और जबकि पहले के जब कंपेयर स्टडी अगर हम करें तो पहले ऐसा नहीं होता था, हम ही लोगों ने पिट्टू और पता नहीं कौन कौन से गेम, पोशम पावर, बहुत सारी चीजें हमने खेली है। लेकिन आज के हमारे बच्चे ये नाम को भी जानते हैं तो उनको तो नाम भी नहीं पता ये। तो एक रीजन ये भी है मोटापे का जो हर एज ग्रुप में हमको देखने के लिए मिल रहा है।
1: अभी आपने हमको जो कारण बताए बच्चों में ओबेसिटी के, तो एज एन एडवाइस टू पेरेंट्स क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए जिससे इस प्रॉब्लम को कम किया जा सके?
0: आप समझाइए बच्चों को कि वो एटलीस्ट थोड़ा सा फिजिकल करें। फिजिकल का मतलब ये कि स्पोर्ट्स में कुछ इंक्लूड हो जाए, कुछ नहीं तो स्टेडियम ज्वाइन करा दीजिए, कुछ भी एक्टिविटी जिसमें उनका फिजिकल हो सके। आजकल क्या होता है पेरेंट्स ही बोलते थे अरे उसके पास तो टाइम कहाँ है, वो पढ़ेगा कि क्या करेगा। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि एक डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। छोटे से बच्चे की अगर हम आदत डाल देंगे तो वो आप देखिए खुद अपना एक टाइम टेबल मैनेज करेगा, मुझे इतने बजे उठना है। और देखिए सबके पास 24 घंटे हैं, वाहनों का मुझे लगता है अंत नहीं है, लेकिन उसी टाइम में अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो हम वाकई में कर सकते। तो हमें ये बच्चों में आदत डालना चाहिए।
1: आपने आहार पोषण खान पान की बात की, तो निश्चित ही खान पान एक बहुत अहम पार्ट होता है हमारी लाइफ स्टाइल का। तो हमें बच्चों को क्या बैलेंस डाइट या क्या संतुलित आहार देना चाहिए जिससे कि उन्हें फिट और हेल्दी रखा जा सके?
0: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमारे सराउंडिंग्स में ही है इसका आंसर, कि जितने भी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनका भरपूर इंटेक करना चाहिए। और जितना भी हो सके आप पेट भर के अच्छे से खाना खाइए, ताकि ये नहीं रहे कि थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया, थोड़ी देर में फिर और कुछ खा लिया। तो यदि हम एक बार पूरी बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी दही सलाद ये सारी चीजें अगर हम एक बार में ले लेते हैं तो हमको फिर ऐसी भूख नहीं लगेगी। जैसे लगता है ना टेम्पटेशन हो रहा है अब कुछ खा लो फिर कुछ खा लो, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है वजन को बढ़ाने का। और इससे क्या होता है जब हमारा वजन बढ़ता है तो मेंटली भी शिथिलनेस हमारी बॉडी में आती है, तो दिमाग भी उतना सोच नहीं पाता, उतना क्रिएटिव नहीं रह पाता। तो अगर क्रिएटिव रहना है तो बॉडी को भी हमें क्रिएटिव और एक्टिव रखना पड़ेगा।
1: ममता जी जैसे की बात चल रही है ओबेसिटी यानी कि मोटापे की, तो मोटापे का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या योग इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है?
0: बिल्कुल करता है। और यदि अपन सही योगिक क्रियाएं करेंगे तो आपको मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट्स मिलेंगे, और ब्रेन भी आपका इतना बढ़िया वर्क करेगा और बॉडी हमेशा एनर्जेटिक और रिफ्रेश रहेगी, और मोटापा कभी भी बढ़ेगा नहीं, और बल्कि धीरे धीरे बॉडी शेप में आएगी, फेस पे ग्रेस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, साथ ही इम्यून स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये सब चीजें वहीं पर दब जाती है जब हमारा वेट बढ़ जाता है, माइंड भी डल हो जाता है। लेकिन जब हम इस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ये जो हमारे अंदर की क्वालिटीज है वो सारी निखर के बाहर आती है, और मन भी सुंदर हो जाता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा वर्क करता है।
1: तो योग से इस समस्या को कम करने में हमें कैसे मदद होगी? कुछ ऐसे आसन हमें आप बता सकते हैं जो कि बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी को कम करने के लिए कुछ फायदेमंद हो?
0: बहुत अच्छा हमारा एक आसन का कॉम्बिनेशन है जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। 12 आसन है, सारे स्ट्रेचिंग पोजेज है जो कि मेंटल फिजिकल दोनों रिजल्ट देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल हाइट भी बहुत शॉर्ट होती जा रही है, तो ये हमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट देता है, साथ ही हमारी मेंटल स्ट्रेंथ में भी हेल्पफुल है। बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करने के संग क्या होता है बॉडी का एक फिगर बहुत सुंदर शेप आ जाता है और सुंदरता बढ़ती है। जब सुंदरता हमको अपने आप में हम बहुत सुंदर दिखेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग डेवलप होता है, तो बैक बेंचर भी नहीं बनेंगे फ्रंट में आ जाएंगे। तो वो चीजें सब बच्चों को बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। संगी कुछ थोड़े से प्राणायाम कर लें तो हमारी मेमोरी को भी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, किसी गुरु के मार्गदर्शन में सीख लें, एक ही दो सेटिंग में आपको करेक्शन हो जाता है। सूर्य नमस्कार सीख लें और उसको रेगुलर करते रहें।
1: योग और संतुलित आहार का पालन करने से बच्चे भविष्य में भी क्या ओबेसिटी या मोटापे की तकलीफ से या कहें कि उससे जुड़ी बीमारियों से बचे रह सकते हैं?
0: बिल्कुल डेफिनेटली। अब हम देखें आजकल मुझे ऐसा लगने लगा है कि क्योंकि डेली रूटीन में हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है हमारे पास में। और उसमें मैं बोलूंगी उम्र भी कुछ नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चा भी आ रहा है और बड़ा भी आ रहा है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फेस कर रहे हैं बच्चे वो भी आ रहे हैं। स्ट्रेस तो सबके ऊपर है, छोटे बच्चे पे भी है। तो कहीं ना कहीं योग हमको इन सब चीजों से बचा लेता है। मेडिकली भी कोई अगर प्रॉब्लम मान लीजिए आ गई है बॉडी में, हेरिडिटी से भी आ जाती है कई बार हमारी गलत आदतों से भी आ जाती है, तो अगर ऐसा कुछ आ भी गया तो वो भी हम योग से इजिली करेक्शन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, और नॉर्मल बेटर फिट लाइफ को हम जी सकते।
1: जैसे कि आजकल यंग गर्ल्स में हम देखते हैं पीसीओडी या पीसीओएस बहुत ज्यादा हार्मोनल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो क्या योग से इन हार्मोनल इम्बैलेंसिंग्स को ठीक किया जा सकता है? ऐसे कुछ आसन हमें बताएं जो इनके लिए

0: फायदेमंद हो, क्योंकि ये समस्या आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है ममता जी।
1: जैसे मैंने बताया कि सूर्य नमस्कार वो तो करना ही है, वो कर लीजिए, कंप्लीट स्ट्रेचिंग पोजेस हैं, और जैसे पीसीओडी पीसीओएस या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये बहुत सारी चीजें जो यंगस्टर्स में हम अभी देख रहे हैं, उसको रिलीव करने के लिए ध्यान मुद्राएं, कुछ आसन, वज्रासन, सुप्त वज्रासन, जैसे आपने बोला कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस को मेंटेन करने के लिए, तो सुप्त वज्रासन है, मत्स्य आसन है, अर्ध मत्स्य इंद्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं, थोड़े से ट्विस्टिंग पोजेस हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, पर इनका अभ्यास यदि करते हैं तो ये रिजल्ट्स जबरदस्त देते हैं। मतलब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम रिवाइज ही नहीं होगी और बल्कि क्योर हो जाएगी और नॉर्मल लाइफ जीलेंगे। लेकिन फिर यही बोलूंगी कि एक बार कि हमको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फिर आप देखिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाएंगी।
0: जैसे कि अभी हमने बात की यंग गर्ल्स की, वैसे ही आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है जो यंगस्टर्स हैं, कहीं भी बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, चलते हुए हार्ट अटैक आ गया, डांस करते हुए आ गया, और उम्र की कोई सीमा नहीं है, तो क्या कारण है और उनके लिए योग कैसे फायदेमंद हो सकता है?
1: मेरे ख्याल से प्रश्न तो सबके दिमागों में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, चाहे अपन उस व्यक्ति को जानते हो ना जानते हो, लेकिन एक झटका सबको लगता है। फिर एक बेसिक रीजन यहीं पर है, हमारी लाइफस्टाइल और हेरिडिटी। अगर आपको लगता है कि आपके हेरिडिटी में ये इस टाइप के केसेस कंटिन्यू हर पीढ़ी में हो रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए अवेयर हो जाइए, कुछ करिए। कुछ करिए का मतलब ये कि आप योगिक क्रियाएं करिए, जिससे किसी भी चीज को देखिए पोस्टपोन कर सकते, वो हमारे हाथ में है। जैसे ऊपर वाले ने जीवन तो आपको दिया है, लेकिन जो जीवन हम जी रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है। हम कैसा जी रहे हैं, हम अंतिम समय पर 10-15 लोगों की सेवा लेके जा रहे हैं, 10-15 लोगों की सेवा करते हुए जा रहे हैं, निर्धारित हमारे ऊपर है। तो वो ही बस चीज को फॉलो करें कि हमारा बैकग्राउंड में क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है। या मान लीजिए अगर आपको किसी को भी बीपी थोड़ा भी हो गया, उम्र की बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी उम्र में, तो हम उसके लिए अवेयर हो जाएं, डॉक्टर का गाइडेंस बराबर लें, जो उनकी गाइडेंस है उसको प्रॉपर करें, हम फिजिकल प्रॉपर करें, यौगिक क्रियाएं गुरु के मार्गदर्शन में करें। ये नहीं कि हम कई बार क्या होता है घर में ही बैठ करके करें, पता चला बीपी इतना शूट अप हो गया, वही आप फेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा रिस्क ना लें फिर, और अपनी मॉनिटरिंग पूरी करते रहें, अपना एनालिसिस पूरा, थक गए हैं तो रेस्ट करें, ऐसा नहीं कि फिर भी करे जा रहे हैं, तो एक्सेस भी नुकसान करता है और कुछ भी न करना भी नुकसान देता है। तो दोनों चीजों में हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है।
0: यदि बच्चों को हमें योगाभ्यास प्रारंभ कराना है ममता जी, तो उसकी सही उम्र क्या है और उसे कैसे प्रारंभ कराया जा सकता है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो बोलती 5 साल के बच्चे से ही शुरू कर दे योग, तो कहीं पर कोई हमें दिक्कत आएगी ही नहीं, हमारा बच्चा भी स्वस्थ, हम भी हैप्पी, फैमिली भी खुश, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों को क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, क्योंकि ग्रोइंग एज है, तो उनको क्या होता है कि मूवमेंट्स बहुत, मतलब इतने बढ़िया सुंदर आसन करेंगे, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आसन, पर अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर एक बार आ गई बॉडी में, तो जीवन भर आनंद देगी वो तो। लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगी, जब जागे जब सवेरा। मान लीजिए इतनी उम्र में नहीं शुरू करा, लेकिन हमें जब समझ में आया हम तभी शुरू कर लें।
0: बिल्कुल। अब एक और प्रश्न ये जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसे कॉमन आसन योग के जो हर व्यक्ति कर सकता हो और फायदेमंद भी हो।
1: देखिये सबसे मुख्य है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, एडिशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्राणायाम। तो प्राणायाम से हम शुरू करें, कोई भी उम्र हो, और कुछ पर्टिकुलर आसन जैसे वज्रासन है, मत्स्य आसन है, मार्जरी आसन है। एक्चुअली योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, बंध मुद्राएं भी हैं, तो हम इनके संग थोड़ा सा अभ्यास उसका भी अगर कर लें, तो जो हमारे इंटरनल रिएक्शंस और जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो रिएक्शन फंक्शनिंग है प्रॉपर अगर हो गया, तो फिर बहुत बेस्ट रहता है। तो कुछ आसन है थोड़े बहुत कर लें, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन कर लें, पवन मुक्तासन सीरीज नंबर 1, 2, 3, ऐसे 2-3 सीरीज हैं, उत्तान पादासन की सीरीज है, और जैसा मैंने पहले भी बोला सूर्य नमस्कार, उसमें कंप्लीट 12 आसन का जो एक स्ट्रेचिंग पोजेज है वो बहुत जबरदस्त लाभदायक है। कुछ थोड़ा सा एक पैकेज टाइप का 10-15 मिनट का भी बना लेंगे ना, तो वो हमको कंप्लीट बेनिफिट देगा।
0: ममता जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
1: मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि 24 घंटे में से सिर्फ 45 मिनट ऐसे निकाल लीजिए कि आप योगिक क्रियाएं कर लें, कुछ फिजिकल कर लें, सारी बीमारियां दूर, फिट और फाइन। जैसे आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, ऐसे वो 45 मिनट में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो मेंटल फिजिकल दोनों शानदार हो जाएगा। जीवन शैली को सुधार लें, जीवन शैली सुधर गई, खाना पीना सुधर गया, तो मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा फिटनेस तो कुछ और होगी ही नहीं।
0: इतनी अच्छी और सार्थक जानकारी देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे योग और मोटापा विषय पर भेंटवार्ता। श्रोताओं आज की भेंटवार्ता का संदेश यही है कि मोटापे से घबराने की नहीं, सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो योग को अपनी जीवन शैली में अपना शामिल करें और यूं ही आगे चलते रहें।

श्रोता, हम बात कर रहे हैं हमारे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य और विज्ञान की उन नई तकनीकों की जो हमारे जीवन को सुरक्षित, आसान और बेहतर बना रही हैं। आज की दुनिया में तकनीक सिर्फ हमारे मोबाइल या कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि अस्पतालों और हमारे घर में प्रयोग होने वाली मेडिकल उपकरणों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस ने इलाज को तेज, सटीक और सुविधाजनक बनाया है, और जब तकनीक आगे बढ़ती है तो उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए इन डिवाइसेस की साइबर सिक्योरिटी की जाती है। श्रोताओं, आज अस्पतालों में हार्ट मॉनिटर, इंसुलिन पंप, पेसमेकर, MRI मशीन और कई अन्य उपकरण डिजिटल तकनीक से संचालित होते हैं। इनमें मरीजों की महत्वपूर्ण जानकारी भी जुड़ी रहती है। श्रोताओं, ये उपकरण जब कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़े होते हैं तो उनकी सुरक्षा करने के लिए जो तकनीक उपाय किए जाते हैं उसे साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। या यूं कहें कि जैसे हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ताला लगाते हैं, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस और उनसे मरीजों की जो जानकारी है उसे सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय अपनाए जाते हैं। डिवाइस के सॉफ्टवेयर को समय समय पर अपडेट कर सुरक्षित पासवर्ड, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर सुरक्षा परीक्षण से इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी की जाती है। श्रोता, अगर आप भी घर में किसी ऐसे स्मार्ट हेल्थ डिवाइस का उपयोग करते हैं तो डिवाइस को समय समय पर अपडेट करते रहें, आधिकारिक ऐप और लिंक का ही प्रयोग करें, क्योंकि जब तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग हो तो उम्मीदें भी नई उड़ान भरती हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, बारिश का मौसम दस्तक दे रहा है। ये मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं स्वास्थ्य के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आता है। श्रोताओं, कुछ आदतों को बदलकर हम बारिश में होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। साफ पानी, ताजा भोजन, हाथों की स्वच्छता और मच्छरों से बचाव ही इस मौसम में सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: दादा कौन सा प्लांट है?
3: टैंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: आज मैं कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे रत्नेश दुबे से ये गजल।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

दूसरा आदमी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे मजरू और संगीत था राजेश रोशन का।

फिर वही दिल लाया हूँ। उस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार है मजरू और संगीत है ओपी नैयर का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद श्री मोदी अपना दौरा संपन्न कर दिल्ली के लिए रवाना हुए। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया। ये सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ है। श्री मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर परियोजनाओं 440 मेगावाट की सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, पावर परचेज एग्रीमेंट और 1,553.98 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जाएगा। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला की उपस्थिति में भोपाल में 440 मेगावाट के मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट होगा। उन्होंने बताया कि मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज प्रदेश की पहली सोलर ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इस परियोजना में 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर निविदा पर प्राप्त हुई है, जो देश में न्यूनतम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नौ सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश के आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अभी इसकी आमद नहीं हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को मंदसौर और रतलाम में तेज बारिश हुई, जबकि रतलाम में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा गुना, श्योपुर, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन और छतरपुर सहित कई जिलों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से हो चुकी है। अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दल पहुंच रहे हैं। खंडवा जिले में आमा खुजरी जंगल में वन भूमि पर दोबारा हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए आज सुबह प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू किया। वन, राजस्व और पुलिस विभाग के करीब 600 अधिकारी कर्मचारी सुबह 7 बजे से 30 जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई में जुटे हैं। पन्ना पुलिस ने तत्परता निभाते हुए पवई थाना क्षेत्र से अपहृत एक कपड़ा व्यापारी के 20 वर्षीय बेटे को रातभर चले सर्च ऑपरेशन के बाद सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जो फिलहाल फरार हैं। खरगोन जिले की बड़वाह के पास चोरल नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने से बीच धारा में फंसे इंदौर के 3 युवकों को स्थानीय पुलिस ने अस्थायी रस्सी के सहारे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनयगर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं

0: भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार

0: सरकार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश के राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास

0: और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये साथी बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूणत, लाबरिया भेरू, इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक कुणाल, केतन, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेंग बिरक, मीका बिरक, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है त्रिशूल फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की, गीतकार हैं साहिर और संगीत है खयाम का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत सुनना चाहते हैं हमारी ये साथी कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली, मीनूराज श्रीमाली, और खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया, और धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, काफिर, स्वाति माखीजा, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है। और ये प्यारा सा गीत है ये फिल्म आसपास से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार हैं आनंद बख्शे, और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये अगला गीत है फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की और गीत लिखा है मजरों ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और सुनना चाहते हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना प्राची नेमा, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मीन प्रयागराज भट्ट, अमलेश्वर छत्तीसगढ़ से डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर।
1: चलो

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत आरडी बर्मन का। और सुनना चाहते हैं बलिया उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, और ये साथी हैं बड़खेरा कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, सुनील सिंह, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, शेख जमील मंसूरी और प्रभाकर जोनले, आरती जोनले, ये दो साथी हैं हमारे नांदेड़ महाराष्ट्र से।

आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी साथियों ने। ये साथी हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य बक्सर से, और भाटापारा दत्तरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी श्रोता साथी सुनना चाहते हैं आन मिलो सजना इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी देश सेशल्स की अपनी यात्रा के तीसरे दिन आज विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायगर मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। इसके बाद वे दौरा संपन्न कर दिल्ली रवाना हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस साल के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नीमच में 500 मेगावाट और शाजापुर में 450 मेगावाट के सौर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं। इस मौके पर मुरैना की 440 मेगावाट सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना का पावर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रावधान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच और फॉरेंसिक ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में कल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत आज और कल घर घर पोलियो की दवा पिलाने के लिए टीम पहुंच रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग ने आज उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में 4 इंच और उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे।

शाम 5:33 पर और 6:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। प्रादेशिक समाचार दर्शन 6:45 पर आप सुनेंगे। और आजकल 6:40 पर

सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा आज रात 8 बजे, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर सुनिए पब्लिक स्पीक जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे, रात 10 बजे आप सुन सकते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10:30 पर सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सज्जन लाल ब्रह्म भट्ट से राग यमन कल्याण में ख्याल गायन।

आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत ग्राम सभा आप सुनेंगे 7:21 पर। तो ये थी जानकारी आज शाम की सभा के कार्यक्रमों की।

मीडिया वे 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:03 हुए हैं। हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम की सभा में 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: वैष्णवी, अगर कोई हमसे पूछे कि भारत की पहचान क्या है, तो कोई बोलेगा त्योहार, कोई बोलेगा खाना, कोई बोलेगा क्रिकेट। लेकिन तुम इस सवाल का क्या जवाब देना चाहोगी?
1: आजकल तो मौसम।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग कई बार कैसे हो से कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आजकल कॉन्वर्जेशन स्टार्टर बन गया है क्या मौसम हो गया है ना?
1: बिल्कुल, और ये जून जुलाई आते आते तो आधे लोग बादलों को ऐसे देखने लगते हैं जैसे उनका कोई अपना, कोई मिलने वाला, कोई मेहमान आने वाला है।
0: हाँ, और इसी मौसम की कहानी से जुड़ा है आज का दिन। दोस्तों, आज के दिन को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के लिए।
1: तो अब ये ट्रॉपिक सुनते ही श्रोताओं आपके दिमाग में वही स्कूल वाले शब्द घूमने लगे होंगे, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना?
0: और इस वजह से शायद हम इसे थोड़ा बोरिंग समझ लेते हैं, लेकिन ट्रॉपिक्स यानी धरती का वो हिस्सा जहाँ हमेशा हलचल रहती है। कभी बारिश दौड़कर आती है, कभी हरियाली अचानक छा जाती है, तो कभी गर्मी अपना पूरा परिचय दे देती है। और हमारा देश भारत भी इसी कहानी का हिस्सा है।
1: और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में मौसम सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि बातचीत का एक पूरा विषय है।
0: बिल्कुल, और इसी वजह से इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये पूछना है कि जिस इलाके ने हमें इतने मौसम, इतनी विविधताएं, इतनी खेती दी, क्या हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं?
1: क्योंकि आज ट्रॉपिक्स बहुत कुछ महसूस कर रहा है, कहीं बारिश का अंदाज बदल रहा है, कहीं गर्मी लंबी हो रही है, कहीं प्रकृति अपना संतुलन ढूंढ रही है।
0: हम तो बस कह देते हैं कि अब पहले जैसी बारिश कहाँ रही, या फिर मौसम का आजकल कुछ भरोसा ही नहीं रह गया है। लेकिन दोस्तों, शायद यही तो वो बातें हैं जिनकी तरफ ये दिन हमारा ध्यान लेकर जाना चाहता है।
1: और शायद इस दिन का काम इतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। मतलब अगली बार जब कॉपी में आधा पन्ना खाली छोड़ने लगे तो याद आ जाए कि अभी जगह है। बाजार जाते समय हर बार नया प्लास्टिक बैग लेने से पहले सोच सकते हैं ना कि घर में भी एक थैला है जिसको हम लेके जा सकते हैं और जिसमें सामान ला सकते हैं, जिससे कि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं इन छोटी छोटी आदतों से।
0: बिल्कुल, जैसे खाना लेते समय इतना ही ले कि बाद में फेंकना ना पड़े। और घर में जो रोज हम सुनते हैं कि लाइट बंद कर दो, पानी खुला मत छोड़ो, ये सब छोटी आदतें खुशी से हम अपने जीवन में ढाल सकते हैं। क्योंकि बड़े बदलाव कई बार न्यूज़ में नहीं आते, बल्कि आदतों में आते हैं।
1: तो दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स पर कोई बड़ी प्रतिज्ञा तो नहीं ले सकते हम, बस एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी आदतों को बदल सकते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, और जैसे कचरा अलग अलग करके फेंक सकते हैं, और आजकल तो हम देखते हैं कि नदियों में हम बहुत सारा अपना घर का वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो उससे भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम जिनकी पूजा करते हैं उन्हें साफ रखना तो बहुत ज़रूरी है ना।
0: बिल्कुल, और इससे मौसम भी यूं ही अपनी कहानियां सुनाता रहेगा, बारिश यूं ही दस्तक देती रहेगी, और ये हरियाली यूं ही हमारे साथ बनी रहेगी।

0: वैष्णवी, तुमसे एक सवाल पूछूं?
1: पूछो।
0: अगर तुम कल सुबह उठो और एक डिवाइस से आवाज आए, गुड मॉर्निंग वैष्णवी, आज आपका मूड थोड़ा स्लो लग रहा है, इसीलिए मैंने आपके लिए आपकी पसंद की प्लेलिस्ट चला दी है। आज बाहर थोड़ी ठंड है, इसलिए मैंने गीजर 10 मिनट पहले ऑन कर दिया है। आप सुबह जल्दी में नाश्ता छोड़ देती हैं, इसलिए आपका पसंदीदा नाश्ता आपके ऑफिस के रास्ते में आपको मिल जाएगा। तो
1: तो मैं

0: पहले तो थोड़ा डर जाऊंगी, फिर सोचूंगी कि ये कोई ड्रीम देख रही हूं मैं बढ़िया सा, या फिर अगर ऐसा भी नहीं है तो मैं सोचूंगी कि वाह भगवान ने मेरी सुन ली और किसी फरिश्ते को मेरी मदद के लिए भेज दिया है।
1: हाँ, और मजेदार बात पता है क्या है कि ये फरिश्ता बादलों से नहीं आया है, ये मिलेगा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की दुनिया में।
0: ये तो सही है तनिष्का। वैसे आजकल की दुनिया को देखते हुए ये लग रहा है कि ये दिन अब दूर नहीं है, क्योंकि काफी हद तक एआई हमारी जिंदगी का एक हिस्सा तो बन ही चुका है।
1: हाँ, जब आपका मोबाइल फोटो लेते समय खुद चेहरा पहचान कर फोकस करता है, जब मैप ट्रैफिक देखकर रास्ता बदल लेता है, जब म्यूजिक ऐप बोलता है ये गाना आपको जरूर पसंद आएगा, ये सब एआई ही तो है।
0: और एआई सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, हमारी पर्सनल चीज़ों में ही नहीं, बल्कि आज एआई बहुत चीज़ों में मदद कर रहा है। जैसे खेती किसानी में मदद कर रहा है, सैटेलाइट और सेंसर से खेती की मिट्टी, पानी और बीमारी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अस्पतालों में डॉक्टरों को बीमारी जल्दी पहचानने में मदद मिल रही है। स्कूल में ऐसे सिस्टम आ रहे हैं जो हर बच्चे को सीखने की स्पीड के हिसाब से पढ़ाते हैं, मतलब जिस बच्चे की जैसी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसके लिए कोर्स तैयार किया जाता है।
1: और आज कुछ एआई सिस्टम इतनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को बहुत कम समय में पढ़कर डॉक्टर्स को संकेत दे सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब डॉक्टर की जगह ही नहीं, डॉक्टर का सुपर असिस्टेंट भी बन सकते हैं। और ऐसे ही कई सारे प्रोफेशंस में एआई अपनी बहुत अच्छी रोल्स निभा रहा है।
0: बिल्कुल, जैसे साइंटिस्ट को एआई की मदद से नई दवाइयाँ खोजने की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि नई वैक्सीन्स और नए प्रिकॉशंस जल्दी हम लेकर आ सकें।
1: और स्पेस भी पीछे नहीं है, एआई रोबोट्स अंतरिक्ष मिशनों में फैसले लेने, तस्वीरें समझने और कठिन जगहों पर काम करने में भी मदद कर रहा है। मतलब इंसान कह रहा है कि जहां मैं नहीं पहुंच सकता वहां मेरा दिमाग यानी कि एआई तो जरूर पहुंच सकता है।
0: लेकिन अब ना सबके दिमाग में एक सवाल आ चुका है तनिष्का, कि क्या एआई इंसानों की नौकरी ले सकता है, मतलब उनको रिप्लेस कर सकता है?
1: अच्छा सवाल है दोस्तों। इतिहास बताता है कि जब नई तकनीक आती है कुछ काम बदलते हैं, लेकिन नए काम भी आते हैं। पहले लोगों ने सोचा था कि कंप्यूटर आएंगे तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर बने ऐप डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट क्रिएटर। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा।
0: तो शायद अब सवाल ये नहीं होगा कि एआई इंसान को रिप्लेस कर सकता है, बल्कि सवाल अब ये हो सकता है कि एआई इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, यानी कि एआई की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, बाकी लोगों के मुकाबले में आगे बढ़ सकता है।
1: और एक चीज़ जो आज भी एआई नहीं कर सकता वो है आपकी दोस्त की शादी में जाकर खाना खाकर बोलना कि बस थोड़ा सा और डाल दो भैया।
0: क्योंकि इंसानों की असली ताकत क्या है तनिष्का? भावनाएं, जिज्ञासा, रिश्ते, कल्पना और वो छोटी छोटी बातें जो जीवन को जीवन बनाती हैं, उसमें फीलिंग्स डालती हैं, एक फिलॉसफी ऐड करती हैं।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों एआई तेज हो सकता है लेकिन दिशा इंसान ही तय करेगा। एआई सोचने में मदद कर सकता है लेकिन सपने देखना आज भी हमारा ही काम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
0: बिल्कुल, एआई भी तो मैन मेड ही है ना तनिष्का, और टेक्नोलॉजी से हमें डरना नहीं चाहिए ये सोच के कि वो इंसान को रिप्लेस कर देगी, बल्कि मुझे लगता है कि एआई प्लस ह्यूमन इज इक्वल टू अ बेटर सोसाइटी।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों आज का सवाल, अगर आपके पास अपना एक एआई असिस्टेंट होगा तो आप उससे अपना कौन सा काम कराना पसंद करेंगे?
0: मैं बताऊं, वो जो स्टार्टिंग में तुमने बोला था, मैं तो वही कराना चाहती हूँ।
1: तो दोस्तों सोचिए कि आप अपने एआई असिस्टेंट से कौन सा काम कराएंगे और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, ये बताइए कि आपका मंडे का पूरा ये दिन कैसा बीता? आपको कितनी थकान हुई? अब कितनी भी थकान क्यों ना हुई हो, अब आपकी ये सारी थकान मिटने वाली है, क्योंकि इस मंडे इवनिंग को सुपर रिलैक्सिंग बनाने के लिए वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा सेगमेंट का, जिसका नाम है
1: कुछ बातें कुछ गीत, जो हर सोमवार हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज इस शाम के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जिंदगी के उस खूबसूरत, थोड़े कश्मकश भरे और थोड़े क्रेजी पड़ाव की, जिसमें हम दोनों तो हम उससे गुजर चुके हैं और हमारे सुनने वाले भी या तो उससे गुजर चुके हैं या अभी अभी वहीं पे खड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल। और मंडे की इस शाम को हमारे इस सेगमेंट का नाम है द प्रेशर कुकर फेज।
1: वाह तनिष्का, ऐसा लग रहा है सीधे किचन से लाइव कर रही हो तुम।
0: अरे नहीं बाबा, किचन वाले कुकर में तो सिर्फ रात का डिनर ही पकता है। मैं बात कर रही हूँ उस मेंटल प्रेशर कुकर की, जो हमारे टीनेज में यानी कि 16 से 19 साल की उम्र में हमारे दिमाग पर चढ़ा दिया जाता है। याद करो वैष्णवी, जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो मंडे की जो शाम होती थी ना, वो कितनी भारी लगती थी।
1: मत याद दिलाओ यार तनिष्का, दिन भर स्कूल या कोचिंग में घिसने के बाद जब शाम को घर लौटो तो शाम को या तो बॉर्नविटा मिल्क या कोई चाय पीता हो तो चाय, उसके साथ मम्मी का वही पुराना सवाल होता तैयार रहता था कि हाँ बेटा आज टेस्ट कैसा हुआ, नंबर कितने आए, वो देखो उसके नंबर इतने बढ़िया है, वो लाइब्रेरी में बैठ के रोज़ पढ़ाई करता है। मतलब ऐसा लगता था दिन भर की थकान के बाद जो बॉर्नविटा मिल्क मिला है उसका मज़ा भी ख़राब हो गया।
0: एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला गया था वो था, बेटा बस ये 2 साल पढ़ लो, बोर्ड्स निकाल लो और फिर तो तुम्हारी लाइफ सेट है। मैं तो कहूंगी झूठ नहीं, फ्रॉड था, फ्रॉड।
1: और इस लाइफ सेट होने का पासवर्ड आई एम श्योर आज तक किसी को नहीं मिला होगा। कॉलेज गए तो बोला कि प्लेसमेंट ले लो, लाइफ सेट है। नौकरी लगी तो बोला शादी कर लो, लाइफ सेट है। मतलब ये प्रेशर कुकर की सीटी बजती रहती है।
0: सही बात है। लेकिन इस उम्र का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है वैष्णवी, कि एक तरफ आपके वो सतरंगी प्यारे से सपने होते हैं, किसी को गिटार बजाना है, किसी को राइटर बनना है, और दूसरी तरफ होता है किताबों और उम्मीदों का भारी भरकम बोझ।
1: बिल्कुल। तो चलिए इस मंडे इवनिंग, इस प्रेशर कुकर की आज को जरा हम धीमा करते हैं और सुनते हैं इस फिल्म जो जीता वही सिकंदर से ये एवरग्रीन गाना आपके लिए।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: वैसे वैष्णवी, अभी जब ये गाना बज रहा था ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, मैं सच में सोच रही थी कि नाम करना अपनी जगह सही है, लेकिन इस चक्कर में जो रोज सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग के मॉड्यूल्स लेकर भागना पड़ता था ना, वो दर्द सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है।
1: बात तो बिल्कुल सही है तनिष्का। अगर मंडे की इस शांत शाम को थोड़ा गहराई से सोचे ना, तो हमारा ये पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें करियर चुनना तो अच्छे से सिखा देता है, एकदम करेक्ट सिखा देता है कई बार, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है, असली जिंदगी के धक्के कैसे खाने, और जैसा कि हमने अपना सेगमेंट का नाम दिया है द प्रेशर कुकर, तो उस प्रेशर कुकर के प्रेशर से इन रियल लाइफ कैसे डील करना है, ये सिखाना थोड़ा भूल जाता है वो।
0: बिल्कुल सही बात की है तुमने वैष्णवी, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है कि इस रेस में तुम्हें फर्स्ट आना है, नंबर वन बनना है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सिखाता कि अगर कभी तुम पीछे छूट जाओ, कभी मन मुताबिक रिजल्ट ना मिले, तो खुद को संभालना कैसे होता है।
1: बिल्कुल सही है, हम अक्सर भूल जाते हैं कि टीनेज एक उम्र है जिसमें सीखना, खेलना, गलतियां करना और उन गलतियों से सीखकर वापस खड़े होने का की ये उम्र है। पर आज का यूथ इतना डरा हुआ है, इतना प्रेशर है कि एक सेमेस्टर का रिजल्ट अगर खराब हुआ तो उन्हें लगता है कि ये दुनिया ही खत्म है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मार्क्स पूरे

0: नहीं आए तो उन्हें लगता है ये दुनिया खत्म है, और ऐसे ही प्रेशर में वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें और उनके आसपास के लोगों को हमेशा रहता है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज इस सोमवार की शाम कुछ बातें कुछ गीत के जरिए हम आज के उस हर टीनेजर से, उस हर स्टूडेंट से जो इस वक्त ये एग्जाम या करियर के तनाव में डूबा हुआ है, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि दोस्त, अपनी वैल्यू, अपनी काबिलियत किसी 3 घंटे की एग्जाम, पेपर या मार्कशीट की मोहताज मत समझो। यू आर मच बिगर देन योर रिपोर्ट कार्ड एंड वॉट यू थिंक।
0: बिल्कुल सही कहा तनिष्का तुमने। लाइफ में थोड़ी धूप, थोड़ा खुला आसमान, थोड़ी बारिश और थोड़ी थोड़ी अपनी मर्जी की हवा ना आती रहनी चाहिए, ये जरूरी होती है।
1: तो बस दोस्तों, दिन भर की सारी थकान और मंडे के प्रेशर को खिड़की से बाहर फेंकिए, मुस्कुराइए और सुनिए

0: तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये सेगमेंट जो हमने आपके लिए स्पेशल बनाया था, द प्रेशर कुकर, आपको पसंद आया होगा। अब वक्त है उन सवालों के जवाब देने का जो हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे थे।
1: तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये था कि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से तीन देश संयुक्त रूप से कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका।
0: आपका दूसरा प्रश्न था कि भारत के किस राज्य ने मार्च अप्रैल 2026 में पीएम सूर्य घर यानी कि मुफ्त बिजली योजना के तहत रिकॉर्ड तोड़ मासिक रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन करके देश में पहला स्थान हासिल किया है। तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश।
1: तो दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा कि आपने सही उत्तर सोचे थे या नहीं। और इसी के साथ हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।
0: और आप कहीं

0: दोस्तों, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप ये हमें हमारे ईमेल आईडी के माध्यम से बता सकते हैं।
1: हमारा ईमेल आईडी है airindore.in@gmail.com।
0: तो साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अनुमति दीजिए कनिष्का
1: और वैष्णवी को। आप सभी को हमारा नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाज़ में अलबेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, चितलकर का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म का गीत, मुकेश की आवाज़ है। गीत लिखा है योगेश ने, सलील चौधरी का संगीत।

फिल्म संगीत में अब आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और महेंद्र कपूर की आवाज में बीडी मिश्रा का लिखा गीत। संगीत दिया है एसएन त्रिपाठी ने और फिल्म का नाम बीन का जादू।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
3: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का। लिखते हैं,
2: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
2: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान

0: पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा।
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी। आय इतनी सी चुप्पा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूं पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बखत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं
0: है?
1: कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुब्बा चुब्बा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश, अच्छा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो...
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: देखो ये पेड़
0: देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
0: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
1: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
0: अरे दिखा दो
1: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
1: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
0: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
0: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
0: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों?
1: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
0: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा उसे छोड़ दो। देखो अम्मा इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
1: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा।
2: हाँ बिल्कुल
0: सचमुच, इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
0: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
1: अम्मा, जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
0: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। ले लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे।
0: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
0: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद है, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
0: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
0: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना। तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
2: समझ गई ना?
1: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
2: बता?
0: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
2: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
2: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
2: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे,

0: हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं, क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
1: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
2: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का, चलो
0: सच्ची।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
7: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
10: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
9: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के गाए गीत। पहली रचना अनवर सागर की लिखी है, संगीत बाप्पी लहरी का।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। अब आपको सुनवा रहे हैं दीपक का लिखा गीत, आवाज है कुमार सानू की।

कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, और इस बार का प्रादेशिक समाचार दर्शन केंद्रित है नशा मुक्त भारत अभियान पर, जो कि पूरे प्रदेश में 17 से 26 जून तक चलाया गया। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन, जिसकी पहली रिपोर्ट है रतलाम जिले से, जहां पर नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन दो तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पहली कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर कड़े प्रहार के रूप में है, तो दूसरी कार्रवाई जन जागरूकता की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता अदिति मिश्रा।
1: नशे से दूरी है जरूरी। रतलाम जिले में नशा मुक्ति अभियान व्यापक

0: स्तर पर संचालित हो रहा है। अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन द्वारा दो तरफा कार्रवाई की जा रही है। रतलाम एसपी अमित कुमार के निर्देशन में रतलाम जिले में लगातार नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं। हाल ही में रतलाम पुलिस ने एमडी स्मैक और अन्य ड्रग्स को पकड़कर भी बड़ी खेप हासिल की है। इसके साथ ही नशे का कारोबार करने वालों के अन्य ठिकानों पर भी लगातार पुलिस कार्रवाई हो रही है। दूसरी ओर कलेक्टर मीशा सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान भी चल रहा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ ही अन्य विभागों द्वारा स्कूल और कॉलेजों में जाकर भी युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तीसरे स्तर पर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में नशा मुक्ति केंद्र का संचालन भी प्रारंभ किया जा चुका है। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में अलग अलग थेरेपी, जिसमें कि मेडिकल के साथ ही योगा और काउंसलिंग के जरिए युवाओं को नशे की लत से बाहर आने के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है। रतलाम में चल रहे नशा मुक्ति अभियान में हर स्तर पर युवाओं को नशे से दूर रखने, इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताने और किसी भी कारण गलत लत में पड़ चुके युवाओं को वापस सकुशल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी पर्याप्त मदद दी जा रही है। समाचार दर्शन के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में हम रुख कर रहे हैं सीहोर जिले का, जहां जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान को उत्साहपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीहोर संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान।
2: सीहोर जिले में जिला सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा विरोधी सप्ताह मनाया गया। इस दौरान जिले भर में 17 जून से 26 जून तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली एवं जन जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही। जिले के विभिन्न स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें चित्रकला, वाद विवाद, निबंध, प्रश्न पंच और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलवाई गई और नशे के विरुद्ध अलग जगाने के लिए कार्यक्रम आयोजित हुए। अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से जिला स्तरीय जन जागरूकता रैली प्रारंभ हुई और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में इस रैली का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को नशे की लत से दूर कर स्वस्थ, सुरक्षित एवं सशक्त समाज का निर्माण करना है। नशे के विरुद्ध जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस अवसर पर अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर सभी को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया और सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित सप्ताह में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों, जिनमें मिनी मैराथन, नुक्कड़ नाटक, रंगोली, स्लोगन लेखन, निबंध लेखन, चित्रकला, हस्ताक्षर अभियान, सेल्फी पॉइंट सहित अनेक जन जागरूकता गतिविधियों के विजेताओं को इस समारोह में सम्मानित किया गया। रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल के बैंड द्वारा आकर्षक एवं प्रेरणादायी प्रस्तुति दी गई। इस बारे में जिला सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक महेश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि
3: सीहोर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 17 जून से 26 जून तक पूरे सप्ताह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नशा मुक्ति के विरुद्ध प्रभावी जन जागृति के लिए विभिन्न आयोजन उत्साह के वातावरण में किए गए हैं। इस बार जिले में इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान पर आधारित रही है। जिले के विभिन्न स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं में नशा मुक्ति के विरुद्ध जन जागरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें चित्रकला, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध, प्रश्न मंच, नुक्कड़ नाटक और इस प्रकार के अनेक प्रतियोगिताएं शामिल रही हैं। ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक शपथ दिलाई गई और नशा के विरुद्ध अलग जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इस अवसर पर आवासीय स्कूल से नशे के विरुद्ध जन जागरण के लिए एक विशाल रैली निकाली गई है और इस रैली का समापन पीजी कॉलेज में किया गया है और जो एक सप्ताह में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उसका पुरस्कार वितरण भी संपन्न हुआ है।
2: सीहोर जिले से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं प्रदीप सिंह चौहान।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अगली रिपोर्ट में रायसेन में चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर जानकारी दे रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता विनीत माहेश्वरी।
4: अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर रायसेन जिले में नशा मुक्त भारत अभियान का

0: आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से अजंता ललित कला समाज कल्याण समिति द्वारा 17 जून 2026 से 26 जून 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नशा मुक्ति प्रचार रथ ने गांवों का भ्रमण किया, जहां कलाकारों ने स्थानीय लोकगीतों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सलामतपुर के राजीव नगर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में भारत सरकार के ASO सेलेन पायल ने मादक पदार्थों के वैश्विक खतरों के प्रति संचेत किया। वहीं सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए समाज के हर वर्ग के आगे आने की अपील की। संस्था की अध्यक्ष इंदिरा शर्मा ने कफ सिरप की बिना पर्ची बिक्री पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय की सराहना की। इस दौरान राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर वेद प्रकाश शर्मा ने उत्कर्ष नशा मुक्ति केंद्र में मिलने वाले निःशुल्क उपचार की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपस्थित ग्रामीणों को नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ भी दिलवाई। सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक मनोज बाथम ने बताया कि
1: नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रायसेन जिले में सभी महाविद्यालयों में तथा विद्यालयों में युवाओं को जन जागृति कार्यक्रम के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। साथ ही निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली इत्यादि नशा से आधारित श्रृंखला में प्रथम आने वाले सभी युवाओं को दिनांक 1 जुलाई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
2: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में कई जगह पर नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
3: सतना जिले में जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में जगह जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने अपने सशक्त अभिनय एवं संवादों के माध्यम से समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि उनके परिवार और पूरे समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे के कारण पारिवारिक कलह, सामाजिक विघटन और सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें असमय मृत्यु तक हो सकती है। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थित नागरिकों ने नशा मुक्ति समाज के निर्माण में अपना सहयोग देने का भी संकल्प लिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम रुख करते हैं हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले का, जहाँ पर युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से नशा मुक्त सप्ताह चलाया गया। इस बारे में और जानकारी हमारे पन्ना संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा से।
4: हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध पन्ना जिले में युवाओं और आम नागरिकों को नशे की लत से बचाने तथा एक स्वस्थ और समृद्ध समाज के निर्माण के उद्देश्य से 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह अभियान चलाया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मादक पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने और प्रभावी व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना इस अभियान का मुख्य एजेंडा रहा। इसमें प्रशासन, शासन और सामाजिक संस्थाओं के साझा प्रयासों से नशा मुक्त पन्ना, समृद्ध पन्ना का यह संकल्प अब पूरी दृढ़ता के साथ धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। पन्ना कलेक्टर उषा परमार एवं पुलिस कप्तान निवेदिता नायडू के कुशल नेतृत्व में इस अभियान को गति मिली है। जिले की लक्षित ग्राम पंचायतों में जागरूकता बैठकों का दौर जारी है। स्कूल, कॉलेज और ग्रामीण चौपालों के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पन्ना जिले की आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर में छात्रों और आम नागरिकों को नशा मुक्त की सामूहिक शपथ दिलाई गई। बुंदेलखंड के पन्ना जिले में अवैध शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री पर कड़ा प्रहार करने के लिए प्रशासन द्वारा एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर नागरिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं। उधर जिले की सामाजिक संस्था ब्रह्म कुमारी द्वारा 17 से 26 जून तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का समापन पवई के प्रसिद्ध जगन्नाथ स्वामी मंदिर प्रांगण में हुआ। इस वर्ष समापन कार्यक्रम की थीम नशा मुक्त भारत अभियान, विकसित भारत की पहचान रखी गई थी। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी बहन बी के सीता ने उपस्थित

0: होने के लिए शपथ ली गई।
1: पन्ना जिले में यह नशा मुक्त अभियान अब केवल एक सरकारी औपचारिक कार्यक्रम न रहकर एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सक्रियता एवं ऊर्जावान भागीदारी से जिले में सकारात्मक बदलाव की एक नई बयार बहने लगी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन की अंतिम रिपोर्ट है निवाड़ी जिले से, जहां कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में नशा मुक्ति अभियान बीते 17 से 26 जून तक चलाया गया। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे निवाड़ी संवाददाता विवेक दांगी।
3: निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े ने सामाजिक न्याय विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य अधिकारियों को ये निर्देशित किया था कि आपको प्रत्येक कॉलेज स्कूल के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जागरूक करना है, ताकि बच्चे नशे की बुरी लत से दूर हों। साथ ही निवाड़ी जिला जेल में भी सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से वहां नशा मुक्ति अभियान को लेकर के बंदियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे से शारीरिक क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में भी बताया गया। जिले के प्रत्येक स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं साथ ही गांव की जो टोलियां हों उनमें डॉक्टरों की टीम पहुंचे और उससे होने वाले शारीरिक नुकसान की जानकारी दे। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं बना करके निवाड़ी जिले में नशा मुक्ति अभियान निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े के निर्देशन में किया गया। समाचार दर्शन के लिए निवाड़ी से विवेक दांगी।
2: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन, जो इस बार केंद्रित था 17 से 26 जून तक चलाए गए नशा मुक्त भारत अभियान पर। प्रादेशिक समाचार दर्शन में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अन्य जिलों की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्षण, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों को भी मान्यता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशेल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशेल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन

0: के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन और रक्षा बलों में उनके समावेशन को सुगम बनाएगा। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी भी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि यह वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी पर आधारित औद्योगिक उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4.9% की वृद्धि हुई है थी। किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उप विजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सुलिंग ली यांग से हार का सामना करना पड़ा। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में आपको सुनवा रहे हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। शाम 7:20 पर ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानेंगे। कद्दू वर्गीय सब्जियों के रोग और कीट प्रबंधन, इसके बारे में आप जानेंगे डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी से। घरेलू टिप्स में बड़ी इलायची के फायदे बताए जाएंगे, साथ ही होगा लोक संगीत। रात्रि 8:00 सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:15 से होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत में सदाबहार फिल्मी गीत सुनिएगा रात 9:15 से। रात्रि 9:30 पब्लिक स्पीक, ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:00 से सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित शेष कार्यक्रमों की। अब आपको विवरण दे रहे हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुनिएगा सुबह 6:30। खेती की बातें होंगी कल सुबह 6:35 पर, इसमें होगी

पर्यावरण पर बातचीत। श्री रामचरितमानस गान पाठ होगा कल सुबह 6:40 पर। कल सुबह 7:20 पर सुनहरे पल इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। कार्यक्रम विविधा सुनिएगा कल सुबह 8:30। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:00। इसमें कलाकार होंगे मनसाराम कुंभी पटेल और साथी। आशा भोसले की गाई कुछ रचनाएं आप सुनेंगे सुगम संगीत में कल सुबह 9:15 से। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह 9:30 आपको सुनवाएंगे कला राम नाथ का वायलिन पर बजाया राग नट नारायण। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कल सुबह 10:00। कल सुबह 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। 11:00 होगा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 और दिन में 2:00 फिल्म संगीत सुनिएगा। संग्रहालय से कार्यक्रम होगा कल दिन में 12:30। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम सुनिएगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस पर चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानेंगे। रूप लावण्य क्रम में मानसून में भी कैसे बरकरार रखें चेहरे की चमक, ये जानेंगे। फूड जोन में आप जानेंगे इंस्टेंट अचार मसाला बनाने की विधि और बचत की बात करेंगे काम की बातें इस क्रम में। दिन में 1:30 पर लोक संगीत, दिन में 1:45 पर सुगम संगीत, दिन में 2:30 चित्रपट संगीत। शाम की सभा में युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा 5:00। इसमें हमारा शहर क्रम में पन्ना शहर के बारे में जानेंगे। 6:00 NCERT का कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे और कल 6:30 से आप सुनेंगे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: जादू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मध्य प्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। नीमच और शाजापुर सोलर पार्क का किया उद्घाटन। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। यूसीसी समेत विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की दी जानकारी। और प्रदेश के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में अभी मॉनसून का इंतजार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह बंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया।

0: किया गया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्यों भी मान्यता देते हैं। केंद्रीय नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे को यहां से बिजली मिल रही है। श्री जोशी नीमच में आयोजित ऊर्जा पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में सिंगल क्लिक के माध्यम से 2080 करोड़ रुपए लागत के 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर सोलर पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 1553 करोड़ 98 लाख रुपए लागत के उद्योगों और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ने यहां कहा कि मध्यप्रदेश हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है।
3: पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं।
2: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोलर पावर यूनिट स्थापित करने वाली कंपनियों के पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने यहां विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे सस्ती बिजली अब नीमच में मिलेगी।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही, इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। अगले 50 वर्ष में ये संबंध नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि से परिभाषित होंगे। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमाइनी सरकार और सेशल्स के लोगों को धन्यवाद दिया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल से लोकभवन पहुंचकर सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल को मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने को लेकर 9 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त होने, यूसीसी को लेकर मिल रहे व्यापक जन समर्थन और इस संदर्भ में राज्य सरकार की आगामी कार्ययोजना से भी अवगत कराया। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के सफल क्रियान्वयन, गुरू पूर्णिमा पखवाड़ा में प्रस्तावित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, 4 कृषि उपजों को हाल ही में मिले जीआई टैग से संबंधित किसानों को मिलने वाले लाभ, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े विभिन्न प्रयासों और सरकार को मिली उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। छतरपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आज जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार ने की। बैठक में प्रमुख रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, वेयर हाउसिंग और नागरिक आपूर्ति निगम से संबंधित विषयों की समीक्षा की गयी। पन्ना जिले में एक बार फिर एक आदिवासी किसान परिवार की किस्मत बदली है। यहां अहिर गवां क्षेत्र के एक निजी भूमि पर संचालित खदान से इस परिवार को 11.19 कैरेट का बेशकीमती जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस परिवार को करीब 2 साल पहले भी 19.22 कैरेट का विशाल हीरा मिला था, जो नीलामी में 93 लाख रुपए में बिका था। हीरा कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि मजदूर राकेश गौड़ ने इसी साल अप्रैल में पट्टा बनवाकर अपने 3 भाइयों सिदारुष के साथ मिलकर खदान लगाई थी। करीब 2 महीने पहले की कड़ी मेहनत के बाद सोमवार को उन्हें यह चमचमाता हीरा हाथ लगा, जिसे उन्होंने तुरंत सरकारी हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थमी हुई है। अभी तक केवल 15 जिलों तक मॉनसून पहुंच पाया है, जबकि 40 जिलों में अब भी इसकी आमद नहीं हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और कई अन्य जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, पांडुना, मंडला और बालाघाट में अगले 24 घंटों के दौरान 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सतना से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शाम में तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। खंडवा जिले में वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि गुड़ी रेंज के ग्राम आमा खुजरी में 105 हेक्टेयर वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई का जायजा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम गुर्जर बर्डिया में लगभग 333 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गुर्जर बर्डिया महादेव मंदिर मार्ग, आरोग्यम उप स्वास्थ्य केंद्र और राधा कृष्ण गौशाला का लोकार्पण किया। जनजातीय कार्य विभाग ने छात्रावास और आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खंडवा जिले की 7 शासकीय आईटीआई संस्थाओं में 1480 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। पर्यावरण और वनों के संरक्षण तथा हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु धार वन मंडल के अंतर्गत वन मंडल स्तरीय रूट शूट वृक्षारोपण तकनीक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने आज आयोजित टीएल बैठक में वर्षा काल में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। मैहर में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन सेफ क्लिक अभियान के तहत जागरूकता रथ रवाना किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

0: ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों का बिंदु की राम राम। बहनों आपको घणो घणो स्वागत छे इना कार्यक्रम में। बहनों अपन देखी रहा कि वरसाद का साथ में अभी वाउणी ने व्याओ ने सब साथ ज में काम ही रहा, पर हरे करना बखत का साधी लेनु ये सबसे बड़ी समझदारी रहे। जागरूक हुई का ना अगर कोई हम काम करी लेवा तो हर बखत को हर चीज़ को हम फायदो उठे सकें। एकासी एक फायदो ये हुई जाए अपना का कि अपनो जीवन तो चली रोज पर ओखा आरु सरल अपन इना तरीका से बनाई सकें। आप देखी लो नी हमारी जो ऐसी बहन छे कि जो खेती बाड़ी ने करी रही और घर में भी काम करें, फिर भूसी बहन गर्भवती बहन भी छे जो कि जिनका अपनो घर भी संभालनु, अपना घर का लोग न खा छे तो बखत से सब चीज़ न भी देनु, साथ ज कई कामकाज करी रही तो ओखा भी संभालनु, तो ये सब बात उनका बखत पर करनु पड़े। और एका लेना छे तो ओको कई कई फायदे उठेले ये भी उनका मालूम होना चाहिए। अब अपना जैसे जो बहन गर्भवती है इनका लेना चाहे तो अपना सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चली जा रही एको फायदो ही बहुत अच्छा तरीका से उठे सक न। फिर चे तो अपने गांव की जो आशा कार्यकर्ता बहन छे वो भी तो सब न सब बतावती रहें ताकि हर योजना को फायदो मिलतो रहे। अब एका लेना इन योजना को फायदो अगर लेनु तो सबसे पहली बात तो ये कि एम छे तो जब पहली बार अगर गर्भवती हुई रही बहना तो ओख 5,000 की सहायता मिलेगा, पर ये किस्त न म देज एक जो पहली किस्त जो आवज वो छे तो 5,000 की जो तीन किस्त ना उनका मिले ऐसा उनका 2,000 करी का न फिर 1,000 दे ऐसा 5,000 उनका मिली जाए। और ओका बाद में छे तो जो ऐसी बहन छे जिनका दूसरी बार गर्भवती हुई रही और अगर लड़की को जन्म होए तवा भी अपना का इन योजना का अंतर्गत 6,000 की राशि मिले। पर ये अपनी बहन का मालूम होना चाहिए कि अपन किस तरह से आवेदन करा, या तो पास की आंगनवाड़ी जो है वहाँ जाइक करा, या अपनी जो आशा कार्यकर्ता बहन छे उनका से भी अपन संपर्क कर सकें। एक आलेना काय काय कागजात लगज तो वो आपका बहुत अच्छा तरीका से बता ही देगा और आप ऊखा आवेदन करी कर इन्हीं योजना को फायदो ले सकज। क्योंकि एक ही योजना को खास उद्देश्य ये है कि हमारी जो बहन छे उनका छे तो अच्छो पोषण मिले, अच्छी वो स्वस्थ रहे एका लेना छे तो इन योजना का चलायो जाए रही। तो बहन हम बातचीत आरू भी करेंगा, पर देखो हमारी भूसी जो खेती बाड़ी की करने वाली बहन छे वो खेती बाड़ी तो करा जाए पर काई काई उन आरू काम करनू चाहिए। तो अपना एक किसान भाई छे जो कि बहुत प्रगतिशील छे रमेश चौधरी भाई ग्राम घनौना और जिला देवास का, इनका से अपनी भारतीय बहन बातचीत करी तो सुना इन काई काई बात ने बताई अपनी खेती का आगे बढ़ाना का लेना ने इन्हीं बखत में काई काई काम करनू चाहिए वो भी बताया, तो सुना इनका से।
1: किसान भाइयों आज अपन बात करेंगा अपना प्रगतिशील किसान भाई रमेश चौधरी जी से। आप गांव धनोरा जिला देवास से हैं, तो रमेश भाई आपको हमारी चौपाल पे स्वागत है ने राम राम।
2: राम राम दीदी, राम राम किसान भाइयों को, राम राम।
1: सबसे पहला तो मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने देखो अभी बरसात तो ही की है और हर किसान भाई उनके बरसात को इंतजार रहे कि जैसे ही बरसात होगी अपनी फसल के बोनी की अपना के तैयारी करनी है, तो दिल्कुल, आपने दिल्कुल। अपना खेत तैयार कर ही ना रखा है?
2: जी दीदी, अपना खेत तैयार कर लिया है। गर्मी में एक बार जुताई कर दी थी, उसका बाद में अपना प्राकृतिक खाद डाल दिया थोक में, और प्राकृतिक खाद का बाद एक जुताई और कर दी, उसका बाद अभी 8-10 रोज पहला अपने रोटावेटर से जुताई कर दी।
1: अच्छा, अच्छा।
2: कहे है कि दड़बा दड़बा ढेपड़ा जो बोला अपन मालवी भाषा में, तो वी बिल्कुल फूटी है उसे और अपने खेत समतल ही गया बिल्कुल।
1: अच्छा,
2: तो एक बार बोला में अपने कही है कि अपने सिडिल में कोई तकलीफ नहीं आओगी।
1: तो आपने माटी परीक्षण करवाई लियो?
2: हाँ, मिट्टी परीक्षण कराया तो बढ़िया दीदी, ना हिसाब से अपन खाद बीज दे रहे हैं।
1: और बीज को चुनाव तुम कैसे करो, मतलब बाहर से लावो कि अपना घर का ही बीज को उपयोग करो?
2: बीज को चुनाव दीदी गए साल लाया था अपन, तो बीज बढ़िया है, वो अच्छी पैदावार भी अच्छी है अपना, तो वही बीज अपने रखियो बिल्कुल सुखी रहता है धूप में, और अपना टाट का बोरा में रखी थी, रूप में खराब नहीं हो।
1: तो बीजा बीज को उपचार कर लियो कि नहीं करियो अभी?
2: जी जी, बीज को उपचार कर लियो दीदी, कंप्लीट कर दियो और कल बोवनी कराओ आप।
1: अच्छा, तो खेत की तैयारी सर्वोत्तम ने कई कई करियो?

0: खेत की तैयारी दीदी हके जोताई कर दी, समतल कर दी रोटावेटर से।
1: ओ पानी की निकासी सारू कहीं करियो फिर?
0: पानी की निकासी है, अपना खेत में नाली बनी हुई है।
1: अच्छा बनाई के रखी है आपने?
0: हाँ बनाई के रखी है नीचे मेड़ना का पास में। तो पानी नहीं रोका अपना खेत में, बिल्कुल नहीं रोका।
1: अच्छा और खाद कौन सा इस्तेमाल करो आप?
0: अभी अपना दीदी प्राकृतिक खाद, अपना गोबर को जो बोला अपनी गाय उनको वो डाले एक बाद में कहीं है कि अभी सोयाबीन अपने बोलने का पहला पहला डीएपी खाद उड़े ना वहाँ, मतलब 15 एक एक ठेली एक बीघा करीब, ज्यादा ज्यादा नहीं उड़ान वो भी। और कभी कम भी उड़ाओ प्राकृतिक खाद डाले है तो आपको 25 किलो भी उड़ाओगा एक बीघा में तो चलोगे बनाई।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ,
1: तो आपका यहाँ बरसात भरपूर हुई है कि नहीं? तो अभी वैज्ञानिक उनको कहना है कि किसान भाई उन जल्दी नहीं करे बुआई सारू, क्योंकि या जो बारिश हुई है बरसात हुई है या अभी हल्की हुई है प्री मानसून है, तो एकासे ऐसा नहीं हो कि आपकी फसल के नुकसान पहुंचे, तो आप एका सारू अपना विशेषज्ञ से बातचीत करी लो जो ध्यान रखी नहीं अपना खेती में काम कर जो। तो अपना किसान भाई उन कई करे, मतलब जब मिट्टी में नमी आई जाए तभी बुआई करे नहीं, तो आपकी मिट्टी में नमी आएगी?
0: अपना इधर कहीं है दीदी आज 8 दिन से नमी है, मतलब जो आल माल बोला तो वह चली गई है। और एक पानी तो अपना 17-18 जून का गिर गया था, उसका बाद में 2-3 पानी बीच में गिर गया और कल दोपहर का भी गिर गया था और शाम का वक्त बहुत अच्छा पानी गिर गया था।
1: अच्छा
0: तो मतलब 2 बजे तक बोनी चालू नहीं है, ऐसी नमी की खेत में अपना गीला रहा।
1: तो कहवे नहीं कि घने गीली मट्टी रहे तो भी बोनी नहीं करनी चाहिए?
0: नहीं नहीं वो आई गयो था दीदी बराबर आई गयो था। हाँ कोई कोई किसान भाई ने चालू करियो जिनका खेत बराबर आई गया था और बहुत सारा का तो गीला पड़ी गया था, तो उन्होंने नहीं बोया, अपना भी इकाले नहीं बोयो कि भाई अभी कभी पानी बह जाए, आज भी दिखी रही ऐसा तो कल या परसों ऐसा मौसम के देखी दीदी और टीवी में भी देखी ला अपन मौसम के बारे में, तो उससे अच्छा रहे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आओगी अपने।
1: अच्छा अच्छा साथेज मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप जो खाद लाओ उर्वरक को जो उपयोग करो वो घर पे ही, मतलब गोबर खाद बनाओ कि बाजार से, मतलब केचुआ खाद और इनको भी उपयोग करोगे?
0: हाँ घर पे अपने कहीं है कि पक्को घोड़ो बनी गए सो गड्ढो और ऊपर खाद डालना और ऊपर पानी भी लगी जाए और गाय ना को मूत्र भी ऊपर डालना कहीं, तो वो बहुत बढ़िया खाद अपना प्राकृतिक खाद बहुत जैविक खाद जैसा बन जाए बिल्कुल।
1: अच्छा अच्छा तो आप केचुआ खाद को भी उपयोग करो कि नहीं?
0: नहीं जैविक को तो नहीं कहा दीदी, अपने एक्सर जी बहुत बढ़िया खाद बन जाए और रासायनिक खाद है जो जरूरत पड़ता है उसको उपयोग कर रहा अपन।
1: अच्छा अच्छा और बुवाई में तुम कैसे बुवाई करो, मतलब कैसे बीज कैसे ढाको कई करो वो भी बताओ हमारा किसान।
0: बुवाई को कहीं है दीदी सीडिल से बुआ जैसे ट्रैक्टर से, तो जैसे अलग अलग सोयाबीन को रहे कोई 35 किलो बोनी पड़े कोई 30 किलो कोई 25 किलो, तो जैसी वेराइटी रहेगी जैसे बुआ। और बीज उपचार बिल्कुल कर लियो दीदी, एक रोज पहला कर लो बीज उपचार तो बहुत अच्छे हो रहे हो।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: और खरपतवार का लिए कई करो फिर आप?
0: खरपतवार का लिए दीदी ऐसा है कि जैसे अपनी बोनी ही की तो 15-20 रोज का अंदर अगर खुरल रहे अपने पानी नहीं गिरा तो डोरा चले तो वो बहुत बढ़िया है। डोरा से कहे की वहाँ मिट्टी जो है डोरा की अपना फसल का फसल में चली जाए पौधा में तो पौधा में नमी बनी रही। और जेका बाद 30 दिन में चले तो कभी ऐसा हो तो और नहीं भी चला तो फिर देख लो कि अपना कहीं शिकायत है नहीं की या कहीं खरपतवार की तो फिर खरपतवार नाशक उड़े दो फिर कर लो। मतलब खरपतवार को दीदी कहीं है कि 30-33 दिन का अंदर कर देना चाहिए।
1: अच्छा
0: आपने पौधों बड़ो ही जाए तो वो नीचे तक नहीं जाए हो।
1: तो आपने अभी अपना खेत में सोयाबीन का साथे और कहीं लगाया है?
0: सोयाबीन का साथे दीदी कहीं नहीं है, मक्का लगा हुआ थोड़ी बहुत।
1: अच्छा अच्छा
0: 10-12 4 जो घर पूर्ती क्योंकि आजकल मक्का नहीं हो दीदी जंगली जानवर ना बहुत ही गया है। होना नहीं रहे गए।
1: अच्छा तो आपने सोयाबीन ही लगाया है? बस
0: सोयाबीन ही लगा हुआ दीदी अपना घर का लिए बस 10-12 चांस जैसा 2-3 कावा।

0: चाचा अपना के नाम है, अपना घर को काम ही जाए वो।
1: अच्छा मक्का को चलते चलते आप हमारा किसान भाई उनके कई सुझाव देना चाहोगा।
0: भाई किसान भाई का है कि अच्छी नमी देखे ना, अपना जो है बोवनी करनी है और बोवनी में बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। हाँ भाई देखी लेना है अपना है कि अपना हाल अच्छी ही है, उसका बाद सिटील का पीछे रहना है, नहीं तो ये बंदी जाए कभी गिलो रहे तो।
1: हाँ।
0: और ट्रैक्टर से कहीं एक ट्रैक्टर से चलो आप तो पीछे भी करना पड़े रिवर्स भी, तो रिवर्स करते वक्त सिटील को ऊंची उठे लेनी बराबर और चलते वक्त चलता चलता होकर रखनी है नीचे, तो बनना को डर नहीं रखो दीदी।
1: अच्छा अच्छा।
0: और किसान भाई का जो अपनी बंजर भूमि है जैसे तो आप बात तो ही की अपने खेती की, और पूरा ध्यान अपना बच्चा बच्चे से ध्यान रखो सोयाबीन को, और बंजर भूमि है उसमें अपना पौधा लगाना है, छायादार पौधा फल वाला पौधा, तो उसका भी अपना बहुत फायदा रहेगा।
1: अच्छा अच्छा।
0: और अधिक से अधिक अपना गोबर जैविक खाद को उपयोग करना है, रासायनिक खाद को तो कहीं है कि अपना जो जरूरत पर तो करना है उपयोग, और यूरिया खाद तो अपना सोयाबीन में देना नहीं है, बढ़ते कोशिश मक्का में चढ़ा हुआ होगी, मक्का में भी कम से कम, और एक बार कही है कि अपनी सोयाबीन खुद यूरिया खाद बना हुआ, और कभी पानी ज्यादा गिरा है तो फिर थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर सकता है, पीली जाए अगर सोयाबीन तो बिल्कुल छिड़काव कर सकता है दीदी।
1: रमेश भाई आप हमारे चौपाल पे आए और हमारा किसान भाई उनके आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, एकालेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी दीदी आपको भी धन्यवाद, पूरी आकाशवाणी का धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: तो अभी हमारा जो किसान भाई था ये अपना रमेश चौधरी जी, ये इनका सी भारती वर्णा बातचीत करी वर्णा, और देखो इन्होंने बताया कि किस तरह से हम खेती कर सकें काई काई अभी अपना कर लेना चाहिए, जब हम नहीं करें तो सबसे पहले बीजा उपचार जरूर से करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि बिना बीजा उपचार करे अपन वावनी करे देवा तो बीज खराब ही जाए सड़ी जाए और अंकुरण बराबर नहीं होते हुए, अपन चाहवाज कि अपन सबई पूरा 100% अंकुरण हुए, तो इस तरह से अगर बीजोपचार नहीं करेंगे तो कैसे होएगा अंकुरण, तो सबसे पहले तो हमको बीजोपचार कर लेना चाहिए। फिर खाद छे तो जहाँ तक बना जैविक खेती कर लूँ बहुत अच्छो रहेगा, क्योंकि ये अपने खेत के माटी का की जो उर्वरा शक्ति से उखा बढ़ावेगा, तो हमको जैविक खेती जरूर से करनी चाहिए। ये खेती बहुत सरल भी छे और बहुत अच्छी छे और अपना सभी लोग का स्वास्थ्य का लेना भी बहुत फायदेमंद छे, तो जरूर से जैविक खेती करो ताकि छे तो जो अपना का आजकल अपन देखी राज की जितनी बीमारी में बढ़ी रही तो ये हमारे जो खान पान छे का कारण हो रही, तो हमारा खान पान अगर सही रहेगा तो हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगा, न बहना बातचीत आरू भी करेंगे पर मन करी रोज की हमें एक लोग गीत सुना, तो आज सोमवार को 3 छे सुना राम अवतार अखंड को है ये लोग गीत।

0: तो अभी हमारी ये बहन है ना, यो राम अवतार अखंड ना साथी ने को गाया है, यो मायावी लोक गीत सुनो और आनंद भी आएगा। और बहन आप हमारे हाथ में मंडी का भाव छे तो हम ये भी आपको सुने देवा। ये इंदौर मंडी का भाव छे और आज का छे। आज को भाव डॉलर चना को रहे हो 5700 से लेकर 8620 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का को भाव रहे हो 2092। मूंग को भाव रहे हो 3225 से लेकर ना 7705 रुपया प्रति क्विंटल। तुअर को भाव रहे हो 6370 से लेकर ना 6820 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूँ को भाव रहे हो 2241 से लेकर ना 2910 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन को भाव रहे हो 4400 से लेकर ना 6885 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी किस्म का 5055 से लेकर ना 5700 रुपया। राजमा 8405 से लेकर ना 9800 रुपया प्रति क्विंटल। न मटर को भाव रहे हो 3395 से लेकर ना 3400 रुपया प्रति क्विंटल। तो ये तो मंडी का भाव था और आज का था इंदौर मंडी का। और बहना अब फिर एक करूँ अपन भेंट वार्ता सुनी लेवा। अपन आँख जैसे अपने जो अभी सब्जी में लगेल छे शाक भाजी ना वो कद्दू वर्गीय लगेल छे, एमा बहुत सारा रोग बीमारी लगी जाए और इको कीट प्रबंधन कसो कई करनू, इस बात की जानकारी आज अपना खदे रहा है डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी ने इनका सी तृप्ति बहन बातचीत करी। तो सुना इनकी बातचीत।
1: किसान बहन हो जो सब्जी न हो उनका भाव तो अच्छा मिल जाए लेकिन उगाउनु उतो कठिन रहे ना उगाना के बाद में उसकी देख रेख करनू क्योंकि उसका अंदर मुक्ता कीड़ा जो छे लगी जाए मुक्ता रोग हो जाए। तो जो हमारी कद्दू परिवार की जो सब्जी ने छे उनमें का रोग लगी जाए का कीड़ा लगी जाए उनको निदान कसो करा आज इना विषय पर अपना के जानकारी देगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी जो कि कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम से छे। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत छे। राम राम।
2: राम राम मैडम। धन्यवाद।
1: आप हमारा किसान भाई ना कहिए बताओ कि कद्दू वर्गीय फसल में वो रोग नियंत्रण कसो करे और जो कीट हो जाए उनका से कसो बचाव करे।
2: जी मैडम बहुत अच्छा सवाल है आपका। कद्दू वर्गीय फसल मुख्य रूप से बरसात की सबसे अच्छी फसल है जो जून और जुलाई के समय में लगाई जाती है और यह कद्दू वर्गीय फसलों में इसमें तो बहुत सारी फसल आती है जैसे लौकी कद्दू ककड़ी तरबूज इत्यादि फसलें आती हैं लेकिन हम लोग बात करेंगे केवल लौकी और कद्दू पे। इसमें जो सबसे मुख्य इसका वो है कीड़ा, उसको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं। रेड पंपकिन बीटल कद्दू का लाल कीड़ा जो नामों से जानते हैं हिंदी नामों से, इस कीट का शिशु और वयस्क दोनों ही फसल को हानि पहुंचाते हैं। वयस्क कीट पौधों के पत्तों को छेद करके खराब करते हैं या खा जाते हैं। शिशु पौधों की जड़ें भूमिगत तनों या भूमि में सटे हुए फलों को नुकसान करते हैं, जो फल उसमें नीचे रखे रहते हैं उनको खराब करते हैं। तो इसके निदान के लिए हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों जो इसमें खरपतवार हैं उनको हटा के नष्ट करें, साफ करें, बेल को अच्छे से देखते रहें, फसल की अगेती बुवाई करें हमारे किसान भाई। यदि उसमें कीड़े हैं सुबह के समय देखें, यदि एक जगह इकट्ठे हैं तो उनको उठा के कलेक्ट करके नष्ट करें। और उसके लिए इसके बाद हमारे किसान भाइयों को दवाएं हैं जो नई दवा है एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG 1 ग्राम 2 लीटर पानी में और इंडाक्सा कार्ब 14.5 SC 1 ml 2 लीटर पानी में मिलाकर इनमें से किसी एक दवा का हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए।
1: अच्छा अने ये फल की मक्खी जो रहे जैसे फ्रूट फ्लाई भी कवच वो कसी करे आक्रमण न कसो को निदान करे अपना भाई।
2: इसके बाद दूसरा सबसे मुख्य कीट मैडम फल मक्खी है जो आपने सवाल पूछा है। फल मक्खी हमारे फसल को जो कद्दू वर्गीय फसल है उसको बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह कीट उसकी फलों पे अंडे देते हैं और इसके शिशु जो होते हैं अंडे से निकलते ही तुरंत नुकसान करना फल को शुरू कर देते हैं और ये अंडे देते हैं और उसमें छेद करके अंदर चले जाते हैं तो जिससे हमारे फल भी खराब हो जाते हैं और उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। और इस फल मक्खी के अटैक करने से उसके पौधे भी अनियमित आकार के हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े खराब भी हो जाते हैं। इसके निदान के लिए हमारे किसान भाइयों को जब निराई गुड़ाई करें हमारे किसान भाई तो उनको अंडों को उसके अंडों को नष्ट कर देना चाहिए, ग्रसित फलों को भी इकट्ठा करके हटा देना चाहिए, किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। और यदि वहां बार बार इसकी बुवाई कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई को यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर नहीं करें। हमारे किसान भाइयों को फेरोमन ट्रैप भी लगाना चाहिए, जो 10 से 12 ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं। और इसके बाद कुछ रासायनिक दवाएं हैं जैसे क्लोरोपायरीफास है, इनको 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला के हमारे किसान भाइयों को खेत में छिड़काव करें, जिससे ये कीड़े नष्ट हो जाते हैं।
1: अना कभी कभी खेत न मासी छोटी छोटी सफेद मक्खी ने भी देखा है, जो अपना जो फल लगे ऊपर बटी जाए ना पूरा खराब कर दे, ओका से कैसे बचा अपना किसान भाई?
2: किसान भाई, सफेद मक्खी बहुत ही ज्यादा मैडम नुकसान करती है हमारे कद्दू बरगी फसलों को। वो उसके कीड़े क्या, शिशु और जो वयस्क होते हैं बड़े कीड़े, दोनों ही उसको नुकसान करते हैं, चूसते हैं और पहले उसके पत्तियों को का रस चूसते हैं, फिर फूलों का चूसते हैं, जिससे उनमें फलों की भी संख्या कम होती है। तो इसके ये बहुत ज़्यादा खराब करते हैं, तो इसको इससे निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना है।
1: अच्छा।
2: उसके ऊपर हमारे किसान भाइयों को दवा का स्प्रे करना है, और जिससे वो नष्ट हो सके उसमें इमिडाक्लोरपीड 17.8 SL, एसिटामिप्रिड, इनमें से किसी एक दवा का 10 ग्राम 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें, जिससे

0: सफेद मक्खी नष्ट होगी तो इसका प्रकोप वहीं पे रुक जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे, एक सेमी लूपर है जिसको इल्ली के नाम से जानते हैं, वो भी कीड़ा इनकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जो शुरुआती अवस्था में जब पत्तियां कोमल होती हैं तो उसको खाकर नष्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे फूलों को भी काट के खराब करते हैं और फलों को भी नुकसान करते हैं। तो इससे हमारे किसान भाइयों को निजात पाने के लिए कुछ दवाएं हैं जिनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए, जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट है 5% इसका करना चाहिए, क्लोरोपायरीफास का करना चाहिए हमारे किसान भाइयों का प्रयोग, प्रोफेनोफास का करना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों को इससे निजात मिले और फसल अच्छी हो।
1: और कई का कीड़ा जो हमारा फसल का नुकसान पहुंचाता है,
0: एक माहू है हल्का सा, वो भी नुकसान पहुंचाता है। तो माहू फसल के निम्फ और वयस्क दोनों ही अटैक करते हैं, जो पौधों के कोमल भागों को रस को चूस कर नुकसान करता है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस कीड़े का जैसे अटैक होता है तो किसी भी, जैसे जैविक दवाएं आती हैं नीमाइल 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर उनका छिड़काव करें, इमिडाक्लोपीड 17.8 SL 150 ml छिड़काव करें और प्रोफेनोफास 50 EC 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करें।
1: ये तो हुआ कीड़ा न की बात, पर कई का ऐसा रोग है कि कीड़ों नहीं देखा होते हैं लेकिन हमारा जो पेड़ की पत्ती न छे तो वो ऐसी भूरी भूरी हुई जाए, उनका ऐसी मट्टी ऐसा देखा है पाउडर आई जाए कदी कदी, तो वो कहाँ की बीमारी ना हमारा पेड़ न पौधा न लगी जाए।
0: बहुत अच्छा सवाल मैडम, उसमें एक पाउडरी मिल्ड्यू है जो कद्दू वर्गी फसलों में बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिसको हिंदी में चूनी लासिता के नाम से जाना जाता है। यह पत्तियों और तनों पर सफेद पाउडर जैसे धब्बे दिखाई देते हैं जो बाद में पूरी पत्ती पर कवर करते हैं और जिससे वो फैलकर पूरे कवर कर लेते हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं। तो उसको हमको, ये ज्यादातर कूल एंड ड्राई कंडीशन में आती है और इसके प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए, बीज को उपचार करना चाहिए, खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था करना चाहिए और कार्बंडाजिम एक सिस्टमिक फंजीसाइड है जिसकी 1 gram मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और कार्बंडाजिम प्लस मैंकोजिब जो पूर्व मिश्रित दवा आती है उसका 2 से 2.5 gram प्रति लीटर पानी मिलाकर हमारे किसान भाइयों को छिड़काव करना चाहिए।
1: और कहाँ की ऐसी बीमारी हो जो कि अपना किसान भाई देखी करना अपनी फसल का बचा ही सके?
0: डाउनी मिल्ड्यू है, ये भी मुख्य बीमारी है जिसको मृदरोमिल आसिता के नाम से जाना जाता है। ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले कोड़ी धब्बे बनाते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर बैगनी भूरे रंग के फफूंद दिखाई देते हैं। यह गर्म और नमी की अवस्था में होता है और खासकर इसका अटैक बरसात के समय में होता है कद्दू वर्गीय सब्जियों में। इससे पत्तियां धब्बे में धीरे धीरे हो जाती हैं और बैगनी रंग के फफूंद भी दिखाई देने लगते हैं और जिससे इससे पूरा धीरे धीरे पौधा खराब होने लगता है। तो इससे निजात पाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कार्बंडाजिम प्लस मैंकोजिब और मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजिब इनमें से किसी एक दवा का हमारे किसान भाई स्प्रे करें तो फसल उससे अच्छी होती है।
1: डॉक्टर साहब, हम कभी कभी हमारा किसान भाई ऐसी समस्या लेकर आवे कि पानी तो अच्छो भरे से खेत में फिर भी जो पत्ती जो पौधों छे अचानक से मुरझाई जाए, तो यह कहाँ की बीमारी का लक्षण है, नहीं कसो बचाव?
0: ये कद्दू वर्गी में भी इस बीमारी का जो मुख्य लक्षण है ये मृदा जनित बीमारी है।
1: अच्छा,
0: ये मिट्टी में ही रहती है जिसमें हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए कि जहां पर इस बीमारी का ज्यादा प्रकोप होता है वहां पर इसकी बुवाई नहीं करें। फसल चक्र हमारे किसान भाई अपनाएं, 2 से 3 साल में गहरी जुताई करें, फसल चक्र अपनाएं और बीज को उपचारित करके हमारे किसान भाइयों को बुवाई करें। लेकिन जहां पर इनका बार बार अटैक हो रहा है वहां पर हमारे किसान भाइयों को सड़ी गोबर की खाद में जैविक दवाएं आती है ट्राइकोडर्मा बिरडी, उसकी 1 quintal में 1 kilo मिला के हमारे किसान भाई को रख देना चाहिए उसमें छावदार स्थान में। बाद में उसको मिक्स करके जब लास्ट जब जुताई करते हैं बुवाई करने से पहले तो इसका इसको उसमें मिला के बुवाई करना चाहिए और उसके बुवाई से पहले बीज को उपचार कर देना चाहिए।
1: या तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। अब हमारा किसान भाई ना का आप चलते चलते कई सलाह देना चाहोगे जेका से कि उनका अच्छे से अच्छी उपज मिले और जो सब्जी छे वो को गुण भी बने रहे।
0: हम अपने किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई अभी जो समय चल रहा है तो उर्वरकों का और रसायनों का कीटनाशकों का इतना ज्यादा प्रकोप अभी है कि किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं। भारत सरकार के तरफ से भी चल रहा है अभी कार्यक्रम भी 1 जून से 30

0: जून तक चलाया जा रहा है कि खेत को कैसे बचाया जाए।
1: अच्छा,
0: खेत को बचाने का एक तरीका है कि जो संस्तुत मात्रा में है, नाइट्रोजन हमारे खेत में लगभग 20 पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मुख्य हैं जिसको हम लोग यूज कर पाते हैं। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि जाओ किसान भाई के जो खेत हैं, तो कम से कम एक खेत में 2 से 3 साल में सड़ी गोबर की खाद या केचुए की खाद को जरूर डालना चाहिए, जिससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उपज भी अच्छी हो जो भी हम फसल लगाएं, और रासायनिक उर्वरकों का भी कम प्रयोग हो। और जितनी मात्रा संस्तुत मात्रा होती है उतना ही हमारे किसान भाइयों को डालना चाहिए, चाहे रासायनिक उर्वरक की हो चाहे कीटनाशक की हो, जो डोज होता है वही मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी किसान भाई ज्यादा डालते हैं, तो इनका हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि जितनी मात्रा रिकमेंडेड है उतना ही डालें, नहीं तो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, दवाएं भी नहीं काम करती।
1: यह बात खाली मिट्टी परीक्षण से मालूम पड़ेगा। तो हमारा किसान भाई ने क्या सलाह दिया है हमारी तरफ से भी कि समय समय पर साल 2 साल में अपनी मिट्टी को परीक्षण जरूर करा रहे, जेका से कि मिट्टी में अनावश्यक रसायन नहीं जाए। डॉक्टर साहब, आप हमारा स्टूडियो में आया और आपने इतना अच्छा तरीका से बताया कि कसो हमारा किसान भाई अपनी अच्छी फसल पाई सके, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे सवाल थे आपके, किसान भाइयों को निश्चित ही लाभ होगा। राम राम।
2: तो अभी हमारी बहन है ना, कद्दू वर्गीय सब्जी में जो रोग बीमारी लगी जाए ना, कीट प्रबंधन कसो कई करनी है, एक बारे में डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप तिवारी से तृप्ति बहन की बातचीत सुनी और ये उपयोगी भी थी। और बहना अब जैसो कि घरेलू व्यंजन, घरेलू टिप्स रहे ओमें से, तो आज हम आपको बता रहे कि घरेलू व्यंजन में खमन कसो बनाऊ। खमन बनाने के लेना है तो 2 कटोरी बेसन लेके ना, आधे चम्मच मुँह मीठो सोडो डालो और 1 चम्मच शक्कर, आधे चम्मच है तो टाटरी डालो, या फिर अपन देखा कि जैसे जो बाजार में अपना जैसे यूनोसरी का पैकेट जो मिले ओखा नाखी सको, ओखा 2 चम्मच अने एक पानी से अच्छी तरह घोल के ना ओखा डब्बा में नाखी लो, तेल लगाई के ना न एक बफाई लो, या तो कुकर में या कढ़ाई में, या फिर आपको जैसे इडली बनाऊ को जो साचो छे ओका अंदर एक बफाई लेनू, ओखा अच्छो तेज आंच पर पहले रखनु चाहिए, जैसे उमा भाप अच्छी बनी जाए न वो पकी भी जाए। फिर वो छे तो कई भी चक्कू वगैरह या गाड़ी गाड़ी ने देखो, अगर वो नीचे पकतो है तो समझी लो कि वो पकी गए। तो एक निकाली लेवा, ठंडो करी करना और छे तो छोटा छोटा टुकड़ा ना में काटी लेवा, और फिर छे तो वघारी करना अपन मीठा नीम से हरी मिर्ची वगैरह ये नाखी करना वघारी करना और एक खाई सकान, ये बहुत पौष्टिक भी है और जल्दी बनी भी जाए। कम तेल एम लगे नहीं का बराबर, तो एक बहुत अच्छो जो है ये व्यंजन है और हमारी बहन ने कह लेना फायदेमंद भी है, तो जरूर से एक बनाओ। दूसरी बात ये कि घरेलू टिप्स में आज हम बड़ी इलायची का बारे में बता रहे कि बड़ी इलायची का जो उपयोग है वो बहुत अच्छो है, ये अपना पाचन खा अच्छो रख, साथ ब्लड प्रेशर भी एक ऐसी सही रहे, ये एक तरह को एंटीऑक्सीडेंट है, तो अपना को कोई बीमारी ऐसी नहीं लगती एकदम सी कि ये जो को असर हो जाए, और अपना हृदय का लेना भी एक बहुत फायदेमंद है, साथ ही मुंह की दुर्गंध ने मसूड़ाना का लेना भी ये बहुत अच्छो काम करे, तो हमको जरूर सी बड़ी इलायची को उपयोग करनी चाहिए, जैसा कि अपन अपना जो गर्म मसाला है वो भी एक उपयोग कराएं, साथ ही अपना चाय को मसालो या सीधा कोई अपन खड़ो मसालो उपयोग कराएं, तो वो बड़ी इलायची को हमको प्रयोग जरूर सी करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर का लेना बहुत फायदामंद है। तो हमारी बहना जो है इन्हीं चीज को उपयोग करेगा, और बहना फिर मन करी रोज की एक और लोग सुनो जाए तो बरसात चली रही और बरसात का एम आनंद लेना कर लेना, अपन सुना इसने लता भटोरे को गायल यो लोग।

तो अभी हमारी बहन है ना, यो स्नेहलता भटेरू के गायल लोकगीत सुनो और आनंद भी आयो। और हम यही कामना करा कि खूब अच्छो पानी बरस और सब कुछ हरो भरो हो जाए। एक साथ में कार्यक्रम की बखत भी पूरी हुई, तो पछा मिलंगा सभी बहना का बिंदु की राम राम।

अभी आप ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिन की यात्रा आज समाप्त हुई और प्रधानमंत्री आज दोपहर स्वदेश लौटे। और ये यात्रा महत्वपूर्ण इस तरह से थी कि सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। और इसके अलावा भारत और सेशल्स के राजनयिक संबंधों का ये 50वां वर्ष भी रहा। आज हम इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सबसे पहले हम इसी सवाल से इस चर्चा को शुरू करते हैं कि जिस तरह से भारत ग्लोबल साउथ की एक आवाज बनकर उभरा है और विकास के सहयोगी के तौर पर भारत एक बहुत बड़ा देश बनकर उभरा है, सेशल्स की यात्रा में आपको इस संबंध में क्या नजर आया?
3: देखिए, भारत और सेशल्स के बीच में संबंध पिछले 50 सालों में हमने देखा है कि वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर नहीं है, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम ये है कि भारत सेशल्स के लिए चाहता है कि वो हिंद महासागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, चाहे वो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो या आर्थिक सुरक्षा संपन्नता को लेकर हो, सामुद्रिक सुरक्षा हो, इन तमाम आयामों पर सेशल्स ऐसी स्थिति में रहे कि वो न सिर्फ अपने ऊपर आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके बल्कि क्षेत्र में भी, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी वो इन चुनौतियों का सामना करने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सके। तो मल्टीलैटरल एस्पेक्ट में भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर की भूमिका निभाए, तो ये दूसरा उसमें आयाम है। तीसरी एक चीज है कि भारत ने हमेशा ये कोशिश की है, जैसा कि हम जानते हैं कि महासागर नीति जो पहले सागर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसका आगाज पहले किया था, अब वो महासागर नीति में उसमें

0: ही हम देखते हैं कि महासागर नीति के तहत उद्देश्य ये है कि जो छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं, छोटे जो हिंद महासागर के और बड़े पैमाने पे अगर हम कहें कि ग्लोबल साउथ के जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उनकी जरूरतें जो हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं, इन देशों की जो आकांक्षाएं और उनकी जो चिंताएं हैं, उनको दूर करना और उनको एक हाशिए से उठा करके उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये भारत की नीति रही। तो भारत और सेशल्स के संबंधों में ये साफ तौर पर दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया कि हम साथ चलते हुए हम अपने संबंधों में भरोसे और भरोसे के साथ सहयोग और सहयोग से आज हम जन कल्याण की ओर बढ़ रहे हैं, ये हमें प्रधानमंत्री की विजिट में भी दिखता है और भारत सेशल्स के संबंधों में भी दिखता है। क्योंकि बड़े पैमाने पर भारत के जो भी अगर हम लिस्ट ऑफ MOUs को देख लें या पिछले तमाम वर्षों में भारत ने जो सहयोग सेशल्स के लिए किया वो सेशल्स की जरूरतों पर केंद्रित रहा है। और ऐसा वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक ने भी कहा कि भारत सेशल्स संबंध सेशल्स की जरूरतों को ध्यान में रखे गए हैं और यही मुझे लगता है इस द्विपक्षीय संबंध की बड़ी खास बात है।
1: तो कैसे आप देखते हैं किस तरह से भारत सेशल्स के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और जिस तरह से सहयोग भारत ने रखा है वो कैसे मदद करेगा दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने में?
0: MOUs की जहां तक बात है उसमें क्षमता को बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे MOUs में कहीं ना कहीं वो दिख रहा है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेशल्स के सिविल सर्वेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग हो भारत के सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन अफेयर्स में, या फिर वो ICAR और सेशल्स की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके बीच में सहयोग हो, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा आयाम है इन संबंधों का। साथ ही साथ जैसा कि हमने पहले भी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेशल्स के लिए एक बड़ी जरूरत है, तो वहां पर तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भारत ने काम किया है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार मुझे लगता है किसी देश के साथ संबंधों में जन कल्याण की बात कही,
1: बिल्कुल,
0: और वो इसलिए है कि सेशल्स के लिए ना सिर्फ एक नया सेशल्स नेशनल हॉस्पिटल बनेगा इस MOU के तहत, बल्कि वो तमाम जेनेरिक दवाएं और मेडिसिनल सप्लाईज जो है वो जन औषधि स्कीम के तहत सेशल्स को दी जाएंगी। तो एक तरह से हमें दिख रहा है इन MOU के तहत कि बड़ा ही समेकित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग और एग्रीमेंट्स का इन दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है। जहां तक लाइन ऑफ क्रेडिट का सवाल है उसमें भी एक बहुत जो 175 मिलियन की बात तमाम बार दोनों देशों के नीति निर्धारकों के बीच में बातचीत में भी आई और मीडिया में भी तमाम ये खबरें आई, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट है जिसमें 125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट है, 50 मिलियन ग्रांट के तौर पर दिया जा रहा है। तो सेशल्स की जो आर्थिक क्षमता है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन एग्रीमेंट को ये रूप दिया गया है जो कि बहुत अच्छा है। साथ ही साथ देखिए सेशल्स एक ऐसा देश है, छोटा सा देश है जिसकी तटरेखा बहुत बड़ी है, 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की उनकी तटरेखा है, तो उसके लिए स्पेस सैटेलाइट एप्लीकेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग उस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में, सैटेलाइट इमेजरी के क्षेत्र में, ये मुझे लगता है कि सेशल्स की क्षमताओं को एक बड़े नए स्तर पर पहुंचाएगा जिससे सेशल्स हिंद महासागर में भी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं, चाहे वो पायरेसी को लेकर हो या ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स को लेकर हो या गन रनिंग को लेकर हो, उनमें भी सेशल्स की क्षमता बढ़ेगी तो हिंद महासागर में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ेगी जो दोनों ही देशों के लिए और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा है।
1: आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और सेशल्स के संबंधों और समुद्री सुरक्षा के बारे में क्या कहा।
2: अवर कोऑपरेशन इन मैरिटाइम सिक्योरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, हाइड्रोग्राफी एंड मैरिटाइम डोमेन awareness reflect our shared commitment to a safer and more secure region. I met President Armeni Topath this morning. Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को दूसरे देशों के साथ मजबूत करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स जैसे देश इसमें कितनी बड़ी एक साझेदारी की भूमिका निभा सकते हैं?
0: देखिए भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर से हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की रणनीति सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की तमाम महाशक्तियों के इतर भारत ये चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश, सभी मित्र देश एक अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए और सभी मिलकर कॉमन सिक्योरिटी पर काम करें, कोऑपरेटिव पीस के उद्देश्य पर काम करें, जिससे कि ये क्षेत्र न सिर्फ स्थिर रहे बल्कि शांति भी इस क्षेत्र में बनी रहे। इसलिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस इस लिहाज से बहुत जरूरी है और महासागर के कॉन्सेप्ट में सेशल्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उतनी ही महत्वपूर्ण में मुझे लगता है जितनी की मॉरिशस या मालदीव्स या श्रीलंका की है। तो इस लिहाज से महासागर नीति के तहत भारत का जो उद्देश्य है, भारत का जो लॉन्ग टर्म विजन है कि सभी का विकास हो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो ये सारी चीजें इस नीति में हमें दिखती हैं। महासागर के लॉन्च होने के बाद 2025 में सागर नीति को 2015 में लाया गया था, 2025 में उसे अपग्रेड करके महासागर नीति का रूप दिया गया। तो पिछले एक साल में हमने देखा कि तमाम जो हिंद महासागर के छोटे द्वीपीय देश हैं उनके साथ सहयोग में इस बात को बड़ी मुखर तौर पर कहा जा रहा है कि सभी देशों की क्षमताओं को एक साथ जोड़कर हिंद महासागर के क्षेत्र में हमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी दोनों ही एस्पेक्ट्स में काम करना है। तो मुझे लगता है कि भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि एक इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड पीसफुल और स्टेबल ऑर्डर हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बने।
1: जी, सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को अपने संबोधन में रेखांकित भी किया था, तो उस संबोधन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और बातों को आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहेंगे।
0: देखिए, एक खास पहलू भारत और सेशल्स के संबंधों में वहां पर मौजूद भारतीयों और भारतवर्षियों का योगदान है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, NRIs हैं, और जो हमारा डायस्पोरा है वहां पर, वो 8-10% की संख्या वहां पर टोटल पॉपुलेशन में देता है और उनका योगदान बहुत प्रमुख है। पहले तो वो 1770 में जब पहली बार भारतीय सेशल्स पहुंचे तो वो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे, वो खेतों में और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे। लेकिन आज भारतीयों का कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं डायस्पोरा के साथ साथ NRIs को भी जोड़ूंगा, वहां सेशल्स में एडवांस जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हो, सिविल इंजीनियर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, या वहाँ के सिविल सर्वेंट्स, इन तमाम क्षेत्रों में भारतीयों का योगदान बहुत प्रमुख है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेखांकित किया। साथ ही साथ जो भरोसे की नींव पर आधारित जो ये संबंध है, इसमें ये जो तमाम एस्पेक्ट्स आते हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा है खाद्य सुरक्षा का, जो सेशल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमेशा से भारत से चावल सेशल्स को जो है वो भेजा जाता है, कभी कभी वो एक्सपोर्ट के तौर पर, बहुत ऐसे भी ओकेजन आए जब भारत ने चावल सिर्फ जो है वो सहायता के लिए भेजा। सेशल्स जैसे देश आज जलवायु परिवर्तन और बहुत तेजी से बदलती हुई ये जो क्लाइमेट डिबेट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उससे जूझ रहे, उनकी इन तमाम जो जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट रिलेटेड कैलामिटीज हैं, उनसे लड़ने में भारत क्या योगदान दे सकता है, दोनों देश मिलकर क्या काम कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि 50 साल का सफर हमने तय कर लिया है, अब आगे आने वाले 50 सालों में हमें क्या करना है। तो मुझे लगता है कि सेशल्स को लेकर एक बहुत दूरगामी नीति बनाने की बात उन्होंने कही, और में सेशल्स के नीति निर्धारकों का, सेशल्स की जनता का और सेशल्स में रह रहे भारतवर्षियों का भी योगदान उन्होंने मांगा। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा ही व्यापक और इंक्लूसिव एजेंडा उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे सेशल्स की जनता और वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और राष्ट्रपति ने बड़े ही खुले मन से स्वीकार किया।
1: जी, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, सेशल्स की अब हम चर्चा कर ही रहे हैं, तो इन देशों में जो अपने रणनीतिक संबंधों में भारत विकास का जो एक क्षेत्र लाया है और सहयोग और जनकल्याणकारी जो साझेदारी है इस क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, वो कैसे भारत अपने एक सकारात्मक प्रभाव को इन देशों के साथ प्रस्तुत कर रहा है और कैसे विश्व में ये एक संदेश भी जा रहा है कि भारत अपने सहयोगियों के साथ एक विकास का प्रबल सहयोगी बनकर उभर रहा है।
0: जी, जैसे मैंने पहले कहा कि भारत की महासागर नीति 2025 की, उसमें बहुत स्पष्ट है कि ग्लोबल साउथ के जो देश है, खासतौर से ये हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश है, उनके साथ सहयोग में एक बड़ा स्तंभ ये होना चाहिए कि इन देशों की, जिनकी बात दुनिया के किसी भी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या दुनिया के और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, उनकी कॉप की जो मीटिंग्स हैं उन पर, इन छोटे देशों की बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए ग्लोबल ग्लोबल साउथ की आज सबसे मुखर और सबसे सशक्त आवाज बनकर भारत उभर रहा है, जो इन देशों की जनता की जो सर्वाइवल से जुड़े इश्यूज है, कृषि है, खाद्य सुरक्षा है, फिशरीज का सेक्टर है, मछली पालन का, क्योंकि इलीगल और अंडर रिपोर्टेड फिशिंग को लेकर के IEUU जिसे कहते हैं उसको लेकर के चिंताएं बहुत सारी हैं, तमाम जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आती हैं, उनमें भारत हमेशा से हिंद महासागर क्षेत्र में

0: नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है और फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। तो इस बात को भी ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत ने रखा है। भारत को जैसा कि हम जानते हैं दुनिया की फार्मेसी समझा जाता है, लेकिन आज सिर्फ अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है कि जनता जो जन औषधि योजना जो भारत में लागू हुई, ये दुनिया के तमाम जो विकासशील देश हैं ग्लोबल साउथ के सदस्य हैं जिन्हें दुनिया के अग्रणी जो विकसित देश हैं उनसे कोई चिकित्सा से संबंधित या हॉस्पिटल से संबंधित दवाओं से संबंधित नई टेक्नोलॉजी से संबंधित जो समर्थन जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आज भारत उसको मुहैया कराने की स्थिति में है। तो इसलिए ग्लोबल साउथ को लेकर के भारत की नीति बहुत स्पष्ट है कि इन तमाम देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ना है, तभी ग्लोबल साउथ एक ऐसे स्तर पर ऐसे मुकाम पे पहुंचेगा जहां वो अपनी बात को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कह सके, ना कि सिर्फ जो अभी तक हमने ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ की डिबेट सुनी है उसमें हमेशा ये होता है कि ग्लोबल साउथ के देश कहते हैं कि हमें और फंडिंग दी जाए, हमें ग्रांट्स दी जाए, हमें एड दी जाए। आज भारत अपने इन तमाम ग्लोबल साउथ के देशों की मदद के साथ ये कहना चाहता है, ये करना चाहता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ एक ऐसे इस तरह से एक दूसरे को एंगेज करें कि ये वन वे डोनर और रेसिपिएंट रिलेशनशिप से बदले और साउथ अपनी बात को अपने मुद्दों को कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा असर्टिवली कह सके, और इसके लिए इनकी कैपेसिटीज को बढ़ाना जरूरी है। यही अफ्रीका के देशों में दिख रहा है, यही पैसिफिक आइलैंड के जो तमाम जो छोटे देश हैं और हिंद महासागर में भी यही बात दिख रही है।
1: बिल्कुल प्रोफेसर राहुल मिश्रा बहुत धन्यवाद, भारत और सेशल्स के संबंधों पर आपने विस्तार से विश्लेषण रखा और निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ इन संबंधों को लेकर जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा, समुद्री सुरक्षा और सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को पद्मश्री तपस्वी का नमस्कार। बहुत खूबसूरत होती है वो रात जब होती है उनसे मुलाकात। महकती है चांदनी और आगोश में ले लेती है उस चांद को जो बादलों की ओट में छिपा है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, मोहब्बत परवान चढ़ती है। क्या बयां करूं मैं उन मुलाकातों के बारे में। शाम ढले जब उनकी याद आती है, भीग जाती हैं पलकें, होठ सूख जाते हैं। सारी रात सताती है उनकी याद। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आई।

हर रात तुमसे मिलना, तुमसे बातें करना बड़ा सुकून देता है मेरे दिल को। जब तुम सामने नहीं होते हो तुम्हारी बड़ी याद आती है। अंधेरी रात नागिन सी डसती है, दिन का उजाला भी रास नहीं आता। जिंदगी बड़ी सूनी सी लगती है तुम्हारे बिना। बिछड़ने से पहले ज्यादा करीब हो जाते हैं हम, जिन्हें बहुत चाहते हैं अक्सर वो खो जाते हैं। दिल मानता कहाँ है पराया उनको, गैर कहकर हमें छोड़ जाते हैं। याद पूरी निकलती ही नहीं अब उनकी, वो जरा से जो याद आए आंखें पूरी भिगो जाते हैं। होता है यही किस्सा हर रात, हम इंतजार करते करते सो जाते हैं। हवाएं मचाती है बवंडर दिन भर, रात को चुपके से बादल ओस से धो जाते हैं। है कैसी किस्मत अपनी मौला, करीब जाए जिनके दूर वो जाते हैं। दिल यही कहता है क्यों दिल लगाया हमने आपसे।

किसी से प्यार, किसी के प्यार को पा लेना ही मोहब्बत नहीं होती, किसी से दूर रहकर उसको हर पल याद करना भी मोहब्बत ही तो है। और अगर किसी से मोहब्बत हो ही गई है तो उसके गम अपना लो, तभी मोहब्बत के इम्तिहान में आप पास होंगे। इश्क है तुमसे हम बयां कैसे करें, इश्क है तुमसे हम बयां कैसे करें, इस हकीकत को लफ्ज़ों में अदा कैसे करें। रोशन हो जाएगा समां अगर तुम आ जाओ, अपनी वफा को तेरी राहों में फना कैसे करें।

जिनसे उम्मीद हो ज्यादा और वो ही दिल तोड़ने की बात करें तो पूरी दुनिया से ही भरोसा उठ जाता है। कभी कभी अपनों से ऐसा दर्द मिलता है कि आंसू तो पास होते हैं मगर रोया नहीं जाता। कितना नादान है ये दिल, कैसे समझाऊं इसे, कितना नादान है ये दिल, कैसे समझाऊं इसे, तुमसे मोहब्बत बहुत करता है, कैसे बतलाऊं इसे, किसी को क्या बताएं कि कितने मजबूर हैं हम, चाहा था सिर्फ एक तुमको और अब तुमसे ही दूर है हम।

नैन से नैन मिले, दिल का चैन चला गया। जो बात दिल से न कही गई, आंखों ने कह दी। जब तक मतलब था, तब तक हमसे निगाहें मिलाई। अब मतलब निकल गया, तो यूं जाते हैं जैसे हमें जानते ही नहीं। अपनी गरज थी, तब हमारे करीब थे। अब हम मना रहे हैं, मगर मानते नहीं। हमने तुम्हें पसंद किया, क्या बुरा किया? रुतबा कुछ बुलंद किया, क्या बुरा किया? अब मुंह फेर कर न जाओ हमारे करीब से। मिलता है कोई चाहने वाला बड़े नसीब से। बिखरे हैं अश्क, कोई साज नहीं देता। बिखरे हैं अश्क, कोई साज नहीं देता। खामोश है सब, कोई आवाज नहीं देता। कल के वादे सब करते हैं, मगर क्यों कोई साथ आज नहीं देता।

यह इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सच ही कहा है गालिब साहब ने, इश्क आशा नहीं। मौसम ने यकायक करवट बदली, फिर पतझड़ आया, फिर हमें सूखे पत्तों की तरह बहुत दूर उड़ा लाया। अब तो सिर्फ यादें हैं, सिर्फ यादें और कुछ नहीं। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह।

0: हम मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हो, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। दिल ने फिर याद किया, इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए पद्मश्री को, नमस्कार। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार संध्या हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णे और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा

0: काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केन्द्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
5: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
4: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewZone AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश

0: लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कुंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रूपये के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and Senior Officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honoured with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit. On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple.

चित्रगीत का अगला गीत फिल्म का नाम परदेसी, मीना कपूर और साथी की आवाज़। गीत लिखा है प्रेम धवन ने, अनिल विश्वास का संगीत।

है छोटी सी बात रे, मेरे मन में है छोटी सी बात रे, जो कहीं भी न जाए और सही भी न जाए, होने वाली है दिल पे कोई खातिर रे।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम रतन, जोहराबाई अंबाले वाली की आवाज़ है। गीत लिखा है DN मधोक ने, नौशाद का संगीत।

रतन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी जोहराबाई अम्बाले वाली की। गीत लिखा था DN मधोक ने, नौशाद का संगीत था। और अब कार्यक्रम के आखिर में आशीर्वाद फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीत लिखा है गुलजार ने, वसंत देसाई का संगीत।

गुलजार का लिखा गीत आप सुन रहे थे। संगीत था वसंत देसाई का, आवाज़ लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। इस गीत के साथ ही चित्रगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत एमएसएमई क्षेत्र है। एमएसएमई न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश। आपका स्वागत है डॉ रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और एमएसएमई क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो एमएसएमई की है वो जैसा आपने बताया

0: कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एमएसएमईज हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ एमएसएमईज के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें एमएसएमई का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
1: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: जी नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार, जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है, यहाँ जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है, इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
0: देखिए एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो है वहां उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
0: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम सीजीटीएमएसई बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम सीजीटीएमएसई से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
0: और 2023 में एडिशनल 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज हमें देनी थी और 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था हमने 3.5 साल में ही 10 लाख करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो सीजीटीएमएसई उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
0: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा, पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो आरबीआई की लिमिट थी वो 10 लाख रुपए थी, तो हमने आरबीआई से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटीज हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि एमएसएमईज अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है, देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना

0: हुनर दिखा सके। दूसरा जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्राहक कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी। तो आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है और ये हमारे एक्ट के तहत एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात यह कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
2: अच्छा।
1: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रूपये है और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रूपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है पीएमएस, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहां गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे सीजीटीएमएससी से लेते हैं और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी एमएसएमई एसोसिएशन हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया सीजीटीएमएससी का जरूर हवाला दें ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
2: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो सीजीटीएमएससी जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
1: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे जीएफआर के अंदर ये चीज निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या एमएसएमईज की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
2: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
2: जी
3: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है एमएसएमई के लिए लोन लेने का, तो कितने प्रतिशत में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
2: जी
1: देखिये, जो

0: एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है, वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8 से लेकर 10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है, तो ये आप हमारे सीजीटीएमएससी का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना
1: जी,
0: होगा।
1: मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार
2: आप, मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये पूछना चाहता हूं कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू
0: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियां हैं एमएसएमई में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहां पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेशन एमएसएमई की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज ये है कि बहुत से हमारे एमएसएमई इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एमएसएमई का स्टेटस खो देंगे और ये जो बेनिफिट एमएसएमई के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे। तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार
3: मैम, मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग है जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग भी शामिल होते हैं अगर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं।
0: देखिए आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूंगा, शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है।
1: शायद उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस वजह से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1 करोड़ 65 लाख एमएसएमई हमारे साथ पंजीकृत थे, और ऐसे बहुत से एमएसएमईज थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ। आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ये हम मानते हैं कि एमएसएमईज जो है वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट है, और काफी जो हमारी इकोनॉमी की रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है, तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है, तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया, तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे, तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफी मजबूत रही है, और उसका एक रीजन ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है वो भी काफी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चले। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं, तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
4: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: और जो एक्सपर्ट साहब हैं इनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं, तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक, और मिनिमम वेज एमएसएमई में कितनी निर्धारित करी गई है जी, और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं एमएसएमई उनको और वेलफेयर स्कीम का सकती हूँ।
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है, तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं, वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती है। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है, तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहां पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
5: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
5: जो लघु ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं। अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं और हमारे एमएसएमईज जो हैं वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है, तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं तो 1800-1806-7-63 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी
6: हेलो
1: जी, हाँ अपना सवाल पूछे।
6: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
6: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं जल्दी से सवाल।
6: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
6: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है? फ्लैट्स घर का है
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी, तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ये दो एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनी, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिये उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप एमएसएमई में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी

0: फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। 2.5 साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी,
1: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
3: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश

0: मीडियम वेव 462
1: दिल्ली एंड अर्जादा घरानास ड्रॉइंग अपॉन द फाइनेस्ट एलिमेंट्स ऑफ दीज थ्री इलस्ट्रियस ट्रेडिशंस हिज गुरुज इवॉल्व्ड अ यूनिक स्टाइल ऑफ तबला प्लेइंग नोन एज लडंत का बाज of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
2: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं.
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by घनश्याम सिसोदिया. He is presenting tabla recital in ताल, तीन ताल.

कत कत चक धान कत भजन कत धारण धट धान कत गदी न गिन लागिन न तट कागिन न तट तागिन न तट तागिन न तट तान ता दिन न घगे दिन न धाति धा किरधाति धा किरधाति दिन न घगे दिन न धाति धा किरधाति धा किरधाति दिन न घगे दिन

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यही संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एन एस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
3: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Layavinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
2: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh mridangavadak hai. Unhone balyavastha se hi mridangavadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat mridanga vidwan श्री दंडमुड़ि राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री एम के आर प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुज श्री दंडमुड़ि राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
2: श्री एन एस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
3: श्री एन एस कल्याण रामन हैज अकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्ण, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टी एन शेषगोपालन, हैदराबाद सिस्टर्स एंड हैदराबाद ब्रदर्स। ही हैज परफॉर्म्ड इन प्रेस्टिजियस सभास अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग मद्रास म्यूजिक अकादमी।
2: श्री एन एस कल्याण रमन आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार रहा। आपने चेन्नई और विजयवाड़ा आकाशवाणी केंद्र में 36 वर्ष की विशिष्ट सेवा प्रदान किया। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कई राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में भाग लिया। आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
3: ही इज अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड हैज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड दूरदर्शन प्रोग्राम्स। ही रेंडर्ड 36 ईयर्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू आकाशवाणी एट चेन्नई एंड विजयवाड़ा। He was honored as Asthana Vidwan of Kanchikamakoti Peetham and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
4: आज के कार्यक्रम में श्री एन एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
3: Tonight, श्री एन एस कल्याण रामन begins his लय विन्यासम on मृदंगम with मिश्र जाति झंपे तालम।

0: श्री एन एस कल्याणरामन अपना मृदंगम लय विन्यासम का समापन संकीर्ण चापुताल से कर रहा है.
1: श्री एन एस कल्याणरामन कंक्लूड्स हिज लय विन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापुतालम.

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है।

0: Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. The MET also further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।